0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है. ये वाला बहुत हैवी है. और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
4: तो पहनती क्यों नहीं हो?
3: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेशन टाइप.
4: तो रोज वाला ले लो.
5: India's most loved everyday jewelry brand, Karat Lane, is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. Karat Lane now open next to Tanishq in Frisco.
6: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
7: Har khushi mein aapke saath, Manyavar Mohe, traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard off 635 East in Irving.
8: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
9: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
10: Tarikh par tarikh, tarikh par tarikh.
11: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
9: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
12: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897. Or visit astrologerishwar.com.
13: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees. No surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
14: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से स्ट्रेस.
15: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
14: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
15: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
14: ये क्या होता?
15: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
11: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
16: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
17: इट्स लॉसन.
16: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
17: इट्स लॉसन.
16: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
18: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
19: हाय, दिस इज विनय पाठक एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो.
20: हेलो डैलस की जनता, कैसे हैं आप भाई? इट इज मंडे अगेन. और मैं कौन हूँ भाई? आई एम योर फेवरेट बेस्टी यू गाइस, इपी द हिपी, एंड आई एम बैक इन द स्टूडियो. इस हफ्ते पूरे चार दिन, लाइक ऑलवेज, मंडे टू थर्सडे 7 to 10 PM, एंड यू ऑल आर लिसनिंग टू Fun Asia 104.9 FM, एंड दिस इज माय शो एन इवनिंग इन डैलस. भाई दिस वीक इज एक्चुअली एक्स्ट्रा स्पेशल बिकॉज आपको पता है सैटरडे को क्या है. आपको सबको पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है भाई, सैटरडे इज अमेरिका का बर्थडे. भाई हम हैप्पी बर्थडे मनाएंगे अमेरिका का. वी विल सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे और फिर हम केक शेक भी खाएंगे, फायरवर्क्स भी देखेंगे. वैसे केक तो होता है, कप केक्स होते हैं, वैसा वाला केक नहीं, बट कोई बात नहीं, आप अपना अपना केक काट लेना जो भी है, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं बिना मतलब कम बात करें, बिना बात तो खैर हो ही नहीं सकता यार, वो तो इट्स अ पार्ट ऑफ हु आई एम, बातें तो चलेंगी लेकिन पहले गाना सुनते हैं फिर बातें करेंगे उसके बाद में ओके okay?

गाइस कैसे हैं? आपने अपना वीक प्लान कर लिया? भाई अमेरिका का बर्थडे है यार इस हफ्ते, है ना? तो आपने डिसाइड कर लिया कि आप कहाँ जा रहे हो? नहीं जा रहे हो तो मैं आपको थोड़े से अमेजिंग इवेंट्स के बारे में बता रही हूँ, विच आर ऑर्गेनाइज बाय द डिफरेंट म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड द सिटी ऑफ डिफरेंट द डिफरेंट सिटीज ऑल अक्रॉस TFW. तो ये सारे जो हैं दे आर ऑल लोकेटेड नियर यू नो दिस एरिया, लाइक मिकिनी, प्लेनो, फ्रिस्को वगैरह वगैरह. तो मोस्टली आई फील लाइक वेयर आर इंडियन जनता और इंडियन डायस्पोरा काइंड ऑफ लिविंग इन. तो अगर आप इसके आसपास वाली जगह पे हैं तो आप ज़रूर जाइए, और अगर नहीं है तो कोई और जगह ढूंढ लीजिए. मतलब हर सिटी, चाहे आप कैरल्टन में रह रहे हैं, चाहे आप अर्विंग में रह रहे हैं, चाहे आप साउथ लेक में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, द सिटी ऑफ यू नो वेर एवर यू आर लिविंग, द सिटी काउंसिल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज सम काइंड ऑफ अ कार्निवल और अ फायर वर्क. सो यू मेक श्योर दैट यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट सिचुएशन, क्योंकि भाई इवेंट्स वैसे ही कम होती हैं. मतलब इवेंट्स तो वैसे बहुत होती है, बट यू नो दीज आर गुड इवेंट्स दैट यू कैन टेक योर किड्स टू एंड योर फैमिली एंड एवरीथिंग. तो एनी वेज, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट. आपने डिनर कर लिया क्या? नहीं किया? तो भाई अगर नहीं किया देन यू शुड हेड डाउन टू Page 3 Eatery, बिकॉज वहां पे आपको मिलेगा सिजलिंग कबाब्स, फ्लेवरफुल चाट, फ्यूजन बाइट्स एंड रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स. अगर आपने अभी तक Page 3 Eatery एट Hub 121 पे एक्सपीरियंस नहीं किया देन यू ऑल आर सीरियसली मिसिंग आउट. दिस इज वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर. अगर ब्रंच, लंच, डिनर, डेट नाइट कुछ भी है देन दे ब्रिंग द परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स. विजिट Page 3 Eatery एट Hub 121 एंड एक्सप्लोर मोर एट Page 3 Eatery.com. तो भाई पेपर पेन लेके रेडी हैं आप लोग? मैं इवेंट्स के नाम बता रही हूँ, 4th of July के स्पेशल इवेंट्स ऑर्गेनाइज बाय द डिफरेंट सिटी काउंसिल, सो यू कैन मेक ए लिस्ट. सबसे पहला इज एक्चुअली द बिगेस्ट fireworks and celebration in DFW, at least they are claiming to be. I don't know, you can go there and tell me. This is happening in Fort Worth on Panther Island Pavilion, at the Panther Island Pavilion on the 4th itself, I believe so, but double check. Sometimes these city councils, they do the firework ek din pehle also, so double check it, theek hai? They have tubing, live music and lots of family friendly activities along with free samples and giveaways and lots of like food trucks and stuff like that. So you should definitely go check it out if you're in the Fort Worth area. ठीक है, अगर आप Fort Worth area में नहीं है, अगर आप main Dallas के आसपास हैं, which is University Park, Highland Park, Preston Hollow, anywhere near Garland, downtown वगैरह वगैरह, then you can head down to Clyde Warren Park, because वहाँ पे हमेशा events होती रहती है, like all the time. It's like right in the middle of downtown. They have food trucks, live music, fireworks, and you can see it all against the beautiful Dallas skyline. Lambi lambi buildingon ke beech mein aap fireworks dekhenge. And thoda it's kind of like majestic and like, oh, I'm totally living in the city vibe, girl in the city vibes kind of thing. Okay? Agar aap us side nahi hai, I feel like mostly meri DFW ki desi janta is located near Frisco, McKinney, this area. Theek hai? तो अगर आप फ्रिस्को में हैं देन सिटी ऑफ फ्रिस्को इज ऑर्गेनाइजिंग द फ्रिस्को फ्रीडम फेस्ट एंड इट्स द फैमिली फ्रेंडली फेस्टिवल विद लाइव म्यूजिक. एंड वेयर इज इट बीइंग ऑर्गेनाइज? इट इज एट देयर इज लॉट्स ऑफ लाइव म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, फूड ट्रक्स वगैरह वगैरह. इट्स एट द जॉर्ज ए प्योर फाउंड म्यूनिसिपल सेंटर. आई नीड टू डबल चेक व्हाट्स द location for that, but if I can double check it in time, you should just look for Frisco Freedom Fest. I mean, it's, you won't miss it, just Google it. ठीक है, बाकी मेरे पास और भी बहुत सारे इवेंट्स हैं, लिस्टिंग है, जिसका मैं थोड़ी देर में आके और बताऊंगी. अगर आप ये वाली तीन जगहों पे नहीं जाना चाहते, विच इज फोर्ट वर्थ, डैलस एंड फ्रिस्को, आई विल टेल यू सम मोर इवेंट्स इन प्लेनो एंड लुइसविल वगैरह वगैरह. तो बट उसके पहले एक छोटा सा गाना, क्योंकि बातें करते करते गाने भी सुनने चाहिए.

भाई एक जमाने में हम लोग उसको इंडी नहीं बोलते थे उस टाइम पे. ये जो एल्बम वाले गाने होते थे ना, सोनू निगम के, शान के, वी नेवर हैड दैट वर्ड कॉल्ड इंडी इन आवर वोकैबुलरी. वो तो आई फील लाइक अब वोकैब में आ गई है तब यूज करते हैं. लेकिन दिस इज ऑल इंडी म्यूजिक ओनली भाई. अपनी एल्बम रिकॉर्ड करना उसको, वैसे टेक्निकली इंडी कम्स फ्रॉम द वर्ड इंडिपेंडेंट, बिना लेबल के. सोनू, शान, ऑल दीज अर्लियर सिंगर्स, दे ऑल हैड अ लेबल बैकिंग. लेकिन आजकल लोग सब खुद ही करते हैं. टेक्नोलॉजी हैज एडवांस सो मच. 250 ईयर्स ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस एंड वी हैव सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी टू एक्सप्रेस ऑल द फ्रीडम एंड ऑल द थॉट्स इन द वर्ल्ड. रियली दो, कैन वी रियली एक्सप्रेस एवरीथिंग? आई डोंट नो. आई थिंक पीपल आर स्टिल वेरी फिल्टर्ड एंड आई थिंक हम जिस जगह पे रह रहे हैं वहां पे थोड़ा सा फिल्टर रखना जरूरी है. हर चीज में एक छोटी सी फिल्टर की परत होना जरूरी है. आपको सोच समझ के देख बोलना पड़ता है कि आप कहाँ पे क्या बोल रहे हो. बट लेकिन काश काश हम बिना किसी फिल्टर के अपनी जिंदगी जी सकते हैं ना, कितना मजा आता था. बिल्कुल कुछ भी बोलो, बिंदास बोलो, बिंदास बोलो, और कोई बुरा भी ना माने तो क्या मजा आ जाता था, है ना. लेकिन वैसा होता नहीं है. अनफॉर्चुनेटली रियलिटी में दोनों चीज़ें होती हैं. लोग बुरा भी मानते हैं, लोग खुश भी होते हैं. तो हम सबको माइंडफुल होके रहना चाहिए. दैट इज द वे टू लिव इन दिस वर्ल्ड इन अ ब्यूटिफुल बैलेंस. एनीवेज, ए पहला एनीवेज बोला पूरे 3 घंटे में. आज मैं अपने आप को सिर्फ 3 एनीवेज बोल रही हूँ गाइज, ठीक है. आई हैव गिवन माई सेल्फ द चैलेंज ऑफ ओनली 3 एनीवेज इन द 3 आवर्स. तो आगे बढ़ते हैं. दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. आर यू लुकिंग टू ऐड अ लिटिल स्पार्कल टू योर स्पेशल मोमेंट्स? हेड टू मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को एंड योर डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी दैट्स एलिगेंट, टाइमलेस एंड क्राफ्टेड टू शाइन. फ्रॉम ब्यूटिफुल रिंग्स, earrings to dazzling necklaces and contemporary diamond styles. Find the perfect piece for engagements, anniversaries, celebrations or simply just treating yourself. Paise mile hai to jao bhai, udao paise, go buy some diamond trimond. Experience unmatched craftsmanship and brilliance at Malabar Gold and Diamonds in Frisco. And don't forget, download Malabar Gold and Diamonds mobile apps for latest collection updates and more details. Well, we're about to go into a break in just about 2.5 months. Months nahi, minutes. Haan, zyada bol diya. Muh se words slip ho rahi hain. Tab tak ke liye aap ye gana suniye. When we come back, I will tell you some more events organized by the city councils all across TFW where you can catch some fireworks, amazing food, wagera wagera. So stay tuned. And 8 baje aapko pata hai kya hota hai? 8 baje hota hai giveaway ka time. To tab tak ke liye ye gana.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: भूख लगी
5: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
7: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
7: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: इतना सब और प्राइस?
7: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं ही तो।
11: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
12: Excuse me. It's called being loyal.
11: It's called being predictable.
12: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
11: And what's so special at Neon Cactus?
12: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
11: Not bad.
12: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
11: Okay, this I didn't expect from you.
12: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus Fairview, Mexican cuisine with global influences.
13: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
14: हाँ।
13: घर रिलोकेट करनी है?
14: हाँ।
13: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
14: हाँ भाई हाँ।
13: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
15: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
16: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy. Live safe with Duck Time.
17: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
18: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
19: भाई, वी आर बैक। भाई, अभी तो जैसे मैंने आपको बताया, आई वाज टेलिंग यू व्हाट आर द अमेजिंग इवेंट्स दैट आर हैपनिंग अराउंड DFW फॉर अमेरिका का हैप्पी बर्थडे, 250 वाला हैप्पी बर्थडे, 250th हैप्पी बर्थडे। मुझे प्लैटिनम जुबली के बाद, मुझे नहीं पता उसके बाद क्या, डायमंड होता है ना, डायमंड के बाद होता है प्लैटिनम, उसके बाद क्या होता है मल्टी प्लैटिनम, ये तो कुछ अलग ही हो गया है ना. 250, आई डोंट नो व्हाट्स 250 कॉल्ड. इफ यू नो द वर्ड फॉर इट, आई थिंक गोल्डन जुबली इज व्हाट, 75. आई विल डबल चेक एंड आई विल फाइंड आउट एंड लेट्स डू दैट. ओके, तब तक के लिए आप इवेंट्स की लिस्ट बना लो यार. अगर आप प्लेनों के पास हो, देन यू कैन हेड डाउन टू द कॉलन कॉलेज बुक स्टोर इन प्लेनो फॉर फ्री इवेंट्स, family events, like this, it's a family friendly event, okay, and there's going to be food and there's going to be live music and fireworks and lots of amazing things. It's the same thing pretty much everywhere, so you can go anywhere. Aur kahan pe ho raha hai, agar aapko thoda beach wala vibes chahiye and if you feel like, oh, we didn't get a chance to go to vacation this summer, तो भाई यू कैन हेड डाउन टू द लिटिल एल्म बीच. आपको पता है लिटिल एल्म में बीच भी है एक एडजेसेंट टू द लुइसविल लेक. आई मीन इट्स वेरी नाइस. आई वेंट फॉर वन ऑफ माय बर्थडेज वन टाइम. वी जस्ट हैड सम फ्रूट एंड सम लाइक अ शार्क्यूटरी बोर्ड एंड वी जस्ट लाइक यू नो जस्ट सैट एट द बीच एंड दैट्स अबाउट इट. तो यू कैन हेड डाउन टू द लिटिल एल्म बीच एंड देयर इवेंट इज कॉल्ड रेड व्हाइट एंड बीच एट द लिटिल एल्म पार्क. And you can watch fireworks over the Louisville Lake. There's going to be music and food trucks, same thing everywhere. But I think the Louisville Lake makes it like super exciting, hai na? Agar aap Addison mein hai, then there is one event called Kaboom Town. I don't have too much information about it, so you can search for it on Google. But the event is called Kaboom Town. If you're near Colony, then the event is called Liberty by the Lake Festival at the Athletic Club. I believe this is a paid event. There is some kind of a ticket, but then they have the same stuff. Carnival, food trucks, wagaira, wagaira. So, aap kahin bhi ja sakte hain. There are so many like fireworks situations happening all over DFW. I think it's going to be amazing. Make your pick. Go enjoy some fireworks with your kids. Have some barbecue, burger, sugar, banao. Or thunde thunde popsicles khao and thunde thunde, you know, drinks bhi piyo, whatever, soft drinks, Diet Coke, Coke Zero, whatever it is you want. And this song, jo main break pe jaane se pehle, I was actually playing, unfortunately, break jaldi shuru ho gaya, aur ye song aadha kat gaya, toh mujhe call aayi Vatsala ki, Vatsala ne bola ki, yaar, tumne gaana beech mein khatam kar diya. Maine kaha, yaar, gaana maine toh beech mein nahi khatam kiya, wo by default autopilot pe ho gaya, I'm so sorry. तो वत्सला ने बोला यार प्लीज मेरे लिए, हम जैसे 90s के बच्चों के लिए, प्लीज फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड गाना लगाओ. तो वत्सला, दिस इज द फुल सॉन्ग फॉर यू माय फ्रेंड, एंजॉय.

बुलाया और मैं आ गई। मैंने इतना गंदा गाना तो कभी, मतलब इतना गंदा मैंने कभी गाया नहीं है। मैं गाना मुझे बहुत पसंद है, पर मैंने इतना अपनी गंदी आवाज में आई मीन दैट वॉज अ वेरी बैड अटेम्प्ट एट दैट सॉन्ग। आई एम नॉट अ सोप्रानो, तो ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट टू सिंग दैट सॉन्ग। लेकिन दैट वॉज अ मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी। अगर आपको पता नहीं है तो वो गाना था, कौन सी मूवी का था, लव, एंड इट फीचर्स सलमान खान एंड दिस एक्ट्रेस कॉल्ड रेवती, हु वॉज एक्चुअली वेरी पॉपुलर इन साउथ इंडियन मूवीज, एंड देन शी वॉज एक्चुअली क्वाइट किलिंग इन द 90s इन बॉलीवुड ऑल्सो। आई थिंक उन्होंने बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज करी। एक और मूवी आई थी विच वॉज अबाउट दिस स्पेशल नीड्स चाइल्ड, मुझे उस मूवी का नाम नहीं याद आ रहा। वो भी एक बॉलीवुड मूवी थी, मतलब बहुत सारी मूवीज थी। तो आगे बढ़ते हैं बिना एनी वेज बोले, जो मेरे मुंह से निकलने वाला था और मैंने कंट्रोल कर लिया। तो ये गाना सुनते हैं, दिस इज अ न्यू वन फ्रॉम द मूवी चांद मेरा दिल, एंड आई क्वाइट लाइक इट। आई जस्ट केम अक्रॉस द सॉन्ग, वैसे तो 1 महीने पहले रिलीज हुआ है, बट आई डोंट थिंक इट्स दैट पॉपुलर, लेकिन मुझे आई जस्ट केम अक्रॉस एंड आई थॉट इट वाज लाइक सुपर मॉडर्न सुपर फ्रेश। तो इन्जॉय, दिस इज खासियत फ्रॉम चांद मेरा दिल।

गाइस अभी मैं एक बड़े अच्छे कॉलर से, मेरी वन ऑफ माय रेगुलर लिसनर्स से मैं बात करी थी. मैं उनका नाम नहीं लूंगी बिकॉज आई थिंक शी प्रेफर्स टू बी यू नो अनोनिमस, विच इज ओके. तो वो कह रही थी भाई अमेरिका का 250th बर्थडे है, लेकिन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू सी फायरवर्क्स, भाई अपने दिल के अंदर की फायरवर्क्स को जगाओ. बेबी यू आर ए फायरवर्क, और अपनी दिल की फायरवर्क्स जाओ. डोंट गो सी artificial fireworks outside when you can yourself be a firework and light the whole world with your inside inner energy and inner power. I think that's a beautiful thought. Let's give a round of applause for, we are not going to tell her name because she prefers to be anonymous, lekin that's such a beautiful thought hai na ki bhai America is abhi chahe jo bhi ho raha hai. I know the political climate is a little bit, you know, iffy over here. Not iffy, iffy. Iffy माने like ना इधर का ना उधर का, थोड़ा risky business है, लेकिन फिर भी we still have so much freedom. We still have, you know, so much, so many opportunities to grow and to become big. Despite all the social media, all the negative social media attention that you might see on Instagram and everyone criticizing it, there is still a lot of amazing opportunities that you can still take faida of. तो उसी से एक गाना सुनते हैं. This is for my 90s kids. Actually, अगर आप 90s के नहीं भी हैं, तो भी enjoy the song, because this is really cool.

भाइयों बहनों और फ्रेंड्स कैसे हैं? भाइयों भाइयों बहनों नहीं बोलेंगे, वी आर नॉट दैट ट्रेडिशनल. हम सबको दोस्त ही बोलेंगे क्योंकि सब दोस्त हैं, है ना? वी आर ऑल वन. तो ये गाना फॉर विवेक जी, दिस इज सैफायर बाय एड शीरन फीचरिंग अरिजीत सिंह.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
3: Calculating route. Rerouting.
2: Are ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
3: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
2: Kyun?
3: Kyunki Fort Worth, Keller, Hazlitt aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials. Authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: Achha. तो सीधा वही ले चलो
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
3: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
5: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग फोकस डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स अकेडमी वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स स्ट्रक्चर्ड कोचिंग एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव
6: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स अकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी अकेडमी कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099 99.
7: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
8: Zindagi ek safar hai suhana. Yahan kal kya ho, kisne jana?
9: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
10: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
11: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 द जागो टाइम्स कमीशन जागो भी जगाओ भी एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
13: बैठ जाऊं पक्का कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था
14: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था
13: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
16: इन प्लेनो एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपटीटर कोर्ट मैच भी कॉल 4692983870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
17: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
18: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
17: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
18: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपर हिट
19: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
1: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
19: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
1: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
19: सच में सब संभालेंगे
1: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770 Vanessa Events, your celebration partner.
6: Friends, we are back. और कल ना मेरी बड़ी अच्छी एक कॉल हुई
20: with one of my friends and she was like ki dekho bhai main tumhe air pe sunti hu aur mujhe ye realize hota hai ki tum jo hai na वो अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा देती हो कि शुरू के एक घंटे में कि बाय द टाइम यू नो 9 बजते हैं तुम्हारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है. तो मेरे लिए तुम्हारा ये सजेशन है और आई अग्री विद इट ऑल्सो कि अपनी एनर्जी थोड़ी बचा के रखो, थोड़ा धीरे धीरे धीरे धीरे करके स्पेंड करो ताकि आप पूरे 10 बजे तक फुल ऑन एनर्जी के साथ बक बक बक बक कर पाओ, क्योंकि काम तो मेरा वही है ना टू टॉक नॉन स्टॉप नॉन सेंस. लेकिन उसके बीच में भी हम लोग बहुत मज़ेदार बातें भी करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाट टू डू दिस वीकेंड ओवर 4th of July सेलिब्रेशंस. दैट इज़ करेक्ट, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे हम अमरीका का. तो अगर आपने इवेंट्स नहीं लिखे हैं क्या क्या हो रहे हैं तो सो सॉरी, कोई बात नहीं, आप गूगल कर सकते हैं व्हाट आर द इवेंट्स हैपनिंग इन DFW, तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. और अगर आपको वो भी नहीं करना है, आपको मेरी ज़ुबानी ही सारी बातें सुननी है, तो कम बैक टुमारो एट 7 o'clock बिकॉज आई विल रीनेम ऑल द इवेंट्स जस्ट इन केस यू मिस्ड इट टुडे. तो मेरे को इसके पैसे तो नहीं मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, लेकिन मैं अपने यू नो गुडविल से आप सबको बता रही हूँ कि भाई देर आर सो मेनी अमेजिंग इवेंट्स हैपनिंग. मे बी आई विल गो टू वन ऑफ

आई विल रीनेम ऑल द इवेंट्स जस्ट इन केस यू मिस्ड इट टुडे. तो मेरे को इसके पैसे तो नहीं मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, लेकिन मैं अपने यू नो गुडविल से आप सबको बता रही हूँ कि भाई देर आर सो मेनी अमेजिंग इवेंट्स हैपनिंग. मे बी आई गो टू वन ऑफ देम विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, बट आई डोंट नो विच वन येट. तो यू शुड मेक अ लिस्ट ऑफ इट टुमारो एंड फिगर आउट वॉट यू वॉन्ट टू डू ओवर द वीकेंड ऑन सैटरडे. लेकिन जाने से पहले आपको पता है अभी क्या कितने बजे? अभी बजे 8:06. आपको पता है कौन सा टाइम है? दैट इज राइट, गिव अवे का टाइम है यू गाइज. लेकिन बिफोर वी गो इन टू द गिव अवे, वन क्विक अनाउंसमेंट. PMJ Jewels, Dallas, the wait is over. PMJ Jewels is now, has already come by the way, not coming to Frisco, has already come to Frisco. And it brings over 60 years of jewelry experience in timeless Indian craftsmanship. Stunning gold, diamond, and bridal collection jewelry for every celebration and milestone. अगर आपने ग्रैंड ओपनिंग मिस कर दी June 20 को, कोई बात नहीं. आई एम श्योर और भी ऑफर्स हैं, उनके वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं आप. और अगर नहीं जाना चाहते तो डायरेक्टली स्टोर में भी जा सकते हैं. दे आर एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड सितारा घटमनेनी. एंड फाइनली आफ्टर 2 वीक्स आई थिंक आई हैव फिगर्ड आउट हाउ टू प्रोनाउंस दैट सरनेम प्रॉपरली. PMJ इज अ नेम ट्रस्टेड बाई जेनरेशंस. ठीक है, आप आगे बढ़ें. तो आगे बढ़ते हुए गाइज, दिस इज द टाइम फॉर द कॉपी कैट चैलेंज. अगर आपने खेला है चैलेंज तो आपको पता है हाउ दिस वर्क्स. अगर नहीं खेला है तो मैं आपके लिए दोबारा बता देती हूँ. बेसिकली आई एम गोना प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड, ओके, और आपको उसका कॉपी कैट बॉलीवुड वर्जन बताना है, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारे भरे हुए कॉपी कैट सॉन्ग्स हैं और हम उनको नेम करते हैं. ठीक है, बिकॉज इट्स फन, वाई नॉट. ठीक है, तो हम क्या जीत सकते हैं पहले वाले गिव अवे में? एज यू नो, इस हफ्ते हम दो दो गिव अवेज कर रहे हैं, पूरे महीने हम दो दो गिव अवेज कर रहे हैं. तो पहला गिव अवे है फ्रॉम द फन पिज्जा किचन. आर यू क्रेविंग समथिंग चीजी विद अ देसी ट्विस्ट? फन पिज्जा किचन इज वेयर फ्लेवर मीट्स फायर. अगर आप वेजी हैं तो यू कैन ट्राई द अचारी पनीर पिज्जा. उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अगर आप नॉन वेजी हैं देन यू कैन ट्राई द तंदूरी चिकन पिज्ज़ा. उसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस हैं. ठीक है, तो वेदर यू लाइक इट बोल्ड और ब्यूटिफुली बैलेंस्ड, एज अ स्लाइस वेटिंग फॉर यू एट FPK फन पिज्ज़ा किचन. एंड दिस डील इज वैलिड ओनली इन द फ्रिस्को लोकेशन, सो मेक श्योर यू गो देयर एंड गेट योर फ्री $10 वर्थ ऑफ फूड. ओके, तो विदाउट फर्दर अडू फ्रेंड्स, आर यू रेडी? आवर फोन नंबर इज 972-235-5555. एंड हियर गोज द फर्स्ट सॉन्ग. द सेकेंड विल बी एट 8:30, बट फर्स्ट सॉन्ग इज दिस वन. इट्स एक्चुअली अ कोरियन सॉन्ग, जस्ट इन केस यू डिडंट नो.

0: Hi, Funny Girl Radio. Thank you for calling.
1: Hi, this is Priyanka.
0: Hi, Priyanka. Can you hear me?
1: Yes, I can hear you.
0: Okay,
1: How are you?
0: good. How are you?
1: I'm good. Thank you for asking.
0: Are you having a good Monday so far?
1: Yeah,
0: Good.
1: Monday's blues.
0: तो डू यू नो द आंसर टू द क्वेश्चन? पर गा के सुनाना पड़ेगा
1: Yeah.
0: थोड़ा सा. हाँ, दो लाइन.
1: I try.
0: अच्छा
1: The
0: ठीक.
1: movie is Race. I think Race 2 or Race 1. I don't know.
0: हाँ,
1: But the song is पहली नजर में तूने कैसा जादू कर दिया.
0: अरे वाह, क्या बात है. थोड़ा गा के भी सुना दो यार, मैं भी गाती हूँ. चलो साथ में गाते हैं. ठीक है, 1 2 3 गो. पहली नजर में
1: पहली नजर
0: ऐसा
1: में
0: जादू
1: कैसा
0: कर
1: जादू
0: दिया.
1: कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया.
0: Oh yeah, that's totally nice. That's so amazing. Congratulations, Priyanka. आप जीत चुके हैं फन पिज्जा किचन से $10 का गिफ्ट कार्ड. प्लीज स्टे ऑन द लाइन. व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना प्ले द सॉन्ग एंड देन आई एम गोना टेक योर इन्फॉर्मेशन. ओके, सो स्टे ऑन द लाइन.
1: श्योर,
0: ओके,
1: ओके. थैंक यू सो मच. हैव अ
0: थैंक यू.
1: ग्रेट डे.
0: ओके गाइस, एंजॉय द सॉन्ग. तब तक मैं प्रियंका से बात करती हूँ.

भाई मैं वो गाना नहीं बजा रही क्योंकि हम इंडिपेंडेंस डे के गाने बजा रहे हैं, तो वी शैल एंजॉय सम सॉन्ग्स ऑफ सम फ्रीडम, ठीक है? तो उसी से ये वाला गाना बहुत दिन नहीं सुना, तो आई विल प्ले दिस वन फॉर यू.

भाई आपने कंट्रोल लूज किया कि नहीं भाई, डोंट लूज कंप्लीट कंट्रोल, हैव सम स्टेट ऑफ यू नो बैलेंस. आई फील लाइक आई एम इन दैट फेज राइट नाउ. आई हैड दिस होल फेज ऑफ लाइक लूज कंट्रोल कंप्लीटली एंड लेटिंग गो एंड सब कुछ बिंदास बोलो, लेकिन आजकल आई एम अ लिटिल बिट मोर काम इन लाइफ. ठीक है, लाइफ में थोड़ा सा किस क्या बोलते हैं धैर्य, क्या धैर्य, स्टिलनेस भी जरूरी होता है. एंड देन समटाइम्स यू जस्ट नीड टू फ्लो, यू नो. इट्स ऑल अबाउट द बैलेंस एंड चूजिंग व्हाट टू डू, व्हाट इज राइट, व्हेन इट इज राइट. फ्रेंड्स, 10 मिनट्स में हमारा दूसरा गिव अवे भी होने वाला है, बातें कम गाने ज्यादा. ठीक है, तो आप ये गाना एंजॉय करिए. दिस इज देस रंगीला.

भाई दैट सॉन्ग वॉज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माया जी, वन ऑफ आर रेगुलर लिसनर्स. वो थोड़ा ज्यादा पेट्रियाटिक हो गया इंडिया के लिए, विच इज स्टिल ओके, लेकिन हम बजा रहे हैं थोड़ा अमेरिकन गाने क्योंकि अमेरिका का हैप्पी बर्थडे आ रहा है. तो दिस नेक्स्ट सॉन्ग इज फ्रॉम हॉलीवुड बॉलीवुड. अगर आपको नहीं पता ये मूवी कौन सी थी, दिस वॉज लाइक वे बैक इन द 90s. फीचर्स लीजा रे, हु वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. शी हैज रिसेंटली मेड अ कम बैक after her remarkable recovery from breast cancer, and then she's now featured in one of the really popular Amazon Prime shows called Four More Shots Please. But this was when she was super young. And agar aapne film nahi dekhi, it's an Indo-Canadian film called Hollywood Bollywood, directed by Deepa Mehta. I absolutely loved it. It also features Rahul Khanna, so check out this song.

0: world's biggest super hits is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Use code FUNASIA and get 30% discount.
4: Swag se karenge sabka swagat.
5: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to FUNASIA.
6: And hi, I am Ippy Roy. You are listening to FUNASIA Radio 104.9 FM. And this is my show, An Evening in Dallas. भाई शाम का वक्त है, वी आर गोना प्ले सम कूल एंड हिप सॉन्ग्स, एंड कभी कभार हम रिक्वेस्ट भी ले लेते हैं, एंड मे बी समटाइम्स देयर लिटिल ऑफ द ट्रैक, बट इट्स ओके, वी लाइक आवर ऑडियंस. भाई हमारी ऑडियंस मिक्स्ड होती है, यंग भी होते हैं, थोड़े बूढ़े भी होते हैं, थोड़े बच्चे भी होते हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी केटर टू एवरी सिंगल ऑडियंस मेम्बर हु इज आउट देयर, क्योंकि आप सभी मुझे बहुत प्यारे हैं, मेरे दिल से बहुत प्यारे हैं, सो या I want to make sure every single person in my audience is happy. Lekin wo karna thoda mushkil hota hai when you're sitting behind a microphone. Samne aapke ek sirf screen hai. Aur mera only mode of communication to the rest of the world is through FUNASIA ka phone number, which is 972-235-5555. Agar aapko mujhe request karne hai gaane, you can either do that or you can also connect with me on Instagram or Facebook or anything like that, by the way. Because otherwise, how am I going to understand ki meri audience, meri janta jo mera gana sun rahi hai, mera show sun rahi hai, who are those people? I want to know you guys, hai na? So if you want to give me a follow on Instagram, my handle is ippi.music, ippi.music. Or Facebook pe bhi aap mujhe search kar sakte hai as Ippy Roy. Bhai, आगे बढ़ते हैं विदाउट सेइंग एनीवेज. देखा मैंने एक बार ही बोला आज एनीवेज. आई डिड नॉट से इट एनीवेज एनीवेज एनीवेज एनीवेज. तो 8:30 अगर आपको पता है इज इज आवर सेकंड गिव अवे टाइम. लेकिन सेकंड गिव अवे है क्या? दिस इज फ्रॉम द फ्लेवर लाउंज. यू कैन विन ए दाल मखनी या फिर एक ढाबा स्टाइल चिकन करी ओनली एट द फ्लेवर लाउंज इन द फ्रिस्को लोकेशन, नॉट एनीवेयर एल्स, फ्रिस्को लोकेशन. प्लीज मेक श्योर आप कोई भी गिव अवे नहीं जीत चुके हैं इन द लास्ट वन मंथ. भाई बाकियों को भी जीतने का मौका देना चाहिए, हमेशा आप ही जीतते रहोगे तो कैसे होगा? आई मीन वी नो यू लव योर बॉलीवुड, बट गाइज यू शुड गिव एवरीबडी एन इक्वल अपॉर्चुनिटी. आफ्टर ऑल अमेरिका का वो थोड़ा नियम है, राइट? इक्वल अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम, लिबर्टी वगैरह वगैरह, ऑल द थिंग्स मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. आगे बढ़ते हैं. तो आप क्या करेंगे? गेम इज़ वेरी सिंपल, सेम थिंग लाइक ऑलवेज. आई विल प्ले, दुनिया भर में कोई भी एक गाना मैं बजाऊँगी, आपको उसका कॉपी कैच बॉलीवुड गाना बोलना पड़ेगा. दिस वन इज एक्चुअली सुपर सिंपल, लाइक ये आपको पता ही होगा, आप देर इज नो वे यू नॉट गोना गेट दिस, इट्स सो सिंपल. एंड मुझे नहीं पता था ये वाला भी कॉपी है, बट टर्न्स आउट ये वाला भी कॉपी है, तो क्या कर सकते हैं हम. तो आपके पास 7 दिन है अपना कूपन गिफ्ट करना, कूपन रिडीम करने के लिए, एंड लेट्स प्ले. आर यू गाइस रेडी? मेरा नंबर है 972-235-5555. तो हियर वी गो.

0: भाई ये कोरियन गाना है बाय द वे, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक. हाय यू आर ऑन एयर, थैंक यू फॉर कॉलिंग, कैन यू हियर मी? हेलो हेलो कैन यू हियर मी? हेलो हेलो हेलो हेलो भाई दूसरा कॉलर लेते हैं, ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा. हाय कैन यू हियर मी? हाय कैन यू हियर मी? भाई मेरा आजकल कॉल क्यों नहीं लग रहा? हाय हाय कैन यू हियर मी? हाय आई एम गोना ट्राई एंड पुट यू ऑन एयर, गिव मी वन सेकंड. ये ना कुछ कॉल जा नहीं रहा है. ओके देयर वी गो, कैन यू हियर मी नाउ?
1: Yes, I can hear you.
0: Okay, well, you are the third caller. So, but it's okay because उसके पहले वाली दो calls लगी नहीं due to some technical difficulty. But first, tell me your name and then tell me the correct answer.
1: My name is Faiz. Correct answer is तेरी आँखें भूल भुलैया from भूल भुलैया.
0: Yeah, थोड़ा गा भी दो यार, Faiz.
1: नहीं, मुझे नहीं पता गाना.
0: तो दो लाइन गा दो यार हमारी डैलस की जनता के लिए. मैं भी गाती, चलो दोनों साथ में शुरू करते हैं. 1 2 3 गो. तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें है भूल भुलैया, तेरे नजर देना. मेरे को भी नहीं आता गाना बाकी. कोई बात नहीं, हम दोनों फेल, लेकिन आप गिव अवे तो जीत गए, दैट्स ओके. बाकी में वी डोंट केयर अबाउट द रेस्ट. ओके चलो, कांग्रेचुलेशन फेस, स्टे ऑन द लाइन. आई एम गोइंग टू पुट यू ऑफ एयर, तब तक के लिए मैं गाना बजाती हूँ, ठीक है? स्टे ऑन द लाइन.
1: थैंक यू
0: गाइज, एंजॉय द सॉन्ग.

भाई क्या हाल है भाई। अभी मुझे कॉल आई स्मेरा की। उन्होंने पूछा कि हम पुराने गाने लगाते हैं कि नए लगाते हैं। भाई हम सब गाने लगाते हैं, नए भी लगाते हैं पुराने लगाते हैं। भाई मूड सही होना चाहिए, वाइब होनी चाहिए। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ। इफ यू हैव द राइट वाइब एंड द राइट पर्सन एंड द राइट एनवायरनमेंट, एवरीथिंग इज स्मूथ एंड एवरीथिंग इज लाइक ब्यूटिफुल एंड ईजी गोइंग, है ना। लाइफ में सब कुछ इजी होता है तो कितना मज़ा आता है, लेकिन लाइफ में अनफॉर्चुनेटली सब कुछ इजी नहीं होता है। तो कोई बात नहीं, इसी से हम ए दिस इज़ अ रिक्वेस्ट जो जिनका नाम मैं लिखना भूल गई। दिस इज़ दुनिया फ्रॉम देवडी। ही लव्स देवडी के गाने, एंड देवडी के गाने इफ़ यू नो आर ऑल कंपोज बाय अमित त्रिवेदी। सो गाइज एन्जॉय दिस नेक्स्ट ट्यून।

Guys, 8:53 बज चुके हैं on the clock. I'm gonna be here with you for one more hour. पूरे 10 बजे तक, little more than one more hour. But अगर आप मेरा show enjoy कर रहे हैं, then I love it. Give me a call or drop me a follow on my Insta at ipi.music. या फिर you can add me on Facebook too. लेकिन मेरी promotion बाद में. You guys are listening to An Evening in Dallas on Fun Asia Radio 104.9 FM. And this next song goes out to actually मुझे अभी कॉल आई. ठीक है, मैंने कॉल में देखा, हमारे पास ना ऐसे कॉलर आईडी है तो कई बार नंबर्स आते हैं, कई बार आपका नेम आता है कई बार नेम नहीं आता है. समटाइम्स इट जस्ट सेज AT&T वायरलेस. ठीक है, तो उसमें मुझे पता नहीं चलता कि कौन, लेकिन अभी आया तो उसमें आया एक बंदे का नाम जिसको एक्चुअली मैं जानती हूँ, जो DFW से है, हू इज अ साउंड इंजीनियर. तो मैंने कहा अरे भाई मिस्टर XYZ, अभी मैं नाम नहीं लूंगी, यू नो. तो फिर मैंने बोला तुम बोल रहे हो, कहते नहीं मैं तो उसकी मम्मी बोल रही हूँ. मैंने कहा ओके आंटी, हाय नाइस टू मीट यू, प्लीज आप उनको हाय बोलिए. कि मुझे लगा कि वो ही फोन कर रहे हैं, लेकिन आंटी ने रिक्वेस्ट किया कि हम बारटेंडर से गाना बजाएं. तो आंटी जी आपके लिए फ्रॉम द बारटेंडर से नहीं, आपने बोला पुराना गाना बजाएं, लेकिन मैं आपके लिए वही पुराना गाना एक नए फॉर्म में बजा रही हूँ. दिस इज तुम जो मिल गए हो, द बारटेंडर वर्जन.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: Beta, 95% aaye?
7: Haan, mummy.
6: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
8: Mera?
6: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
8: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी.
9: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
10: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
11: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
5: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
14: And we are back, guys. This is the last hour जब मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ. उसके बाद फिर कल दोबारा आ जाऊंगी. डोंट वरी, कल वापस 7 से 10 आप मेरे साथ इसी जर्नी पे ट्रैवल करेंगे. लेकिन अभी तो आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं ना, इधर उधर कहीं ना कहीं से तो वापस आ रहे हैं या जा रहे हैं, तो थोड़ा ऐड भी सुन लो, क्योंकि क्या पता आपको शायद इसकी ज़रूरत पड़ जाए कभी. दिस पार्ट ऑफ द शो इज़ ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द US. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. कॉल 469-942-9888. गाइज, I am so overwhelmed with the amount of calls that I'm getting right now, and in a good way, not in a bad way. But thank you so much for all this amazing love and all the requests that you gave. That means you guys are actually actively listening. आप जो मेरे से call करके जो 2 मिनट की जो बातें करते हैं, या फिर you share about, hey, we are not enjoying the mix right now, can you change it up? And I'm like, sure, okay, I guess this is not working. Then I change the song and then I get a call again ki, oh, I love this हटके अलग से गाने, thank you so much for playing this song. I'm like, absolutely, आप कोई पुराना गाना बजा, I love it. मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप actively participate करें and you help me create this amazing, beautiful playlist of music for this 3 hours that I'm here every single day on Fun Asia 104.9 FM. And मैं कौन हूँ? Yes, this is me, Ippy the Hippie. And आगे बढ़ते हैं. This song, मैं आपका नाम लिखना भूल गई, लेकिन अगर आपको पता है आप कौन है, of course आपको पता ही होगा कौन है, मतलब I hope amnesia वाली कोई story नहीं है. Of course आपको पता ही होगा कौन है, मतलब So this is DJ Wale Babu from Bacha. This song goes out to you. DJ Wale Babu mera gana chala to. DJ Wale Babu mera gana chala to. DJ Wale Babu to nahi hai, DJ Wale Madam hai yahan pe, wo hi gana baja rahi hai.

0: बजा दूं, गाना बजा दूं।
1: भाई गाना तो बजा दिया मैंने, तो आपके लिए कुछ नया बजाते हैं। दिस इज अ सॉन्ग दैट केम आउट जस्ट अ मंथ अगो बाय गिनी म्यूजिक। आई एक्चुअली डोंट नो द सॉन्ग, मतलब मैं अभी सुन रही थी, आई वाज प्रीव्यूइंग इट, बट आई थिंक इट्स प्रीटी नाइस। इट्स कॉल्ड मुंबई टू सैन वान फीचरिंग गिनी।
2: Yeah, Mumbai to San Juan.

We are back, guys. I'm really sad on one thing कि पता क्या, ये जो एक शो होने वाला था ना 1 जुलाई को, दैट आई वॉज रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू. और उस आर्टिस्ट के गाने मैं बहुत बजा रही थी, एंड हर नेम इज़ रश्मीत कौर, एंड आई वॉज रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कॉन्सर्ट विच वॉज सपोज टू हैपन ऑन द 1 जुलाई. अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ टिकट सेल्स, दैट शो गॉट कैंसल्ड. आई मीन वी डिड गेट आर रिफंड एंड स्टफ, बट आई एम सो सैड. शी इज सच अ ग्रेट न्यू आर्टिस्ट, एंड आई फील लाइक शी वॉज ऑन हर ओन इंडी टूअर ऑफ अमेरिका. न्यूयॉर्क में उन्होंने बड़ा सक्सेसफुल शो किया. शी हेडलाइंड टू फेस्टिवल्स इन कैनेडा, एंड आई रियली वॉन्टेड टू गो चेक हर आउट इन डैलस, बट टिकट सेल्स ही नहीं हुई यार. आप लोगों ने खरीदा ही नहीं टिकट, तो वो आ ही नहीं रही अब डैलस. ओ मेरा, अब मैं क्या करूँगी 1 जुलाई को, वेंसडे को? अब मैं कुछ और करूँगी, लेकिन तब तक के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, हाउ मच टाइम डज योर डॉक्टर स्पेंड विथ यू? 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, या फिर उससे ज़्यादा? एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर वी विल मेक श्योर दैट योर अपॉइंटमेंट इज सेट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग योर हेल्थ टेक टाइम. एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, योर फैमिली, फॉर यू, योर फैमिली एंड द हेल्थ ऑफ आर कम्युनिटी. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, एंड दैट्स नॉट ऑल, दे आर ग्रोइंग. दे आर हायरिंग प्राइमरी केयर डॉक्टर्स, एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिशियन, साइकियाट्रिस्ट फॉर फुल टाइम एंड पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज. इफ यू आर पैशनेट अबाउट पेशेंट केयर, हेल्थ केयर, देन यू कैन सेंड योर रेज्यूमे टू passionhealthphysicians@gmail.com और टेक्स्ट 217-454-4639. और अगर कोई जनरल इंक्वायरी है, देन यू कैन विजिट passionhealthphysicians.com, और फॉर एनी जेनेरिक इंक्वायरीज टेक्स्ट देम एट 214-666-6259. देयर योर हेल्थ इज देयर पैशन, नॉट माई पैशन. आई मीन आई डू केयर अबाउट योर हेल्थ, बट आई एम नॉट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल. That is their passion. My passion is gana, bajana and sangeet. That is why I am on air. Radio 104.9 FM, Fun Asia pe. Tab tak ke liye aage gana sunte hain.

भाई आपको अगर पता नहीं है हु इज अ सिंगर ऑफ दैट सॉन्ग, दैट इज एक्चुअली फ्रॉम दिस न्यू मूवी मैं वापस आऊंगा. इट वॉज कॉल्ड मस्कारा एंड द सिंगर ऑफ दैट सॉन्ग हर नेम इज निलंजना घोष. भाई इफ यू डोंट नो द स्टोरी ऑफ निलंजना घोष, अ फ्यू ईयर्स अगो शी वॉज जस्ट अ पर्सन लाइक यू एंड मी मेकिंग रील्स ऑन इंस्टाग्राम एंड यू नो प्लेइंग. द यूनिक थिंग इज शी वॉज लाइक यू एंड मी बट शी वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द बोथ ऑफ अस. वाई? बिकॉज शी प्लेड दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द बेस गिटार. जिनको नहीं पता, बेस गिटार रेगुलर गिटार से बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उसकी स्ट्रिंग्स बहुत मोटी मोटी होती हैं. इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू प्ले, यू नो, और चौड़ी चौड़ी फ्रेट्स होती हैं उसकी बहुत. एंड यू नो अनलेस यू हैव अ रियली जायंट हैंड, इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू नेविगेट द नेक वो बेस गिटार का. तो शी स्टार्टेड मेकिंग दीज कवर वीडियोज बिकॉज उस टाइम पे ए आर रहमान का जो लाइव बैंड था उसमें द रेगुलर बेस प्लेयर, हर नेम वॉज मोहिनी डे. शी इज स्टिल देयर बट शी इज नॉट रहमान्स बेस प्लेयर एनी मोर. मोहिनी डे नाउ लिव्स इन अमेरिका एंड शी इज प्लेइंग विद विलो स्मिथ एंड अ लॉट ऑफ अमेरिकन आर्टिस्ट. एनीवेज, अरे दूसरा एनीवेज, चलो इसके बाद एनीवेज नहीं बोलेंगे. आगे बढ़ते हैं. तो निलंजना बेसिकली स्टार्टेड कॉपिंग मोहिनी डे एंड स्टार्टेड कॉपिंग हर स्टाइल एंड स्टार्टेड पुटिंग इंस्टाग्राम वीडियोज. एंड देन धीरे धीरे व्हेन मोहिनी स्टार्टेड मूविंग ऑन टू मोर बिगर अपॉर्चुनिटीज एंड बिगर प्रोजेक्ट्स, ए आर रहमान फाउंड निलंजना. लाइक, ओ, देर इज अनदर गर्ल हु प्लेज बेस एंड शी इज एक्चुअली क्वाइट गुड एज मोहिनी एंड शी प्लेज लाइक अ बैडी एंड शी प्लेज ऑल दीज लाइक रियली हार्ड थिंग्स. सो देन ही हायर्ड निलंजना टू बी अ पार्ट ऑफ हिज बैंड. इमेजिन, येस, यू कैन मेक इंस्टाग्राम वीडियोज एंड स्टिल बी कॉल्ड बाई ए आर रहमान, बट यू हैव टू बी दैट गुड. यू नो, ऐसे नहीं उठा के आ गए, मुंह उठा के मतलब बजा लिया तो हर एक रहमान से कॉल आ जाएगा, बट यू हैव टू बी लाइक रियली रियली गुड फॉर इट. तो रहमान ने कॉल किया एंड देन शी बिकेम रहमान रेगुलर बेस प्लेयर एंड नाउ शी एक्टिवली टूअर्स विद रहमान. लेकिन रहमान रियलाइज, भाई ये तो गाना भी गाती है, इसकी आवाज़ तो वैसे ही बहुत अच्छी है, क्लासिकल गाना सीखा हुआ है, इंडियन क्लासिकल. तो उन्होंने निलंजना को अपनी मूवी में गाने का मौका भी दिया एंड दैट्स व्हाट शी इज सिंगिंग. शी दिस वाज हर वॉइस फ्रॉम द न्यू मूवी मस्करा, नो, फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊँगा एंड द सॉन्ग वॉज कॉल्ड मस्करा एंड शी इज एक्चुअली रियली पॉपुलर इन द न्यूज़ दीज डेज. होपफुली हमारी भी किस्मत कभी खुलेगी, लेकिन तब तक के लिए आप मेरा गाना सुनिए जो थोड़ी देर के लिए चलेगा, 45 सेकेंड्स, क्योंकि ऐड शुरू हो जाएगा उसके बाद.

गाइस, आप लोग गार्डनिंग कर रहे हो कि नहीं? समर आ चुका है, समर में सब लोग गार्डन बनाते हैं, सब लोग टमाटर ग्रो करते हैं, पेपर्स ग्रो करते हैं, खीरे लगाते हैं। आपने क्या क्या लगाया है? वेल, अभी तो मैं अपार्टमेंट में रह रही हूँ एंड आई डोंट रियली हैव द रूम और द टाइम टू ग्रो अ गार्डन। बट एक टाइम पे व्हेन आई वाज स्टिल अ स्टूडेंट एट UNT, व्हिच इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सस, मेरे को एक प्लॉट मिला था उनके ना कम्युनिटी गार्डन में, एंड दैट वाज ड्यूरिंग कोविड वाला टाइम। और वहाँ पे ना मैंने इतने सारे पौधे ग्रो करे थे, लाइक सो मैनी वेजिटेबल्स। और ऑलमोस्ट हर हफ्ते, समर के हर हफ्ते में मेरी कुछ ना कुछ हार्वेस्ट आती थी, लाइक इधर एलूम टोमेटोज या फिर पेपर्स या बैंगन या भिंडी भी उगाई है मैंने वहाँ पे। तो इजंट इट अमेजिंग? लाइक आई लव इट, आई लव ग्रोइंग फूड। बट द अमाउंट ऑफ मनी यू पुट इन ग्रोइंग फूड, यू कैन प्रॉबली बाय 10 times the amount of food that you know your garden is going to produce from the supermarket, but it's still relaxing, it's still fun, and we do it because we enjoy it, just like this job. I do it because I enjoy it. I'm not doing it for the money or the fame or the followers. I do it because I can talk non-stop for hours, for 3 hours without anyone interrupting me. So this next part of the show is brought to you by Omar Khwaja. अगर आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में फंस जाते हैं या फिर यू हैव अ स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट, अटर्नी ओमर ख्वाजा, ही विल कम एंड फाइट योर केस एंड हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू ट्रूली डिजर्व। डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज कैन बी वेरी वेरी स्ट्रेसफुल एंड देयरफॉर यू नीड एन अटर्नी हु मेक्स श्योर दैट यू आर कॉम्पेंसेटेड। आप उनको पैसे तब तक नहीं देंगे जब तक आप केस जीत नहीं जाते हैं। फॉर अ फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-300-5046 और विजिट attorneyomar.com। तो गाइस, ओनली अबाउट 14 मिनट्स लेफ्ट इन द शो। मेरे बाद एक और कोई आरजे आने वाली है, आई एम नॉट श्योर कौन आने वाला है, बट I hope you enjoy the music that we all play for you. And this is Ippy the Hippie. And you guys are currently listening to An Evening in Dallas only on Funasia 104.9 FM. And for the next 15 minutes, we are playing chill music. We are playing relaxing music so you guys can wind down and have a great night. Thank you and keep listening. This song goes out to Zimran, who requested for Tujhko from Cocktail 2.

भाई रात का मौका है और जो लोग अभी भी सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. दिस इज इपी द हिपी ऑन फनेजर रेडियो 104.9 FM. वैसे तो मैंने डिसाइड किया था मैं 10 बजे तक कुछ बोलूंगी नहीं, लेकिन वन ऑफ माय लिसनर्स जस्ट रिमाइंडेड मी कि भाई ये मुझे बोलना ज़रूरी है, क्योंकि ये मौका रोज़ रोज़ नहीं आता है. आज जो है बहुत ही इनक्रेडिबल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, एस्ट्रोनॉमिकल एस्ट्रोलॉजिकल दोनों ही है अपेरेंटली. तो द स्ट्रॉबेरी मून इज आउटसाइड टुडे. तो आज जो मून है वो पिंक पिंक कलर का है और फुल मून है. अपेरेंटली इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल मीनिंग. अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं तो कुछ सिंबलिज्म, कुछ मीनिंग वगैरह है वो आप अपने आप भी सर्च कर सकते हैं. मैं सब नहीं बताऊंगी बिकॉज दैट इज़ नॉट रियली माई थीम. लेकिन आप अगर वैसे नहीं है, इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू गो एंड एडमायर दिस ब्यूटिफुल पिंक मून विच इज़ आउटसाइड, जो मैंने एक्चुअली कल देखा था, मुझे लगा फुल मून कल था, लेकिन अपेरेंटली फुल मून आज है. कल ऑलमोस्ट फुल था, आज पूरी तरह से फुल है. एंड इट्स लाइक पिंक इन कलर एंड इट्स रियली ह्यूज एंड रियली बिग. एंड आपको शायद अपने बालकनी से या पैटियो से या अपने गार्डन से ज़रूर दिख रहा होगा. तो इन्जॉय दिस ब्यूटिफुल मून विद समवन स्पेशल. एंड दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ. कल तक के लिए टाटा एंड गुड बाय. तब तक के लिए आप ये गाने सुनिए एनीवेज विदाउट बोले.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
3: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
3: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
3: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
4: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555. AG FinTax, your growth, our strategy.
5: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
6: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
7: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

हेलो डैलिस। सो डैलिस की रात जब 10 बज के आसपास सेटल होती है, लाइट सेम होते हैं, रोड्स भी सेम होते हैं, फिर फील थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। और अगर थोड़ा इमेजिनेशन ऐड कर लो तो लगता है जैसे हर मोमेंट के साथ एक बैकग्राउंड स्कोर चल रहा होता है हमेशा सबकी लाइफ्स में। बस प्रॉब्लम ये है कि हम उस म्यूज़िक को नहीं सुन पाते, पर फील ज़रूर करते हैं। कभी मॉर्निंग की रश तो एक फास्ट पेस इंस्ट्रूमेंटल, कभी एलिवेटर में ऑकवर्डनेस, साइलेंस तो एक लाइट ऑकवर्ड कॉमेडी ट्यून, और कभी लेट नाइट सोचो तो एक स्लो पियानो ट्रैक। जो रीज़न की ज़रूरत नहीं होती, इट्स जस्ट आर लाइफ्स बैकग्राउंड म्यूज़िक जो हम सुन नहीं पाते पर फील ज़रूर करते। आज की रात दिल से डैलस विद स्निग्धा ऑन फनीशा 104.9 FM में हम इसी इनविजिबल साउंड ट्रैक को थोड़ा लाउड करने की कोशिश करेंगे। सो इफ आर लाइफ्स हैड अ बैकग्राउंड म्यूजिक, इट शुड बी नाइस अ मेलो। सो इट्स 10 PM इन द नाइट, लेट मी स्टार्ट विद अ नाइस रोमांटिक ट्यून फॉर यू गाइस।

सोचो, अगर अभी जो गाना चला उसे किसी मूवी सीन में प्लेस करे, वो सिर्फ म्यूजिक नहीं होता, वो इमोशन का एम्पलीफायर बन जाता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम सब अपनी लाइफ को सबकॉन्शियसली एडिट करते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। लाइक फॉर एग्जांपल, वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट, इट्स अ सिनेमैटिक वॉक। वेटिंग फॉर समवन, एक सॉफ्ट सस्पेंस इन आर माइंड, इन आर बैकग्राउंड बेसिकली। स्क्रॉलिंग फोन एट नाइट, लूप्ड एम्बियंट साउंड। हम रियलाइज नहीं करते बट ब्रेन ऑलरेडी मूड असाइन कर चुका होता है, और इसी रीजन से कुछ मोमेंट्स रैंडम नहीं लगते, वो फिल्मी लगते हैं। सो अगला गाना आपके लिए फॉर मेकिंग योर मूड फील अ लिटल लाइटर।

That was a nice emotional ride wala gana. Ek interesting observation mein jab ye gana I was listening, I felt all the songs are nothing but a communication, but this feels a little closer to my heart, like a good nice emotion wala. Kabhi kabhi ek normal conversation bhi tab cinematic lagti hai jab uske saath silence add ho jati hai. Jaise koi baat ke baad 2 second ka pause और किसी का हाफ स्माइल या एक अनफिनिश सेंटेंस, वहीं पर बैकग्राउंड स्कोर अपना काम करता है. और फनी पार्ट ये है कि रियलिटी में कोई म्यूजिक नहीं होता, पर दिमाग उस साइलेंस को फिल ही कर देता है. शायद इसीलिए कुछ मेमोरीज क्लियर नहीं होती, पर उनका फील परफेक्टली स्टोर्ड होता है. अब अगला ट्रैक इसी इमोशनल लेयरिंग को थोड़ा ज़्यादा करेंगे, बट आई एम श्योर यू गोन लव दिस सॉन्ग बिकॉज इवन दिस इज अ लिटल इमोशनल बट विद अ वेरी गुड ब्यूटिफुल लिरिक्स. हियर यू गो गाइस, द नेक्स्ट ट्रैक इज़ फॉर यू.

That was a beautiful song. I know like a lot of people like the song. Like मेरी तो फेवरेट है. सो जब आज व्हेन आई वाज ड्राइविंग टू द स्टूडियो बिफोर आई कम फॉर द शो, आज का मून काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आज का मून हम इट्स नोन एज स्ट्रॉबेरी मून. इट्स रेयर. ये साल का आखिरी माइक्रो मून है. मतलब ये मून अर्थ से सबसे दूर एक पॉइंट पे होता है. इसी वजह से ये नॉर्मल से थोड़ा छोटा और हल्का दिखाई देता है. इफ़ यू आई डोंट नो इफ पीपल ऑब्जर्व मून्स, बट कंपैरेटिवली यस्टरडे द मून इज़ अ लिटिल डिफरेंट टुडे. सो गो इनटू योर बालकनीज, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो एक बार बाहर देख लीजिए, बिकॉज इट्स अ रेयर मून एंड इट्स कॉल्ड स्ट्रॉबेरी मून. सो चांद के बातें कर रहे तो चांद का गाना तो बनता है, तो अगला गाना चांद के लिए और आज की हमारी स्ट्रॉबेरी मून के लिए.

सावन तो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं बिकॉज डैलस इज़ गेटिंग सो हॉट, बट यू नो टेक्सास की वेदर के बारे में हम कभी कुछ जान ही नहीं पाते किस दिन बारिश हो रही है और किस दिन वेदर अच्छी है. पर आई गेस दो दिन से तो वेदर ठीक ही है, सो एवरीबडी मस्ट बी एन्जॉइंग देयर टाइम आफ्टर सनसेट्स एंड ऑफिसेस. सो द क्लॉक इज़ एट ऑलमोस्ट 10:45 PM. यू गाइज, व्हेन द टाइम इज़ लाइक 10:45 रात, दिस टाइम आर एनर्जी लाउड नहीं होती है, बस थोड़ा स्मूथ फ्लो में होती है. इसीलिए आज हमारे पूरे शो में गाने सिर्फ स्मूथ और अच्छा फील गुड वाइब्स लेके आ रहे हैं हम. अगर आप अपनी लाइफ को एक फिल्म की तरह देखें तो अब सीन थोड़ा शिफ्ट होता है. लाइक यू नो व्हेन यू सी अ मूवी, दे ऑलवेज हैव डिफरेंट डायलॉग्स, डिफरेंट इमोशंस. दैट इज़ हाउ आर लाइफ इज़ ऑल्सो. मैं मूवीज़ को इसीलिए रिलेट कर रही हूँ सो दैट आई कैन रिलेट टू ऑल माई ऑडियंस हु आर लाइक बॉलीवुड लाइफ वाला सीन और थिंकिंग. आई नो मोस्ट ऑफ द जेंजीज आर लाइक दैट राइट नाउ. अब तक सोचा था कि हर मोमेंट का बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, पर एक ट्विस्ट ये है कि कुछ मोमेंट्स इंटेंशनली साइलेंट होते हैं, जैसे एलिवेटर में किसी स्ट्रेंजर के साथ खड़े होना, दोनों सेम डायरेक्शन में देख रहे होते हैं पर सीन में कोई डायलॉग नहीं होती बिकॉज वो असली जिंदगी होती है. ऐसे हंसी मजाक के साथ आप सुनते रहिए फन एशिया 104.9 विथ मी स्निग्धा ऑन दिल से डैलस. नेक्स्ट सॉन्ग अ फील गुड सॉन्ग फॉर यू गाइज़.

You're listening to Dulce Dallas with Snigdha on Funisha 104.9 FM पर. So हम बात कर रहे थे what if life had a background music. कभी कुछ notice किया है, कुछ places automatically एक type का music feel करवाती है हमें. जैसे cafe में low acoustic vibes, mall में fast paced rhythms because everybody is busy shopping. जल्दी जल्दी चाहिए क्योंकि जल्दी खरीदना है. That's all what girls like, of course. हम consciously नहीं सोचते पर brain environment को एक sound assign कर ही देता है. You know, whenever you're at public places, you have something going on in your mind always, and when you're just alone by yourself, you have the slow melody always going on. और इसी वजह से सेम जगह अलग दिन पर अलग फील देती है. अगला ट्रैक भी ऐसा ही एक मूड स्विच जैसा, जहाँ साउंड थोड़ा ब्राइटर हो जाती है एंड यू कैन गो ऑल अराउंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी इन जस्ट अ सॉन्ग.

कभी कभी लाइफ का सबसे सिनेमैटिक मोमेंट वो होता है जहाँ कुछ हैपनिंग नहीं होती, बस एक नॉर्मल ड्राइव, थोड़ा ट्रैफिक और विंडो से आती हुई सिटी लाइट्स, और इसी साइलेंस के बीच दिमाग खुद को एक साउंड ट्रैक क्रिएट कर ही लेता है। इंटरेस्टिंग ये है कि हम बिग मोमेंट्स को सिनेमैटिक समझते हैं, पर रियल में क्वाइट मोमेंट्स ज़्यादा फिल्मी होते हैं, क्योंकि वही कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ एक फील होता है। So when you are in a cinematic mood and you wanna feel the agla track some more cinematic, is the next track for you guys.

0: So it's 11:35 PM. So अभी आई वॉज टॉकिंग टू अ कॉलर. उनकी शादी होने वाली है इन 2 वीक्स इन डैलस. व्हेन आई लिसन टू दिस आई फील लाइक यार डैलस में तो इतने सारे शादियाँ हो रही कि हमें अपनी मुल्क की ज़रूरत ही नहीं है. वी डोंट हैव टू गो बैक टू आर कंट्रीज एंड गेट मैरिड. सब यहीं पे तैयार पड़ा हुआ है. मेकअप, यू वॉन्ट एनी इवेंट डेकोर्स, एनी थिंग, यू गेट एवरी थिंग इन डैलस. इट्स नथिंग बट देसी अड्डा टाइप्स. सो व्हेन ही वॉज टेलिंग मी, एनी वेज हम सिनेमैटिक के बारे में ही बात कर रहे हैं. वॉट इफ लाइफ हैड अ बैकग्राउंड म्यूजिक, हमारे आज का टॉपिक था. ही वॉज लाइक आप मेरे लिए कोई ऐसा गाना बजा दो जो मेरी शादी से मुझे रिलेट करके मेरी लाइफ की बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाए. सो फॉर हिम एंड पीपल हु आर ऑलरेडी मैरिड, अपनी शादी के मोमेंट्स याद रखना. और ये ट्रैक आपके लिए नेक्स्ट प्ले कर रही हूँ एंड एन्जॉय.
1: Good morning.

That was a nice, fun, desi song. Kabhi kabhi raat ke last moments mein ek strange clarity aati hai. No overthinking, no confusion. Bas ek simple awareness ki sab kuch exactly jaise honi chahiye tha, waise hi hai. Aur agar us moment ko music mile, to wo bilkul minimum nahi hoti, wo piano ki jaise phad phad hoti hai. जैसे हो जो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करते बस स्पेस देते हैं ये वो मोमेंट होता है जहाँ ज़िंदगी ने हमें लाइफ को एक चेंज करने की तरीका बस ऐसे सोचते हैं कि ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए यू जस्ट हैव टू कीप इट गोइंग ऑन एंड ऑन सो नेक्स्ट ट्रैक इज़ हियर फॉर यू गाइस इट इज़ ऑल्सो अ पंजाबी ट्रैक बिकॉज आई होप मैं जा Like the different tracks I was already playing, I thought you were enjoying because it makes our mood a lift up. Anyways, 12 bajne hi wale hai. Aur 15 minute baki hai, to aur 15 minute music shuzik thoda kar lete hai.

से पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

So, अब शो का फाइनल सीन है बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट व्हाट इफ लाइफ हैड अ बैकग्राउंड म्यूजिक इन अ सिनेमैटिक वे. अगर आज रात की एक कंप्लीट फिल्म तरह देखे तो हर मोमेंट का एक बैकग्राउंड स्कोर था, कभी लाउड, कभी सॉफ्ट, कभी ऑलमोस्ट इनविजिबल. और इंटरेस्टिंग बातें ये है कि हमने कोई स्पेशल म्यूजिक क्रिएट नहीं किया, हमने बस एग्जिस्टिंग लाइफ को फील करने का तरीका चेंज किया है. शायद यही आइडिया रियल लाइफ में भी काम करता है कि चीज़ें बदलने की ज़रूरी नहीं है, उनको नोटिस करना भी ज़रूरी होता है कभी कभी, थोड़ा थोड़ा. कल सुबह फिर वही डैलिस की स्ट्रीट्स होंगी, वही रूटीन, वही नॉइज़, पर शायद हम थोड़ा डिफरेंटली सुनेंगे अब सब कुछ. अगर आज रात को कोई एक टेक अवे है तो वो ये है कि हर मोमेंट साइलेंट नहीं होता है, बस उसका म्यूजिक हमने ट्यून नहीं किया होता है. मैं हूँ स्निग्धा, ये था दिल से डैलिस विद स्निग्धा ऑन फनीशा 104.9 FM. गुड नाइट. और आप अपनी लाइफ की बैकग्राउंड म्यूजिक को थोड़ा ध्यान से सुनना. माई अदर नेक्स्ट टू ट्रैक्स फॉर यू गाइज अंटिल 12 AM. थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी गाइज.

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वही रात रुक के. डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM.

हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, हम इस मोड़ से उठकर अगले मोड़ चले, उनको शायद देर लगेगी आने।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा। डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनी शेयर रेडियो के साथ।

नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव वाइब्स से और नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी। वही नेगेटिविटी आप तक ट्रांसफर हो और आपके सुकून को बर्बाद कर दे, इससे बेहतर है कि पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाइए। और अगर कोई भी पॉजिटिव थॉट आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, फाइनेंशियल रेडियो पे ट्यून इन कीजिए और सुनते रहिए हमारे साथ इन जबरदस्त गानों को। कीप एंजॉयिंग।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपरहिट

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनी शो रेडियो।

हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

Thank you for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है. मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं. छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें, declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है. So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज. सुनते रहिए हमें और इस नेक्स्ट गाने को.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
2: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: अब क्या?
1: Claustrophobia. White House की कैंटीन में स्टोर पहुंच गया. Please check.
2: अच्छा कौन सा वो हाइड्रोजन बम वाला?
3: सर कोर्ट में बात कीजिए.
2: अशरफ सिक्योर लाइन है, प्लीज डोंट इरिटेट मी, नहीं तो अभी वो ट्रिगर दबा दूंगा. हाँ फाइनल चेक्स एवरीवन. शाफ्ट सील करने का वक्त आ गया है. कम ऑन गेट रेडी.

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फन एशिया रेडियो के संग।
2: कम डाउन सिलेक्टर रिवाइंड।

0: कमाओगे हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
4: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

Don't touch that dial. Keep listening.

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: हाय, दिस इज कुणाल कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू फनी शो रेडियो।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: एक टीम को कोऑपरेटिव बैंक भेजो और वो लॉकर्स भी सील करवाओ अभी के। रेशमा इंडस्ट्रीज और सूरज राइस मिल के सारे बैंक अकाउंट सील कर दो। सेल्स टैक्स और एक्साइज की बहुत बड़ी चोरी है, उन डिपार्टमेंट्स को भी इन्फॉर्म कर दो।
1: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 Karat Pure on 104.9 FM.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: मैं मंदर क्यों जावा मेरा यार खुदा है मैं मस्जिद क्यों जावा मेरा यार खुदा है
1: बिलो

नूर का झरना है मैं प्यास पुरानी मैंने आंख से गटक लिया उस हुस्न का पानी।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: So ruko jara sabar karo
2: agla gana full vibe badalne wala hai Stay tuned to Panacea

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फनेजा रेडियो के संग।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
4: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।
2: आकर
3: ओह शिट।

0: Ow.
1: Masagali. Ow. Masagali. Ow.
2: Ow.

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. FunAsia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
4: सुनो कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
5: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
4: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स प्लस lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
1: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
6: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At ShopCompareInsure.com, we're not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship and access to top-rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
7: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: बेटा 95% आए?
13: हाँ मम्मी।
12: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
14: मेरा?
12: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
14: वो
15: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
16: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
16: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
16: सच में? सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
15: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: How much time does your doctor spend with you? Is it 5 minutes, 10 minutes? At Passion Health Primary Care, every appointment is scheduled for 30 minutes because truly understanding your health takes time. At Passion Health, you're not just a patient, you're family. So for you, your family, and for health of our community, we have Passion Health Primary Care, and they are growing. They're hiring experienced primary care doctors, endocrinologists, pediatricians, and psychiatrists for full-time and part-time opportunities. So if you're passionate about patient care, send your resume to passionhealthphysicians@gmail.com or text 217-454-4639. Visit passionhealthphysicians.com, 214-666-6259. Passion Health Primary Care, your health is our passion. That, ladies and gentlemen, is your message from Passion Health Primary Care. And now some more messages.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोल की भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओह हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
0: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
4: क्या बताऊं? It's hard to find a realtor who offers great service and also cash back at closing.
0: You need to call Ajay Prabhu of Beam Real Estate. He's an experienced realtor who provides exceptional service plus cash back at closing. Ajay reviews each house thoroughly and shares all the pros and cons and negotiates the best price and builder incentives. Just visit ajayprabhu.com and see why people are raving about him.
5: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson, and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out, or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
6: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
7: It's Lawson.
6: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
7: It's Lawson.
6: Daddy, what is the law?
8: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
9: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
10: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
9: कहाँ?
11: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
10: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब.
12: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
13: लिया.
12: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
13: नहीं आया.
12: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक, 972-863-772. That's 972-863-772.
14: Visit www.sanadainc.com today. When you're

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hain. Ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye. Aur is summer zarur dekhiye HEB ke naye DFW stores. Mid Cities, Irving aur Murphy mein khul rahe hain. To aaj hi apne nazdeeki HEB par jayein aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites. HEB. Here everything is better.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
9: Excuse me, it's called being loyal.
8: It's called being predictable.
9: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
8: And what's so special at Neon Cactus?
9: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
8: Not bad.
9: Happy hours Monday to Friday. And amazing food and drink deals every day.
8: Okay, this I didn't expect from you.
9: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
10: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
11: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस। फ्रिस्को में इतना प्यार मिलने के बाद पंचतारा इज नाउ ओपन एट अ न्यू लोकेशन इन एलन। वही स्वाद, वही जुनून और वही जबरदस्त मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस। फेमस गर्मा गर्म पराठे, रोज ताजी बनी मिठाइयाँ और फुल सर्विस बार वेटिंग जस्ट फॉर यू। एंजॉय फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस और पंजाबी बफे एवरी डे। कैटरिंग सर्विस इज ऑल्सो अवेलेबल टू मेक योर एवरी सेलिब्रेशन मेमोरेबल। पंचतारा नाउ इन फ्रिस्को एंड एलन। मेंशन अपना पंजाब एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट ऑन योर फर्स्ट विजिट।
13: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
14: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
13: नहीं।
14: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
13: नहीं।
14: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
13: वो भी नहीं।
14: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
15: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
16: AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
17: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
16: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath naye Kaizerway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek ही रूफ के नीचे। लुनोक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
18: छोटा सा मेरो मदन गोपाल। DFW Hindu Temple cordially invites you and your family to a week of divine devotion and spiritual enlightenment through the sacred Srimad Bhagavat Katha. From June 28th through July 4th, 2026, experience the nectar of Bhagavatam as it is beautifully narrated by the world-renowned devotional singer and spiritual orator, Acharya Shri Mridul Krishna Goswami Ji, Pramukh Seva Adhikari of Shri Bake Bihari Mandir, Vrindavan. Mahaprasad will be served daily for all devotees. For more information, visit dfwhindutemple.org. Jai Shri Krishna.

0: Beautiful track. I hadn't heard that song in a while, so I quite enjoyed it and hope you did also. I do have some messages now from our sponsors and our advertisers, and we really appreciate when you use their products as well as their services. Thank you so much.
1: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
4: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
5: Tarikh par tarikh.
6: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
4: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
7: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां मां सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
8: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
7: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
9: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
10: हाँ।
9: घर रिलोकेट करनी है?
10: हाँ।
9: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
10: हाँ भाई हाँ।
9: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
11: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide, हर मूव का perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
12: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 926641।
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
6: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
15: वेट, इतना सब और प्राइस?
6: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
16: मैं।
17: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
18: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
17: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
18: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
17: ये क्या होता है?
18: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
19: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
6: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
19: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funny Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
1: एक बात बता, रिटायरमेंट में सबसे स्कैरी क्या होता है?
4: क्या?
1: सैलरी बंद हो जाती है
4: और बिल्स बंद नहीं होते।
1: एग्जैक्टली, इसलिए स्मार्ट लोग वेल्थ टैक्टिक्स से स्ट्रेटजी बनाते हैं।
4: मतलब
1: ऐसी स्ट्रेटजी जहां इनकम रुकने के बाद भी पैसे का फ्लो बंद नहीं होता।
6: द वेल्थ टैक्टिक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉर योर रिटायरमेंट इयर्स। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-693
5: 2077 or visit them at thewealthtactic.com.
10: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: The Magic 24/7, only on 104.9 FM.
1: Hello, namaskar, and thank you very much for tuning in. This is Gupshup Gali with me too. And before I start playing all the music that you want to listen to and that I want to listen to, क्योंकि ये हम सबका platform है, तो मैं अपने पसंद के गाने तो लगाती रहती हूँ, लेकिन आपके पसंद के भी गाने आते रहने चाहिए. और इसीलिए यहाँ पर स्टूडियो का नंबर भी शेयर करने वाली हूँ. But not before I thank Shabnam ji for an amazing, amazing morning drive time show that she brings for all of us. यार news का वो पहला dose में फरेजा रेडियो पे ही मिलता है शबनम जी से, एंड वी कांट थैंक हर इनफ फॉर दैट. वंस अगेन दिस इज गपशप गली विद मी टू. लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरू करें. घड़ी मिला लीजिए 10:09 बाय द स्टूडियो क्लॉक. It is the last day of the month. We are hitting the half year mark today.

And ladies and gentlemen, studio का number 972-235-5555. गपशप गली में गपशप हमारी चलती रहती है, लेकिन हमारी बातों में बहुत सारी ऐसी बातें भी जो आती हैं which might be very very useful for you, and this one is definitely very useful for you. अगर आप परेशान हैं ऐसे अपॉइंटमेंट से जो आपको ज़्यादा वक्त नहीं देती है एट द डॉक्टर्स, तो पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर ऐसी जगह है जो एक तो आपको सेम डे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा और साथ ही साथ यू विल गेट द टाइम दैट you deserve when you go at the doctors. Itna lamba wait hota, meri to kismat hi kuch aisi hai, I'll tell you. Whenever I go to doctors, meri family mein kisi aur ko ye dikkat nahi hoti, lekin main ghanton par ghanton mujhe intezar karna padta hai for some reason or the other. So here is the thing, ladies and gentlemen, aapko agar wait karna bhi pade for let's say XYZ reason, lekin agar aapko apna pura waqt mile doctor ke saath and they are not trying to rush you out of the room, then that is what I call a good healthcare provider. So here you go, ladies and gentlemen, Passion Health Primary Care. और यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि हमारे बीच जितने भी endocrinologists हैं, pediatricians हैं, या psychiatrists हैं, या primary care doctors हैं, आपके लिए भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि देर इज़ जॉब अपॉर्चुनिटी एट देयर्स. अगर आप अपना रेज्यूमे भेजना चाहते हैं तो इट शुड बी टू पैशन हेल्थ फिजिशंस एट gmail.com, या आप उन्हें टेक्स्ट कर सकते हैं 217-454-4639. एंड डू रिमेंबर दैट वेबसाइट passionhealthphysicians.com, जहाँ पर जाकर आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. And once again, ladies and gentlemen, Gapshap Gali with me too will continue beyond the break as well.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
4: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। This summer enjoy 20% off on all appetizers, tandoori items and mocktails only at Tandoori Flame. Chicken tandoori, malai chicken tikka, paneer tikka, momo ya soya champ. Ab har bite ke saath milegi extra savings. Not just that, from July 3rd to 5th, Tandoori Flame celebrates Red, White and Spice Festival. Free mocktail with every entree purchase. And kids under 10 get free ice cream, dine in only at Tandoori Flame Garland, where every bite is a celebration.
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
8: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट अटर्नी उमर डॉट कॉम।

और आशिक है हम 90s के गानों के. 1993 का ये गाना जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया था. यू डोंट हैव टू रियली रिमेंबर दैट, बट इफ यू लव दिस सॉन्ग यू मस्ट, आई विल से दैट. लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का एक और गाना मुझे इसी से मिलता जुलता हुआ मुझे याद आया. एक्चुअली गाना याद आया, मुझे नहीं पता था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बट जब मैंने क्रेडिट्स में देखा तो इट मेड कंप्लीट सेंस. यू नो वॉट मेक्स कंप्लीट सेंस इज टू टेक अ लुक एट द ट्रैफिक अपडेट्स बिफोर यू लीव योर होम. और 90s का वो जमाना था, ना हमें ट्रैफिक अपडेट्स मिलते थे ना हमें वेदर अपडेट्स मिलते थे, लेकिन वी कुड फंक्शन अकॉर्डिंगली जो भी लाइफ थ्रू ऑन अस इन टर्म्स ऑफ वेदर और ट्रैफिक, राइट. लेकिन अब क्योंकि ये सहूलियत है तो इस सहूलियत का भरपूर फायदा तो उठाना ही चाहिए. और ये फायदा आपके लिए लेकर आ रहे हैं अटर्नी ओमर ख्वाजा एंड हिज ऑफिस. डू रिमेंबर टू गेट इन टच विथ हिम, ही इज द मोस्ट वेल नोन इंजरी लॉयर दैट यू विल नो इन आवर सर्किट्स. तो अगर कार इंजरी कुछ हुई है, आपके कार एक्सीडेंट में पड़े हों आप, या स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट दैट यू हैव बीन पार्ट ऑफ, आपको लगता है कि कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, कुछ वर्क प्लेस इंजरी है जिसके लिए आपको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन स्ट्रेस आपको जीरो लेना है, तो ही इज द राइट टीम टू गेट इन टच विथ. अटर्नी ओमर डॉट कॉम इज द वेबसाइट. एंड आई कैन टेल यू दिस कि आपको पे तब तक नहीं करना जब तक आप जीत नहीं जाते हो, यानी कि आपको अपना कॉम्पनसेशन मिल नहीं जाता. और इसीलिए एक फ्री कंसल्टेशन उनके साथ जरूर ले टू फिगर आउट what your case is and how they can help you. 4693005046 is that number. Aur ek bar phir attorneyomer.com is the website. And this traffic update is brought to you by attorney Omer's office. And yahan pe main do major collisions ke bare mein batane wali hoon aur ek minor maintenance jo chal raha hai on loop 12 at Jefferson Boulevard southbound. So thoda bahut backup ho sakta hai, but nothing major going on there. Let's talk about the two collisions. I-30 at Haskell Avenue westbound pe jo right most shoulder hai wo blocked hai aur kafi traffic update wahan par aapko mil sakti hai. And this has been reported just a few minutes back. So yes, if you are on that track, make sure to have some extra time on clock if you are going to a destination around that area. See if you can take a detour. Ek aur detour ki zarurat aapko pad sakti hai I-635 at Abrams Road westbound, jahan pe leftmost shoulder aur two left lanes are absolutely blocked. So you can expect some major backup right there on I-35 at Abrams Road westbound.

0: और ये मूवी देखने के बाद हमें ये पता चला कि संजय कपूर को एक्टिंग आती नहीं, लेकिन अभी वेब सीरीज में जब उन्हें देखते हैं तो लगता है कि धीरे धीरे बंदा ना काम सीख जाता है अगर कंसिस्टेंटली उस काम पर लगा रहे. उसका जीता जागता एग्जाम्पल मेरे ख्याल से संजय कपूर से हमें मिल सकता है. एंड ये फिल्म थी प्रेम, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो प्रेम से बोलो फनीशर रेडियो की जय हो. मैं रीज़न बता देती हूँ आपको, क्योंकि प्रेम में पढ़ना और DFW के ट्रैफिक में पढ़ना एक जैसी बात मुझे लगती है. मतलब क्या है ना कि शुरुआत में सब कुछ अच्छा सा लगता है, लेकिन आगे जाके पता चलता है कि मामला काफ़ी टाइट है. यानी कि थोड़ी देर के बाद हमें समझ आता है कि ना पीछे मुड़ सकते हैं और ना आगे का रास्ता हमें मिल रहा है. और ऐसे में प्रेम से बोलो फन एशिया रेडियो की जय हो. जी हाँ, यू आर ट्यून इन टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट इट इज़ यू नो वर्थ वाइल फॉर ऑल ऑफ यू. क्योंकि अगर ट्रैफिक में फंसे हो तो आपके पसंद का गाना तो भाई प्ले होना ही चाहिए, और उसके लिए स्टूडियो का नंबर आपको पता होना ही चाहिए. 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये नंबर बिल्कुल हैंडी रखें. मुझे अपना नंबर कई बार भूल जाता है, लेकिन स्टूडियो का नंबर कभी नहीं. 9722355555. यू नो वील कंटिन्यू विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेट म्यूजिक इन्फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दैट कमिंग अप फॉर यू इन द फॉलोइंग सेगमेंट्स. एंड येस, द फीफा सेगमेंट फॉर यू बिटवीन 12 to 12:30. क्योंकि कल का दिन, ओ माई गुडनेस, कितना ड्रामा था. द मोस्ट हैपनिंग डे सिंस डे वन ऑफ वर्ल्ड कप दैट इट वॉज, एंड टूडे सीम्स टू बी अनदर सच डे फॉर अस. तो इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत होगी इन द लास्ट सेगमेंट बिटवीन 12 to 12:30. लेकिन उसके पहले भी बहुत सारी गप्पे मारने वाले हैं, क्योंकि ये है गपशप गली विथ मी टू. सो कंटिन्यू लिसनिंग टू फनीशा रेडियो 104.9 FM.
1: बेटा 95% आए?
2: हाँ मम्मी.
1: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
3: मेरा?
1: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
3: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
5: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
4: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
6: Is shehar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu? Dhuaan dhuaan. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
7: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
8: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship, membership details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
2: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Phoenicia Radio.
0: Gapshap Gali with me to that you are tuned into, and thank you very much for giving me company here. Kyunki company is always needed when you are listening to music and driving, I guess, or doing home chores. Music ke liye not really, but haan, agar aap kisi kaam mein busy ho rahe ho aur aapko chahiye thodi bahut company, wo thodi bahut se kahin zyada company hum aapke liye ban sakte hain. Because yes, keep us on the forefront and you will know why. You are listening to Phoenicia Radio 104.9 FM. Ye segment particularly hum aapke liye lekar aate hain, jahan par na aaj ke din release hui kuch interesting filmon ke acche se gaane aap logon ke liye lagate hain. To June 30th aaj ki tareek, mahine ka aakhri din, aur ye na summer launch pad hota hai cinema mein, chahe wo Hollywood ho ya Bollywood. Because yahan pe jo families hain bahut theater जाते हैं, और दिस इज द बेस्ट टाइम टू रिलीज ए फिल्म. तो ऐसे में 2000 पे लेकर जाना चाहती हूँ, जहाँ पर लॉन्च किया गया था दो यू नो बड़े एक्टर्स को फ्रॉम फैमिलीज दैट वर रियली रियली बिग लेगेसी फैमिली के यू नो अभिषेक बच्चन और साथ में करीना कपूर. द फिल्म इज ऑफ कोर्स रेफ्यूजी दैट यू ऑल नो अबाउट. J.P. Dutta's directorial

ए सोलफुल क्रिएशन बाय अनु मलिक. और अनु मलिक ये उन गानों में से है जो ऑलवेज ब्रिंग्स दैट सरप्राइज एलिमेंट फॉर मी कि भाई अनु मलिक ये भी कर सकते हैं. लिफ्ट मेरी बंद है या वो एक गरम चाय की प्याली के अलावा ये सारे गाने भी वो उन्होंने ही कंपोज किए हैं. एंड दैट रियली एस्टॉनिशेस मी. एंड दिस वॉज सोनू निगम एंड अलका याग्निक. एंड मोर पावर टू अलका याग्निक. हाल ही में उन्हें देखा था जब पद्म भूषण उन्हें अवार्ड किया गया था. एंड शी वॉज लुकिंग सो फ्रेल. और 2 साल के बाद अपने जो हियरिंग लॉस जो उनको हुआ है शी इज़ फीलिंग मच बेटर. बट या 2 साल के बाद उनका पब्लिक अपियरेंस देखा. सो मोर पावर टू हर. आई होप शी रिकवर्स 100%. और गाना फिर गाना या ना गाना वो उनकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी. बट वी हैव सो मेनी सॉन्ग्स दैट वी कैन एन्जॉय ऑफ हर्स. सो या गॉड ब्लेस हर. एंड मूविंग ऑन टू अनदर फिल्म जो कि आज ही की तारीख में रिलीज हुई थी, क्योंकि रिफ्यूजी जो है ये 2000 में रिलीज हुई थी ऑन June 30th आज ही की तारीख में. तो वैसे ही एक और फिल्म पे लेकर जाने वाली हूँ जो आज ही के दिन रिलीज हुआ था इन द ईयर 1995. लेडीज एंड जेंटलमैन, जमीन और आसमान का फर्क है इन दोनों कॉम्पोजिशंस में. और इसीलिए मूड बना लीजिए, थोड़ा सा हम गियर चेंज करने वाले हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए. क्योंकि डेविड धवन की अगर फिल्म हो तो यू कैन एक्सपेक्ट म्यूजिक बिल्कुल फाड़ू टाइप का जो म्यूजिक होगा. आनंद मिलन का म्यूजिक फॉर दिस नेक्स्ट वन विच वी हैव रियली enjoyed over the years. Aur ye hai from the film Coolie number 1. Once again, Alka Yagnik along with Kumar Shanu this time.

Karishma Kapoor and David Dhawan films, they have gone along so well in the 90s. Aur isiliye David Dhawan ki film ke zone ke bahar hum kabhi Karishma Kapoor ko imagine hi nahi karte the. Lekin she had given us three distinct films jo ki aap yaad kar sakte ho, and that's Fiza, जो करिश्मा कपूर की फिल्म 2000 में आई थी, एंड देन देयर वाज शक्ति द पावर जो 2002 में आई थी, और एक 2001 में आई थी जुबेदा. दैट इज वेयर आई एम टेकिंग यू टू, बिकॉज साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर सीरीज ब्राउन अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखें. इट्स ग्रीटी, इट्स अ डी ग्लैम सेकेंड इनिंग्स इन हर एक्टिंग करियर. करिश्मा कपूर, लेडीज एंड जेंटलमैन.

0: गोइंग टू हिट ए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, लेकिन आज की तारीख में तीन हॉलीवुड फिल्म्स जो रिलीज हुई थी, जल्दी से बताऊं उनके नाम, इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी जो आज के दिन 2023 में रिलीज हुई थी, और हैरिसन फोर्ड ने एक वो अपना आइकॉनिक फेडोरा जो पहना था, और अपना जो लास्ट फिफ्थ एंड द अल्टीमेट आउटिंग एज सिनेमाज फेवरेट आर्कियोलॉजिस्ट, और इसके अलावा द ट्वाइलाइट सागा Eclipse जो June 30th 2010 में रिलीज हुई थी, एंड Spider-Man 2 June 30th 2004. Get ready for Spider-Man Brand New Day.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: FM. 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
8: लिया।
7: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
8: नहीं आया।
7: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
9: Visit www.sanadainc.com today. Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
10: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
11: Mamu, देखो क्या हो गया?
12: ओ, क्या हो गया?
11: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
12: ओए, जर्मन का कमाल है।
11: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
12: ओए, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं, और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
13: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
14: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
15: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
16: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
17: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
16: सच में, एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
17: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
16: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
17: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
16: नंबर बोल जल्दी।
17: कॉल जेम्स एट 321-888-7345 और विजिट connectingamericafinancials.com।
18: कनेक्टिंग अमेरिका, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न कॉस्ट्स इनटू कैश।
19: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
20: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
21: तारीख पर तारीख,
8: तारीख पर तारीख।
21: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
22: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
23: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
24: डालस की धड़कन 104.9 FM फन एशिया रेडियो।
0: गपशप गली विथ मी टू में वी विल लाइक टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन विथ यू। 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो। और ये सेगमेंट और अगला सेगमेंट इसी के चलते कुछ हम आपके साथ गप्पे मारने वाले हैं, लेकिन उसके पहले ना कुछ और बातें जो आप तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंचाने वाली हूँ कि अगर यूएस परमानेंट रेसिडेंसी का रास्ता आपको बहुत ब्लर्ड लग रहा है, आई विल से गेट इन टच विद सीमा मेहता लॉ ऑफिसेज इफ़ यू आर ऑन एन H1B, F1, L1 और एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा। क्या पता कि आपका रास्ता आपको कहीं ज़्यादा क्लियर नज़र आए। द लॉ ऑफिसेज ऑफ सीमा मेहता कैन हेल्प यू। दैट्स द यू नो wonderful thing that they do for the community and everybody else. Attorney Seema Mehta and her experienced team, they specialize exclusively in immigration law, जो कि इंक्लूड करता है EB-5 इन्वेस्टर वीज़ाज, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज, पर्म लेबर सर्टिफिकेशन एंड US सिटीजनशिप। तो अगर आपको EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम के बारे में फॉर इंस्टेंस आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए, यू कैन राइट टू देम। ईमेल हम बताए देते हैं, info@seemamehtalawfirm.com इज दैट ईमेल एड्रेस फॉर ऑल ऑफ यू। इट्स अ लॉ ऑफिसेज ऑफ सीमा मेहता दैट यू नीड टू गेट इन टच विथ। एंड विथ मी, अगर हमारे वार्तालाप का आपको हिस्सा बनना है या अपना रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाना है, स्टूडियो का नंबर 972-235-5555। दिस इज गपशप गली विथ मी टू।

When the going gets tough, the tough gets going, ladies and gentlemen. Dhoop ka alam aisa hai ki when you see those workers mending the roads and all, streets and all, aapko waqai mein bada bura lagta hai ki aap apne AC car mein unke paas se nikal jate ho aur wo dhoop mein wo sare chehre ko dhak kar aur wo sari jo precautions le rahe hote hai pani ka and what not. It is such a tough thing to do. I heard that somebody once, you know, kya kiya unhone ki unhone dekha aise logon ko kaam karte hue to पास से गुजरने के बजाय ना वो पास से एक स्टोर से कुल ठंडा ठंडा कोक लेकर आए उन सबको सर्व करने के लिए. एंड हाउ कूल इज दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन. वंस अगेन टॉकिंग अबाउट द हॉट वेदर, एक्सपेक्ट अनदर डे विद ब्रीजी विंड्स, हॉट टेम्परेचर्स और जी हाँ, और क्या, और बस आपकी पेशेंस की ज़रूरत है इसमें. टेम्परेचर्स आज हमारे दोपहर के इट विल फील लाइक इन ट्रिपल डिजिट्स और ये जो ट्रेंड है ये इट विल गो इन टू द 4th ऑफ जुलाई वीकेंड एज वेल. यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ है तो डबल डिजिट्स लेकिन वो फील जो ट्रिपल डिजिट्स की है इट इज़ गोइंग टू स्टे विथ अस फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम. देर इज जस्ट अ स्लिम 10% चांस ऑफ शावर्स इन द फोरकास्ट फॉर फ्राइडे एंड सैटरडे. दैट्स अ लॉन्ग वीकेंड, द 3rd एंड द 4th दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, विथ स्लाइटली बेटर रेन चांसेज ऑन संडे एंड मंडे एट 20%. इफ दैट गिव्स यू होप एंड मेक्स यू फील अ लिटल बेटर, दैट बी इट. अंटिल देन टेम्परेचर्स विल कंटिन्यू टू हीट अप एंड द फील like temperature is going to stay well above 100 degrees every single day. So ladies and gentlemen, what else can I ask you? Bhai, stay cool, stay chilled with Vanesha Radio 104.9 FM. This is Gapshap Gali with me too.

गपशप गली विद मी टू में आई हैव दिस गिव अवे फॉर ऑल ऑफ यू. और जो भी रेस्टोरेंट्स या कोई भी और अगर बिजनेस हमें गिव अवेज देती है ना, तो बिग शाउट आउट उनके लिए बनता है. सो ए बिग शाउट आउट गोइंग टू नियॉन कैक्टस, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन स्टेसी रोड इन फेयरव्यू, दैट यू विल फाइंड दिस वंडरफुल रेस्टोरेंट. जस्ट द अदर डे समबडी यू नो कॉल्ड इन टू से कि यहाँ पे वो गए थे क्योंकि वो गिव अवे में जीते थे और उन्हें बड़ा अच्छा लगा, खाना भी और एम्बियंस भी. तो दैट्स वॉट यू नीड टू लिसन टू एंड गो टू दिस प्लेस. और आप में से किसी एक को मिलने वाला है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का गिफ्ट कार्ड डाइन इन, विच बेसिकली मीन्स कि आपका जो भी फाइनल बिल होगा उसमें $20 का गिफ्ट कार्ड जो है आपके, इट विल गो टूवर्ड्स दैट फाइनल बिल. ऑल राइट, नाउ दैट बींग सेड, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट जगह है फॉर डेट नाइट्स, फॉर चिलिंग रियली, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है तो सच में चिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली विथ देयर क्यूरेटेड कॉकटेल्स, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स और हैप्पी आवर्स मंडे से लेकर फ्राइडे तक जो उनके लिए उनके पास आपके लिए है डील्स जो हर रोज़ आपको मिलने वाली हैं. तो यस, गो टू देयर्स एंड लेट अस नो वहाँ का क्या खाना आपको सच में बहुत अमेजिंग लगा. दिस इज़ गपशप गली विथ मीठू, क्योंकि हमारी बातचीत ना कुछ माइक्रो बाउंड्रीज के बारे में होने वाली है. अब ये माइक्रो बाउंड्रीज क्या बला है ये बताती हूँ मैं आपको, और आपसे भी जानना चाहती हूँ कि आपके अपनी जिंदगी के अपने यूनिक माइक्रो बाउंड्रीज जो आपने क्रिएट किए हैं, बस वही तो जानना चाहती हूँ.

The number in the studio 972-235-5555. Gapchup Gali with me to mein micro boundaries ke baare mein baat karna chahti hoon aaj. Jo jaane anjaane shayad kuch logon ne already set karke rakhi ho ya log set karne ka sochte hain lekin bade buzurg jo parivar mein hain unke baare mein soch ke kai baar hesitate kar jate hain ya to you know there are some xyz reasons since you haven't been able to even think about it but जी हाँ माइक्रो बाउंड्रीज अगर आप पूछें मुझसे ये क्या चीज़ है तो मैं आपको बिल्कुल अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये बेसिकली ना टाइनी लो स्टेक्स एवरीडे लिमिट्स जो हम अपने लिए सेट करते हैं हमारे पीस और हमारी एनर्जी को सेफ गार्ड करने के लिए बिफोर वी हिट दैट टोटल बर्न आउट. लेकिन पता है मज़ेदार बात क्या है, द माइक्रो बाउंड्रीज दैट मेक प्रॉबेबली जेन ज़ी और इवन लेट्स से द मिलेनियल्स फील इनक्रेडिबली पावरफुल माइट साउंड टोटली रिडिकुलस और इवन लेजी और इवन डाउन राइट रूड टू ओल्डर जेनरेशन जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हुए या हमारे पेरेंट्स हुए. तो जी हाँ वो माइक्रो बाउंड्रीज क्या हैं बस वही मैं आप लोगों के साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ और आपने अपनी जिंदगी में अगर कुछ माइक्रो बाउंड्रीज ऐसे क्रिएट किए हैं तो आप हम तक जरूर पहुँचे. 972-235-5555. फॉर इंस्टेंस Who has done the DND thing on their phones? DND यानी कि do not disturb, जो कि आपने एक टाइम सेट कर दिया कि उसके बाद मतलब कोई फ़ोन कॉल भी अगर आए तो आपको वो परेशान नहीं करेंगी. No vibrating और no flashing screens, total silence after a certain time. Let's say 11 बजे रात का आपने एक टाइम सेट कर दिया या 10 बजे या फॉर दैट मैटर वाई नॉट 7 PM ऑल्सो कि डिनर होने के बाद वो आपका टाइम है और आप नहीं चाहते हो कि कोई और कॉल करके आपको उनके साथ स्मॉल टॉक करना पड़े या जनरली बातें करनी पड़े क्योंकि यू वॉन्ट टू कंजर्व योर एनर्जी योर पीस ऑफ माइंड क्योंकि अगले दिन फिर वही सारा हंगामा शुरू होने वाला है और आप यू वॉन्ट दैट ब्रीदर फॉर योर नर्वस सिस्टम और इसीलिए यू नो आप एक DND लगा देते हो डू नॉट डिस्टर्ब ऑन योर फोन. आप बुजुर्गों से पूछें उनके लिए तो वो रात के ही टाइम होते थे जब इमरजेंसी कॉल्स आते थे लैंडलाइन क्योंकि जो मिडनाइट के कॉल्स होते थे वो इमरजेंसी कॉल्स होते थे तो ये चीज़ करना उनके लिए मतलब बिल्कुल नागवारा है उनको बिल्कुल मतलब हजम ही नहीं हो सकती है ये बात. सो येस टेल मी इफ़ यू हैव हैड यू नो some kind of micro boundary in your life. ये तो मैंने एक example दिया, ये करते हो या कुछ और करते हो मुझ तक ज़रूर पहुँचे. I'd like to know कुछ interesting अगर micro boundaries हमें create करना आ जाए तो life थोड़ी सी ना आसान हो जाती है, थोड़ी रिलैक्स ज़्यादा हो जाती है. Well, I'm all in to listen for all the micro boundaries that you have created in your life. 972-235-5555. Neon Cactus की तरफ से आपके लिए $20 का gift card awaits. एक अच्छा सा बताएं क्या लगाया है आपने अपनी जिंदगी में. मैं कुछ और लेकर आऊंगी एग्जांपल्स आप लोगों के लिए. वी कंटिन्यू दिस इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट एज वेल. क्या कहते हैं

0: एकदम पाथ ब्रेकिंग रोल फॉर चमेली दैट करीना कपूर प्लेड. और उसके बाद से ये हुआ है कि करीना कपूर की जब भी कोई फिल्म आती है ना, हम जरूर जाते हैं देखने के लिए. दैट्स वॉट नोइंग योर पीपल मीन्स, यू नो. और ऐसे में नवनीता खेमका का भी नाम आता है. शी इज विथ केलर विलियम्स रियल्टी, द वॉइस ऑन फनीशर रेडियो दैट यू हैव ऑलवेज ट्रस्टेड एंड लव. पर्सनलाइज सर्विस और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के लिए उनके साथ जरूर कनेक्ट करें. 347-449-424.
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
2: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट. और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Ritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, toh mera kya hoga?
4: Arre relax, sab tumhara hi toh hai.
3: Sach? Ya phir court decide karega?
4: Wait, what?
2: Yes, agar proper estate plan nahi hai, toh aapki family ke decisions court leta hai.
5: Hi, this is Deepti Varma with NRI Wealth. मैं families को help करती हूँ उनकी मेहनत को protect करने में, the right way with estate planning.
2: अगर आपके पास सिर्फ will है या कुछ भी नहीं है तो ये call delay मत कीजिए. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
6: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ target पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसीजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
7: फ्रिस्को प्रिसीजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10.
8: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
9: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
12: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
11: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
12: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
13: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
14: Documents ya parcel bhejni hai?
15: हाँ.
14: घर रिलोकेट करनी है?
15: हाँ.
14: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
15: हाँ भाई हाँ.
14: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
16: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
17: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
18: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
17: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
17: सच में सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर, वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह, सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
18: 104.9 FM, Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.

अदनान समी की आवाज में एक नशा है सीरियसली. और एक और गाना जो इसी साल रिलीज हुआ है और मे बी सिक्स मंथ्स बैक, विच टेक्स अस टू एक्चुअली डिसम्बर ऑफ 2025, वेदर यू रियलाइज इट और नॉट, लेट मी टेल यू, आज वो हाफ ईयर मार्क जो हमने टच किया है. तो येस, दिस सॉन्ग दैट आई एम प्ले फॉर यू नेक्स्ट. लेकिन उसके पहले माइक्रो बाउंड्रीज के बारे में बात करना चाहती हूँ. ये ना एक बड़ा फैसिनेटिंग सा मेंटल वेलनेस ट्रेंड जिसके बारे में मैं पढ़ रही थी, और जाने अनजाने कुछ लोग हम शायद ऑलरेडी उसे फॉलो करते हैं, लेकिन फॉर दोज पीपल हु डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, माइक्रो बाउंड्रीज वो होती हैं जो आप अपने ना मेंटल पीस के लिए, अपने एनर्जी को कंजर्व करने के लिए एक वो छोटे मोटे बाउंड्रीज अपने डे टू डे जिंदगी में लगाना शुरू करते हो, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ, इन ऑर्डर टू मेक योर सेल्फ हेल्थियर, यू नो. तो ये आप लोगों के लिए जो मैंने शेयर किया था, दैट वॉज D&D. द फर्स्ट थिंग दैट आई शेयर विथ यू वॉज डू नॉट डिस्टर्ब, जो हम अपने फ़ोन पे लगा लेते कि एक सर्टन टाइम के बाद कोई भी फ़ोन ना रिसीव नहीं करेंगे, विल स्टे अवे फ्रॉम दैट लिटिल थिंग विच मेसेज आर माइंड रियली. सो येस, एक वो D&D के बारे में हमें कृति और श्रीधर का भी कॉल आया कि वो एक 9 बजे लगा देते हैं, एक रात के 8 बजे लगा देते हैं, और उसके बाद एवरीथिंग इज़ ऑन अ साइलेंट मोड. मतलब वो चाहे भी तो वो अटेंड नहीं करना चाहेंगे. दैट्स द स्पेस दे हैव क्रिएटेड फॉर देमसेल्व्स, अ कंप्लीट डिटॉक्स ड्यूरिंग दैट टाइम. वेल डन सीरियसली. मैं पता नहीं अभी तक उस लेवल तक पहुंची नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल फ़ोन के बिना फ़ोन के रहूँ एक सर्टन टाइम के बाद. बट येस, आई थिंक I have a D&D on my phone after midnight, if I am not wrong. But I have to see, because this was just one day I did that because I was extremely tired. और मुझे चाहिए थी अपनी अच्छी नींद, और मुझे नहीं चाहिए था कि कुछ भी बस हो मेरे फ़ोन पे, तो इसीलिए मैंने ये किया था. बट आई डोंट थिंक आई हैव डन इट ऑन अ रेगुलर बेसिस. वेल, इट विल बी क्वाइट गुड फॉर ऑल ऑफ अस टू इम्प्लाई दैट. अब ये हमारे बड़े बुजुर्ग समझेंगे कि नहीं, ये दैट्स अनादर स्टोरी फॉर अनादर डे आई गेस. लेकिन हाँ, एक और चीज़ जो कर सकते हैं आप, वो है टेक्स्टिंग डिले. वो जो एक ट्रैप में हम होते हैं ना, एक अर्जेंसी ट्रैप में, वो उसे अगर तोड़ सकें तो क्या ही बात है. तो इफ़ यू वांट टू नो व्हाट एग्जैक्टली दैट आई मीन, इट इज़ कि मतलब एक कैजुअल सा कुछ मैसेज आए आपके पास, और वो एक होता है ना कि आपको इमीडिएटली रिप्लाई करने का एक जो कीड़ा है, उस कीड़े को अगर आप टेम कर लें तो बस यू आर सॉर्टेड. और हमारे लिए एक हेल्दी बाउंड्री ऐसे ही क्रिएट हो जाती है बाय चूजिंग व्हेन टू बी अवेलेबल, यू नो. बट इफ़ एन ओल्डर रिलेटिव सीज यू ऑनलाइन एंड यू हैवंट रिप्लाइड इंस्टेंटली, उन्हें लगेगा कि आपको डेफिनेटली कोई गड़बड़ है आपके साथ, या आप गुस्सा हो या कुछ हो. इसलिए ये मैनेज करना ना हमारी देसी कल्चर में बड़ा मुश्किल हो जाता है. बट येस, स्लोली एंड ग्रेजुअली मे बी मेक एवरीबडी अंडरस्टैंड अराउंड यू, एंड एक दिन वो आएगा, वो सुबह निकलेगी आपके लिए, जबकि ये जो अर्जेंसी ट्रैप है फॉर टेक्सटिंग, यू विल बी एबल टू मैनेज. एक और हमारे पास कॉल आया था, इट वॉज नथिंग टू डू विथ फोन, बट इट वॉज टू डू विथ टाइमिंग. और ये है मिस्टर अभिषेक, जिन्होंने कहा कि उन्हें मंचिंग का बड़ा शौक है, एंड आई ऑल्सो फॉल इन द सेम कैटेगोरी. एंड ही सेड कि वो 7 बजे के बाद, अपने डिनर करने के बाद, वो तुरंत ब्रश कर लेते हैं. इससे क्या होता है कि ना, ही वुडंट इंडल्ज इन ईटिंग एनीथिंग एल्स, क्योंकि क्या है ना, एट द एंड ऑफ द डे वो 2 मिनट की ब्रशिंग भी एक आपको काम ही लगता है, टूथ क्लीनिंग भी एक काम लगता है आपको. तो टीथ क्लीनिंग कर लो, यानी कि ब्रशिंग कर लो, और उसके बाद फिर वो मंचिंग वाली आदत पर बिल्कुल काबू पा लो. अभिषेक, वेल डन. और आप मेरे बनते हैं नियॉन कैक्टस के विनर. नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का गिफ्ट कार्ड आपका, इफ यू गिव मी अ कॉल राइट अवे. एंड राइट अवे आई एम गोना प्ले दिस नेक्स्ट ट्रैक फॉर ऑल ऑफ यू लेडीज एंड जेंटलमैन. माइक्रो बाउंड्रीज इज इन डिस्कशन. जेंजीज, मिलेनियल्स, इफ यू आर डूइंग इट, कॉल मी 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो.

लिसन अभिषेक, इफ यू आर लिसनिंग टू मी राइट नाउ, आपने पिछले सेगमेंट में जवाब दिया था और इसके लिए आपको नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का गिफ्ट कार्ड है. आई एम गोइंग टू होल्ड इट फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स और अगर आपका कॉल नहीं आया ना तो आई हैव टू रियली गिव इट अवे टू समबडी एल्स. तो 972-235-5555 पे जरूर कॉल करें और जल्दी से कॉल करें 5 मिनट के अंदर अंदर. Thank you once again, ladies and gentlemen, for all your inputs on micro boundaries that you are sending my way. Ab mera dil aur dimag bilkul pakka ho raha hai to abide that rule of, not munching in between after dinner. To wo kya tarika hai, wo jo hume bataya Kirti ne, it was Abhishek only. And usi ka endorsement mujhe abhi ek aur call se mila ki wo bhi aisa hi karti hai. कि एक टाइम के बाद फटाफट ब्रश कर लिया, रात के खाने के बाद ब्रश कर लिया और उसके बाद मतलब आप नहीं खाओगे क्योंकि फिर लगता है कि यार वो मेहनत दोबारा क्यों करो, फिर से ब्रश करना पड़ेगा, इससे अच्छे तो खाओ ही नहीं यार, थोड़ा सा रेजिस्ट कर लो. एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट अ हैबिट, राइट. एक और हैबिट जो कि माइक्रो बाउंड्री के नाम पर जो काफ़ी पॉपुलर है आई हियर, ये मैं पहली बार सुन रही हूँ लेकिन मेरे ख्याल से ये चीज़ कई लोग करते हैं ऑलरेडी. एंड दिस इज कॉल्ड द कार डोर बफर. व्हेन यू ड्राइव होम आफ्टर अ लॉन्ग डे, लेट्स से एक क्योटिक दिन रहा है, एक बिजी दिन रहा है और आप अपने कार में हो, घर पहुंच गए हो, तो थोड़ी देर, एक दो मिनट या लेट्स से 4 मिनट्स आप या 5 मिनट्स बैठे रहो कार में टू ब्रिंग योर माइंड टू दैट ट्रांजिशन कि घर पहुंच चुके हो और ऑफिस का काम अब घर लेकर नहीं आओगे. अब यहां पे जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि फोन भी नहीं और म्यूजिक भी नहीं, ऑल ऑफ दैट, बट फनी शेयर रेडियो पे मैं हूँ तो मैं तो कहूँगी कि यार 4 मिनट 5 मिनट का एक ना अपना ट्रांजिशन म्यूजिक चूज कर लो विच विल सॉर्ट ऑफ ट्रेन योर माइंड कि भाई ये गाना लगाते ही ना मतलब मैं उस होम फील गुड मोड में आने वाला हूँ और या आने वाली हूँ, यू नो. सो फाइंड अ सॉन्ग फॉर योर सेल्फ दैट सूट्स यू, दैट काम्स यू, दैट ब्रिंग्स दैट ट्रांजिशन मोर ईजी टू यू, एंड दैट्स कॉल्ड द कार डोर बफर. एंड आई सॉर्ट ऑफ लाइक इट, आई हैव टू बी ऑनेस्ट. You are listening to Funisha Radio 104.9 FM. Micro boundaries in our lives that we can create. This is Gapshap Gali with me too.

Hey, listen, I'm getting some great advices to create those micro boundaries in your life. वो जो एक अपनी शांति, सुख और शांति और आपकी समृद्धि के लिए. Too heavy, I know it is, but it is a fact. वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि अगर आपने अपने लिए क्रिएट कर ली ना, तो you will have that fairy tale ending going to your everyday story, which is happily ever after, ladies and gentlemen. तो अमरीना का कॉल आया है और अमरीना को मैंने होल्ड पे रखा है because she is the winner for Neon Cactuses $20 gift card, dining gift card, ladies and gentlemen. क्योंकि उन्होंने कहा कि जब वो अपने फोन को चार्ज करने के लिए रखती है ना रात को सोते वक्त, she does it at a distant place. वो अपने बाथरूम में उसको चार्जर पे लगा देती है. इसके दो फायदे, एक तो है कि ना सोने से पहले आप बार बार यू विल नॉट ट्राई टू रीच आउट द फोन इफ देर इज ए नोटिफिकेशन बजिंग और एनीथिंग, यू नो, आपका वो अर्ज नहीं होगा क्योंकि आपको वाकई में उठ के जाना पड़ेगा टू चेक दैट. एंड सेकेंडली, सुबह का जब अलार्म बजेगा वो इतना हाई वॉल्यूम पे रखें कि आप मजबूर हो जाए टाइम पे उठने के लिए. हाउ कूल इज दैट? सो येस, दिस इज वन माइक्रो बाउंड्री वन कैन ईजिली क्रिएट इन देयर लाइफ. सो अमरीना के साथ मैं जाके वापस बातचीत करती हूँ, उनकी डिटेल्स लेती हूँ और नियॉन कैक्टस का गिफ्ट कार्ड देके वापस आती हूँ. ठीक है, इन द मीन टाइम वॉट यू डू इज कीप लिसनिंग टू फनी रेडियो 104.9 FM. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया और ये पता चल गया कि आप सबको बहुत अच्छे से जानकारी है अबाउट फीफा. द फर्स्ट गेम एवर टू बी प्लेड, फीफा वर्ल्ड कप एवर टू बी प्लेड वॉज इन 1930 और उरुग्वे जो होस्ट थे वो ही विनर थे उस साल के. सो द फर्स्ट विनर ऑफ फीफा वर्ल्ड कप वॉज उरुग्वे और द लेटेस्ट हैं अर्जेंटीना, दैट यू ऑल आर डेफिनेटली अवेयर ऑफ. लेकिन हमारे इस सवाल के विनर्स हैं दीपक एंड रिजवाना. थैंक यू वेरी मच. सैन इडली की तरफ से आपको आपकी चॉइस की डोसा और साथ में फिल्टर कॉफी जो मिलने वाला है ना, एंजॉय कीजिएगा. एंड एंजॉय कीजिएगा क्योंकि ये मेहनत की कमाई वाली चीज़ है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ये सबके पास नहीं होती है, ये आपके पास है क्योंकि यू आर डेफिनेटली वेल अवेयर ऑफ फीफा एंड एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन. आई एम वेरी वेरी श्योर. मुझे बड़ी कॉन्फिडेंस लगी आप लोगों की आवाज़ों में, तो मुझे पता है कि फीफा के बारे में आप अभी भी, इस साल भी जो चल रहा है, आप अच्छी तरह से जानते हो. तो शायद आप ये जानते होंगे कि अभी हम विन और गो होम उस ब्रैकेट में पहुंच चुके हैं, सिंगल एलिमिनेशन ब्रैकेट में पहुंच चुके हैं. द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ राउंड्स आफ्टर द ग्रुप स्टेज इज राउंड ऑफ 32, फिर ये राउंड ऑफ 16 होगा, फिर क्वार्टर फाइनल्स एंड देन फाइनली सेमीफाइनल्स के बाद फाइनल्स ऑन जुलाई 19th दैट वी आर गोइंग फॉर. तो आज आखिरी दिन है जून का, जुलाई का महीना हम हिट करने वाले. 19 मोर डेज फॉर ऑल द थ्रिल. लेकिन देयर वाज सो मच थ्रिल लेडीज एंड जेंटलमैन यस्टरडे दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन ए बिट. और फिलहाल विशाल शेखर के म्यूजिक में दैट फर्स्ट सॉन्ग दैट गॉट देम एन अवार्ड फ्रॉम झनकार बीट्स. विशाल शेखर कमिंग टू कर्टिस कलविल सेंटर टू परफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस. इससे अच्छा क्या ही हो सकता है कि ये सारे गाने और क्या पता कुछ जो कि आपने सोचे भी नहीं होंगे वैसे कुछ गानों के साथ स्टेज पे आग लगाने वाले हैं विशाल दादानी और शेखर रबजियानी. लेडीज एंड जेंटलमैन, cashpatel.com पे जाकर आप अपने टिकट जरूर खरीद लें और अगर फनेजा का कोड यूज करते हैं आप तो आपको 30% डिस्काउंट भी मिलता है. लेकिन अगर आप cashpatel.com पे गए तो आपको नहीं मिलने वाला है, इट्स cashpatelproductions.com दैट यू नीड टू रिमेम्बर. याद रहेगा ना, क्विक करेक्शन अगेन, इट्स cashpatelproductions.com.

एंड दैट्स विशाल शेखर, यू नो, इन दैट गाना जो कि पहला अवार्ड लेकर आया था ये गाना उनके लिए. एंड दैट 30% डिस्काउंट इफ यू यूज द फनेशिया कोड फॉर व्हाट एग्जैक्टली, लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू डोंट नो तो भाई आप बहुत पीछे चल रहे हो, क्योंकि हमारे अपने बैकयार्ड में कर्टिस कल्विन सेंटर इन गार्लैंड वी आर गोइंग टू हैव दिस अमेजिंग कॉन्सर्ट ऑफ दीज टू, विशाल एंड शेखर. पूरी स्टेज ना आग लगाने वाले हैं वो उस पर, क्योंकि मैंने सुना हुआ है, बहुत कुछ सुना हुआ है, एंड सुपर एक्साइटेड. इट इज ऑन 12th of July, लेडीज एंड जेंटलमैन. कैश पटेल प्रोडक्शंस .com पे जाके टिकट्स जरूर खरीद लीजिए. एंड इन आर बैकयार्ड इट इज द डैलस स्टेडियम विच इज ऑन फायर राइट नाउ, आइवरी कोस्ट वर्सेज नॉर्वे का जो आमना सामना चल रहा है अभी इस वक्त एज वी स्पीक. बहुत सारी उम्मीदें लगी हुई हैं दोनों टीम्स के फैंस को. दिस हाई स्टेक आफ्टरनून क्लैश विल डिसाइड कि कौन सी टीम एक कदम और आगे बढ़ेगी राउंड ऑफ 16 में. नॉर्वे के स्टार जो हैं स्टार स्ट्राइकर अर्लिंग हालैंड पर सबकी नजरें होने वाली हैं, जो 4 गोल्स के साथ गोल्डन बूट की रेस में काफी आगे बढ़ चुके हैं. हालैंड इज चेजिंग लियोनल मेसीज 6 गोल्स डिस्पाइट ओनली प्लेइंग इन 2 ग्रुप स्टेज गेम्स सो फार. एंड ऑफकोर्स आई एम ऑल कीन टू सी दैट वाइकिंग रो, और ये इतने इसके बारे में चर्चा हुआ है कि देखना चाहती हूँ यार हमारे डैलस स्टेडियम में हमारे जो नॉर्वे के फैंस हैं वो जो अगर वाइकिंग रो में अगर उस बैक एंड फोर्थ वो जो एक सिंक्रनी में अगर जाएंगे तो मजा आ जाएगा यार. अ फिनोमिनन अलोंग साइड नॉर्वेज मोस्ट सक्सेसफुल रन एट द वर्ल्ड कप इन नियरली 3 decades, ladies and gentlemen. We'll keep you

जुनून ही है ये फीफा का जो हमें एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आता है. फीफा टॉक्स दैट वी आर गोइंग टू हैव राइट नाउ, वी आर इन फैक्ट हैविंग राइट नाउ. सो लेट्स वेरी ब्रीफली टॉक अबाउट द टू बिगेस्ट अपसेट्स इन वर्ल्ड कप नॉकआउट स्टेज history, and that happened yesterday, ladies and gentlemen. Germany versus Paraguay made Germany ka nikal jana. That was unbelievable, seriously. Matlab kya hi kahun, jo bhi losing team hota na unke liye mujhe bada bura lagta hai. Actually main US ko root kar rahi hu, aur uske alawa baki jo bhi haarta hai uske liye bahut bura feel kar rahi hu. Aur ye bhi kehna chahti hu ki bhai Netherlands aur Morocco ke beech mein bhi jo wo epic battle chala, oh god, two of the biggest upsets that we saw yesterday. Netherlands is completely out of FIFA. They are packing their bags and returning home, and that was really sad to see. Abhi jo game chal raha hai, that is between Ivory Coast and Norway, aur ye Dallas Stadium mein chal raha hai. 24 minutes into the game, abhi tak ek bhi goal kisi bhi team ne nahi kiya hai. That's the update for all of you. As for the heavy favorites France, who have traveled to MetLife Stadium apne group stage ke perfect record ke saath, and एम्बापे और जो डायनामिक फ्रेंच अटैक है वो देखने लायक होने वाला है, क्योंकि स्वीडन ऑलरेडी ओवरवेल्म रही है एलीट टीम्स के अगेंस्ट खेलते वक्त. एंड द टू टाइम्स वर्ल्ड चैंपियंस आर गोइंग टू बी टफ टू बीट. द टू टाइम्स यू नो चैंपियंस, उनको बीट करना काफ़ी मुश्किल होगा. एंड स्वीडन का हम जानते हैं कि थर्ड प्लेस उनको काफ़ी मुश्किल से जो मिला है. सो इट इज़ गोइंग टू बी अ टफ गेम टू सी विच इज़ टू कम लेटर इन द आफ्टरनून टुडे. एंड द लेट नाइट फायर वर्क्स इन मेक्सिको सिटी दैट यू कैन बी वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट. येस द डे क्लोजेज आउट विद एन एब्सोल्यूट ब्लॉक बस्टर एट द एस्टेका. को होस्ट मेक्सिको विल हैव ए मैसिव होम फील्ड एडवांटेज, लेकिन उनके सामने एक बहुत ही डेंजरस इक्वाडोर की टीम है जो एक इमोशनल कमबैक विन के बाद पूरी कॉन्फिडेंस में आ चुकी है. सो दैट इज टू सी लेटर. फिलहाल यही कि भाई फीफा ने ना चार चांद लगा दिए हैं डालस में.

0: जाते जाते आप लोगों को ना याद दिलाना चाहती हूँ कि ऐसे ही चमकते रहिए। अगर ये गाना सुन के आपके चेहरे पे थोड़ी सी भी स्माइल आई ना, तो मतलब आप समझ लीजिए, शो सुन के अगर थोड़ी सी भी स्माइल आई तो वर्थ फाइल हो गया भाई मेरा यहाँ पे आप लोगों के साथ बतियाने का। यू आर लिसनिंग टू गपशप गली विद मी टू। जाते जाते ना PMJ ज्वेल्स के बारे में बताना चाहती हूँ, जो वाकई में आपके चेहरे पे एक चमक, क्योंकि वो जो ग्लिटर एंड शाइन है उनकी ज्वेलरी में, वो तो भाई चार चांद लगाएंगे आपके चेहरे पर। गोल्ड, डायमंड या कोई भी अगर आप ज्वेलरी की तलाश में हो, एनी काइंड ऑफ डिज़ाइन दैट यू आर लुकिंग फॉर, गो टू फ्रिस्को। दिस लोकेशन, दिस 45th लोकेशन दैट दे हैव फॉर ऑल ऑफ यू। PMJ ज्वेल्स ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप राइट हियर इन फ्रिस्को, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो जी हाँ, ज़रूर जाएं, और जब जाएं ना तो एक बार दिल से महेश बाबू और साथ में सितारा घट्टा मनीनी को ज़रूर थैंक यू कहें फॉर चूजिंग डैलस एज द इट प्लेस फॉर PMJ ज्वेल्स। एंड बस इसी के साथ आज के लिए मैं अपना शो ख़त्म करना चाहूँगी, मेकिंग वे फॉर सिमी हियर। एंजॉय आफ्टरनून अड्डा विथ हर, एंड दिस इज मी टू साइनिंग ऑफ फॉर द डे।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल्ड वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
5: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
4: नहीं।
5: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
4: नहीं।
5: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
4: वो भी नहीं।
5: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTechs, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
6: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
7: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
6: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
8: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
9: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
8: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
9: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
3: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
10: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
11: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo, dhuaan dhuaan. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
13: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स मे वेरी। I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
16: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय
17: करो। अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, because Indian Attire Frisco summer sale is on. Stunning lehengas, elegant sarees, bridal jewelry, men's and kids wear.
18: Wait, इतना सब और price?
3: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional हो या fusion, अब हर outfit बोलेगा।
19: मैं ही तो हूँ।
20: This is Udai Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.

अगर आप वो सुन रहे हैं जो मैंने कहा ही नहीं, तो आई एम वेरी श्योर कि आप वो भी सुनेंगे जो मैं अब कहने वाली हूँ। 12:30 से 2:30 बजे तक मेरा और आपका साथ रहेगा। मैं हूँ आरजे सिमी, लेके आई हूँ आपका फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा, एंड दिस इज फन एशिया रेडियो 104.9 FM। आज का टॉपिक जो है ना वो काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है भाई? क्योंकि आज का टॉपिक है कि वो उन गानों के बारे में जो हम सबने गाए, धूमधाम से गाए, एकदम चिल्ला चिल्ला के कॉन्फिडेंस से गाए, लेकिन लिरिक्स कभी समझ नहीं पाए, कुछ भी गा रहे थे। मतलब हम सब ने कुछ गाने को तो इतनी कॉन्फिडेंस के साथ गाया है, लेकिन कई बार है ना उनके लिरिक्स को समझा ही नहीं है। तो आज का शो डेडिकेटेड है उन आइकॉनिक सॉन्ग्स के नाम जिन्होंने हमने फीलिंग्स के साथ गाया है, पर सिर्फ फीलिंग्स के साथ ही गाया है, अंडरस्टैंडिंग के साथ नहीं। सच बताइए, कई बार आपने किसी गाने को ऐसा कॉन्फिडेंस में गाया है और बाद में आपको लगा कि अरे लिरिक्स ये थे, ये तो पता ही नहीं था। और हम याद करेंगे ऐसे वो लेजेंडरी गाने जो मतलब मैक्सिमम लोगों ने गलत ही गाए हैं, और वो फेमस भी इसलिए हुए क्योंकि उनकी वाइब इम्पॉर्टेंट थी, लिरिक्स इम्पॉर्टेंट नहीं थे। वैसे आपको ऐसा कोई गाना याद हो जो आपने सालों तक गलत लिरिक्स के साथ गाया, तो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं उन गानों के बारे में @972-235-5555 पे। एंड मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक वैसा ही सॉन्ग विच इज तेरा होने लगा हूँ। इसका जो शुरू का इंग्लिश का जो पोर्शन है उसमें हम ऐसे ही गा देते, मतलब रैंडम शाइनिंग इन द शेड एंड शर्ण शर्ण नाउ इट्स, बाद में पता चला कि वो था शाइनिंग इन द सेटिंग सन लाइक शेड एंड ऑल, वो भी आप सुनेंगे।

your voice. I am singing song. Soup song. Flop song.

जी हाँ, बॉय दिस कोला वेरी डी, ये भी तो उन सॉन्ग्स के लिस्ट में एकदम टॉप पे आता है जिसके लिरिक्स नहीं पता, हम क्या गा रहे हैं नहीं पता, बट हम गाए जा रहे हैं क्योंकि हमें मजा बहुत आ रहा है। और ये जो सॉन्ग है ये 2011 में रिलीज हुआ था और वर्ल्ड वाइड सेंसेशन बन गया था। लिरिक्स का मतलब किसी को पता नहीं था लेकिन सब भी गाते ही रहते थे। सूप सॉन्ग बड़ा फेमस हो गया था, हर टूटे हुए दिल वाले लड़कों का एंथम बन चुका था ये। और इसी सॉन्ग से हमें मिले हमारे फेवरेट रांचना हीरो धनुष। जी हाँ, और ऐसा कौन सा सॉन्ग है जिसके लिरिक्स आप एकदम गुनगुनाते रहते हैं कॉन्फिडेंस में फुल, और आपको पता है कि आपको या तो लिरिक्स पता नहीं है या फिर आप गड़बड़ गा रहे हैं बट आप गाए जा रहे हैं? आप हमें कॉल करके बता सकते हैं एट 972-235-5555 पे। एंड अभी हमें कॉल आया था प्रिया का, जिन्होंने हमें बताया कि ये जो सॉन्ग था ना, अब जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। जब वो बच्चे थे तो वो और उनके फ्रेंड्स एकदम जोर शोर से गाते रहते थे कि अब जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बाप बन जाए। सो फनी, हम लोग बहुत हंसे इस बात पे। एंड आई रिमेम्बर कि ये आइडिया शायद उन्होंने रॉकी एंड रानी को भी दे दिया है, क्योंकि उस मूवी में भी जो लीड एक्टर की सिस्टर होती हैं वो भी ये सेम सॉन्ग इतने ही खतरनाक कॉन्फिडेंस से सबके सामने गाती है। और इस सॉन्ग की इतनी बात हो रही है तो बजा देते हैं कि भाई सही लिरिक्स है क्या, आप सुन तो लीजिए।

और आज हम बात कर रहे हैं उन सॉन्ग्स की जिसके लिरिक्स हमें नहीं पता होते। अक्सर हम कुछ भी गा रहे होते हैं लेकिन हम गा रहे होते हैं, गुनगुना जरूर रहे होते हैं क्योंकि हमें मजा आ रहा होता है। जी हाँ, द नेक्स्ट इन लाइन इज वायरल हिट सेंसेशन मनिका मगाहिते, जो कि एक श्रीलंकन सिन्हाला लैंग्वेज का सॉन्ग है, सांग बाई योहानी सतीशन एंदुलन, लेकिन इसको फिर इंडियनाइज किया गया और बना सॉन्ग हाँ मुझे प्यार है तुमसे। हाँ, तो अब सुनते हैं उस सॉन्ग को। वैसे आपके जहन में आपको याद आ रहा है ऐसा कोई सॉन्ग जिसके लिरिक्स आप कॉन्फिडेंटली गलत गाते आए हो आज तक, तो कॉल करके बताइए हमें 972-235-5555 पे।

0: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
1: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
2: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
3: Calculating route, rerouting.
1: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
3: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
1: Kyu?
3: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya pooja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
1: Achha, to seedha wahi le chalo.
0: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
3: Your new destination has arrived.
1: Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
4: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
4: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
6: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
7: हाँ.
6: घर रिलोकेट करनी है?
7: हाँ.
6: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
7: हाँ भाई हाँ.
6: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
8: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
9: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
9: ये क्या होता
10: है? सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
0: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन, जस्ट 3 डोर्स डाउन, विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.

0: To all the Masakkalis and Matakkalis out there, आप सुन रहे हैं Fun Asia Radio 104.9 FM और मैं हूँ आपकी अर्जे सिमी और the show is known as Afternoon Adda और आज हमारे साथ एक बहुत ही special guest है. जी हाँ, online her name is Shefali Panjwani from My Family Home Loan, जो कि आपको home loan options समझने में और buying process को simple बनाने में आपकी help करते हैं. Hi Shefali, you're on air.
1: Hi, good afternoon to all Fun Asia listeners. I hope you are having a wonderful afternoon today.
0: I hope they are all listening to you and they would say good afternoon back to you. आपसे एक सवाल है कि जो business owners होते हैं, freelancers होते हैं और 1099 earners हैं, उनके लिए home loan लेना थोड़ा difficult होता है, different होता है. ऐसा क्यों होता है and how can you help them?
1: Sure. डिफरेंट इसलिए होता है क्योंकि उनका इनकम फ्लक्चुएट करता है, बिकॉज इट्स 1099 और बिजनेस इनकम जो एवरी ईयर सेम नहीं होता है और स्टेबल नहीं होता है, वर्सेस W2 इनकम जो स्टेबल होती है, विच इज अ सैलरी. सो इस वजह से ये दोनों चीजें डिफ्रेंशिएट करती है और लोन प्रोग्राम्स भी उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है. तो ट्रेडिशनल लोन्स जब होती है तो लेंडर प्रिफर करता है स्टेबल इनकम, लाइक लास्ट टू इयर्स W2 इन द सेम फील्ड एंड सेम पैटर्न. और जब बिजनेस इनकम होती है तो इट गोज अप एंड डाउन. समटाइम्स वी हैव अनदर बिजनेस वी बॉट और वी सोल्ड द बिजनेस और वी हैव अ पार्टनरशिप, सो यू गेट अ K1, सो पार्टनरशिप इनकम. सो इस वजह से उस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन को कंसिडर किया जाता है एंड उस हिसाब से प्रोग्राम सेलेक्ट किया जाता है. और वो थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि लेंडर हैज टू मेक श्योर इट्स स्टेबल, द बिजनेस इनकम एंड क्रेडिट इज ग्रेट एंड द बोरोवर इज स्ट्रांग. सो ये सब चीजें ध्यान में ली जाती है और अकॉर्डिंग टू लेंडर गाइडलाइंस अप्रूवल फिर दिया जाता है. उसमें कई प्रोग्राम्स है, नॉन QM फंडिंग आता है, देन बैंक स्टेट, उसमें बैंक स्टेटमेंट लोन होती है जस्ट बेस्ड ऑन योर बैंक स्टेटमेंट, ईदर पर्सनल और बिजनेस. दे कैन नॉट डू इट बोथ, इट हैज टू बी ईदर पर्सनल और बैंक स्टेटमेंट बेस्ड. देन अनदर वन इज जस्ट ऑन द बिजनेस इनकम, टू ईयर्स बिजनेस इनकम और जस्ट 1099. एंड देर आर अदर प्रोग्राम्स लाइक एसेट डिप्लेशन प्रोग्राम इन विच देर आर लिक्विड एसेट्स दैट इज टेकन इन टू कंसिडरेशन when income is not sufficient enough to qualify you, just a change of circumstances aate hai, someone like a husband and wife both are working and one doesn't have the job, that's when if you have liquid assets still you can get qualified for it, and that's a great program for investment properties. So there are several programs. Let's say it's not difficult, but let's make it more creative that you have to work on it to get the borrower what they are looking for and what is best for them. So if you have any kind of scenario with a primary residence or investment property, we are here to help you. Reach out to us and let us know if you're not looking right now, like in the future, we can get you prepared, get your credit profile and what income documentation needs to be worked on or what needs to be there. We can help you with that. Please give us a call at 469-734-3338.
0: Thank you so much, Shefali ji. Have a good day and we will connect with you again.
1: Thank you. Have a great day, you all.
0: भाई देखिए, पैसे बचाने के लिए तो पैसे को डूबने से बचाने के लिए तो शेफाली जी और माय फैमिली होम लोन है, लेकिन जब दिल डूब जाए तो क्या किया जाए. अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय बता देंगे शायद वाया दिस सॉन्ग.

अब वक्त आ गया है हमारे गिव अवे राउंड का। जी हाँ, तैयार हो जाइए एकदम, जैसे आप केबीसी खेलते हैं ना, मतलब मोबाइल फोन एकदम हाथों में, आपकी उंगलियां एकदम मोबाइल फोन के ऊपर, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है। और बता दूं कि मतलब अवार्ड क्या है, अवार्ड ये है कि आपको मिल सकता है फ्री कड़ाही पनीर या फिर कड़ाही चिकन, दैट टू फ्रॉम चंडीगढ़ बाइस, जो कि मैकडर्मट एलन में है। तो एक्साइटेड है, सवाल पूछूं? अच्छा, कुछ कुछ कैवियट्स हैं, कुछ रूल्स हैं कि आप तभी आंसर करें, आप तभी पार्टिसिपेट करें अगर आपने ये जो गिव अवे है फन एशिया में किसी भी और शो में लास्ट एक महीने में ये गिव अवे ना जीता हो। ओके, सबको मौका देंगे, लेट्स बिगिन। ठीक है भाई, तो मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ और आपको जवाब देना है बाय कॉलिंग मी एट 9722355555 पे। सवाल ये है कि एक आदमी कह रहा है कि भाई मैं रोज बाल काटता हूँ, शेव करता हूँ, बियर्ड वगैरह क्लीन करता हूँ, लेकिन लेकिन उनके बाल टच से मस नहीं हुए हैं, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए कैसे हो सकता है, मतलब कि रोज दाढ़ी और बाल बना रहे हैं, बाल काट रहे हैं, बियर्ड भी शेव कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है बालों में। भाई बताइए, सोचिए जरा और कॉल कीजिए मुझे 9722355555 पे।

अब वक्त आ गया है कि हम आपको आज के गिव अवे राउंड के विनर को अनाउंस करें, डिक्लेयर करें। और आज का जो चंडीगढ़ बाइट से जो फ्री कड़ाही पनीर और कड़ाही चिकन जीता है, उनका नाम है मिहिर पटेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं आज का गिव अवे राउंड। सवाल ये था कि एक बंदा कहता है कि भाई मैं तो रोज बाल काटता हूँ और वो रोज शेव भी करता है, उसके बियर्ड वगैरह भी हैं, वो शेव भी करता है, लेकिन उसके बालों में जो है कुछ भी चेंज नहीं होता, ना ही उसके बियर्ड में, ऐसा क्यों होता है? जवाब मैक्सिमम लोगों ने सही दिया है कि क्योंकि वो बार्बर है, हेयर स्टाइलिस्ट है एट अ सलोन, ना ही है, इसलिए उसके जो है अपने बालों में कोई चेंज नहीं होते। और मिहिर जी, आप तो काफी लकी निकले, आपको तो मिल रहा है कड़ाही पनीर और क्या फिर कड़ाही चिकन, आप जो भी खाना चाहें, फ्रॉम चंडीगढ़ बाइस, जो कि लोकेटेड है एट मैकडर्मट ड्राइव इन एलेन। लेकिन बाकी लोगों को भी बता दूं कि ये ना स्पेशल थाली भी सर्व करते हैं मंडे से फ्राइडे, और इनकी जो डिशेज होती हैं वो डेली रोटेट होती हैं लंच के टाइम पे, तो आप जरूर जाएं और खा के देगा, आपको पक्का ही बहुत पसंद आएगा।

0: किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइज़रवे, स्वीट 205, फ्रिस्को।
2: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
3: लिया।
2: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
3: नहीं आया।
2: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक, 972-863-772. That's 972-863-772.
4: Visit www.senadainc.com today.
5: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897, और विजिट astrologerishwar.com।
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं।
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं।
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं।
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
8: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com। Call 972-618-8555. AG Fintax, your growth, our strategy.
1: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
9: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड, व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस, एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
10: Hello, accident claim? Okay. Name of the lawyer? Umar Khwaja.
11: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
12: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

एंड आप सुन रहे हैं फनेशियल रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी एंड दिस शो इज द आफ्टरनून अड्डा। स्टूडियो में टाइम हो गया है 1:38 और अभी आपका और मेरा साथ जो है मोटा मोटी 1 घंटे का है। तो बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं, करनी हैं। और अभी हम एक गाना सुन रहे थे कि ये इश्क है जन्नत दिखाए। वैसे जन्नत की जो डेफिनेशन है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ लोग अपने घर को ही जन्नत बोलते हैं, लेकिन अगर आपका जन्नत का सपना यानी कि आपके घर का सपना अगर अभी तक सपना ही है और आप उसको हकीकत में बदलना चाहते हैं, देन यू शुड कंसल्ट ड्रीम होम मॉर्गेज, क्योंकि ये लेके आए हैं पर्सनलाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस और इनका प्रोसेस काफी स्मूथ है, स्ट्रेस फ्री है, ईजी है और इनके पास सारे 50 states ऑफ US के लाइसेंस भी है और इनकी एक्सपीरियंस टीम आपके लिए एक राइट होम लोन ऑप्शन जरूर बताएगी विच इज टेलर्ड अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो अगर आप अपना पहला घर, अपना जन्नत खरीदना चाह रहे हैं, अपग्रेड करना चाह रहे हैं या फिर एक रीफाइनेंसिंग सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ड्रीम होम मॉर्गेज को, जिनका की फोन नंबर है 9722455626 या फिर आप उनके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं which is dreamhomemortgage.com for further details.

You were listening to My Dil Ghazm from the movie Salaam Namaste. इस सॉन्ग में ना दोनों की, लड़का और लड़की के नखरों की बात होती है, और नखरों से अगर मैं याद करें तो इंश्योरेंस कंपनीज के नखरे कम नहीं होते. आई मीन जब हम इंश्योरेंस ले रहे होते तब तो इंटायर पर्पस ही यही होता है कि जब कोई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो तो उसमें यू नो फाइनेंशियल लॉस कम हो, थोड़ी मदद मिल जाए. लेकिन वो मदद नहीं, सर का दर्द बन जाती है. जी हाँ, अगर आपको किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट कुछ ऐसा हो जाए या स्लिप या फॉल इंसिडेंट हो जाए और आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएं तो वो बड़े ही ड्रामे करते हैं, बड़े ही डॉक्यूमेंटेशन पूछते हैं, लीगैलिटीज में इन्वॉल्व करते हैं. लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि इसका एक अच्छा इलाज है, इससे डील करने के लिए आपको एक मदद मिल सकती है, हु इज अटर्नी ओमर ख्वाजा. जी हाँ, ये आपको ना तब तक इनको पे नहीं करना होता जब तक कि आपको अपना ड्यू कंपनसेशन मिल ना जाए, जब तक कि आप केस जीत ना जाए. अगर आप लेना चाह रहे हैं इनसे फ्री कंसल्टेशन तो आप कॉल कर सकते हैं 4693005046, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज attorneyomar.com.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है,
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
14: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
15: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
14: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
16: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
17: इन प्लेनो।
16: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
18: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
19: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
18: Kya matlab?
19: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
18: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
19: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
18: Ab to karna hi padega, madam.
20: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
21: Ajji, sunte ho? Soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
22: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
21: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
22: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
21: सच में? सब संभाल लेंगे?
22: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
5: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
23: Yeah, here we go again. Authentic, original, and better than our rival.

ऐसे ही और अमेजिंग विशाल एंड शेखर हिट्स सुनने के लिए आपको जाना है कर्टिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड ऑन जुलाई 12th, क्योंकि विशाल एंड शेखर आपके सामने प्रकट होने वाले हैं। जी हाँ, वो लाइव आ रहे हैं। सो डैलस बॉलीवुड फैंस, मतलब इससे अच्छी न्यूज आपके लिए क्या हो सकती है। वैसे टिकट सेल पे अवेलेबल हैं, kashpatelproductions.com पे से लेके आप टिकट्स खरीद सकते हैं। और अगर आपने कोड यूज किया हमारा विच इज फन एशिया, तो आपको 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। Isn't this amazing? So guys, go for it. और अच्छे अच्छे गानों के लिए तो हमारे साथ ही बने रहे फन एशिया रेडियो 104.9 FM विद मी आरजे सिमी, और शो है आफ्टरनून अड्डा। वक्त आ गया है कि मैं आपके लिए एक और अमेजिंग सा गिव अवे लेके आऊं। क्वेश्चन पूछूं, अगर आपने सही जवाब दिया तो आप जीत सकते हैं फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। तो तैयार हो जाइए, हाथ एकदम मोबाइल पे। ओके, सो मैं आपसे एक डायलॉग बोलने वाली हूँ अभी, और आपको बताना है कि ये कौन सी मूवी से लिया गया है और किस एक्टर ने बोला है। सो यू हैव टू टेल मी मूवी एंड द एक्टर नेम। ओके, डायलॉग ये है कि मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, लेकिन रुकना नहीं चाहता। ये किस मूवी से लिया गया है, कौन से एक्टर ने बोला है, अगर आपका जवाब पता है तो आप कॉल करके हमें बताइए 972-235-5555।

काश मुझे भी ऐसे विसलिंग करने आती। वैसे अरे रे रे रे रे, हमें भी अपना गिव अवे राउंड का विनर मिल चुका है। हमने आपसे एक डायलॉग का मतलब सवाल पूछा था कि एक पर्टिकुलर डायलॉग दिया था विच वॉज कि मैं उड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, लेकिन रुकना नहीं चाहता। तो इसका मुझे जानना था मूवी का नाम और एक्टर का नाम। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिए, बहुत सारे कॉल्स मैंने मिस भी कर दी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और आज के जो विनर है, जिनको की फन पिज्जा किचन का जो गिव अवे मिला है, वो है आरो पटेल। कांग्रेचुलेशंस आरो, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड। वैसे आज आई थिंक इट्स अ डे ऑफ पटेल्स, आई मीन पहले गिव अवे मिला मिहिर पटेल को, दूसरा गिव अवे मिला आरो पटेल को। दैट्स वाई नोबडी एल्स कुड स्टैंड अ चांस अगेंस्ट यू गाइस। वैसे फन पिज्जा किचन भी ऐसा ही है कि इसके हर स्लाइस का ना कोई और कोई मतलब देर कैन नॉट बी एनी कॉम्पिटिशन, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अचारी पनीर पिज्ज़ा ज़रूर ट्राई करें, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो तंदूरी चिकन पिज्ज़ा इज़ अ प्योर स्मोकी परफेक्शन फॉर यू, स्ट्रेट फ्रॉम द तंदूर टू योर टेस्ट बड्स। अगर आपको माइल्ड पसंद है, बोल्ड पसंद है, कैसा भी स्पाइस लेवल पसंद है, एक स्लाइस आपका यहाँ पे इंतज़ार जरूर कर रहा है। अगर आपको इस पे कोई और डिटेल्स चाहिए, जैसे कि मेन्यू हो गया, ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स हो गए, तो आप इनके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, विच इज़ funpizzakitchen.com।

वैसे जब बीमारी हो जाती है तो ये डायलॉग तो हम डॉक्टर्स को भी कहते हैं कि भाई तुम ही हो बंदे सका, तुम ही भगवान हो यार, बचा लो. एंड यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है यूएस में. आई रियलाइज कि सेम डे केयर मिलना कितना ही डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत ही अपॉइंटमेंट्स का सिस्टम है. लेकिन लेकिन हर जगह नहीं. जी हाँ, लनोक्सी मेडिकल में ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहाँ आप कभी भी वॉक इन कर सकते हैं, किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है. और तो और ये 7 days a week ऑपरेट करते हैं, दैट टू फ्रॉम 8 AM अर्ली मॉर्निंग टू 8 PM, विच इज लाइक लेट नाइट नहीं, बट एटलीस्ट यू नो डिसेंट नाइट टाइम. और 13 years का एक्सपीरियंस है इनके पास. टेक्सास प्राइमरी केयर लेके आते हैं ये, जिन्होंने अभी तक कम्युनिटी की बहुत केयर की है और अब वो ग्रो कर रहे हैं और एक नए नाम के साथ आए हैं एट द न्यू लोकेशन विच इज फ्रिस्को. इंट्रोड्यूसिंग लनोक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. यहाँ आपको मिलेगा प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, सीटी स्कैन, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स. और अगर आप स्पा वगैरह के लिए भी कुछ ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो ये भी है भाई, यहाँ पे सब कुछ है एक रूफ के अंदर. तो जरूर जाएं, जरूर जाएं और एटलीस्ट स्पा का तो मजा ले ही ले.

0: देखिए, ये जो सेंटेंस है कि मेरी खता है कि तुझे पता नहीं, ये मैं लाइफ में नहीं होने देना चाहती हूँ। तो मैं आपको ज़रूर बता देना चाहती हूँ, ताकि मुझसे खता ना हो, कि मुझे आपसे बातें करने में बिल्कुल बहुत मज़ा, बहुत सारा मज़ा आता है। मतलब मुझे शो करते वक्त, तो आप लोग जब कॉल करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करना। लेकिन लेकिन लेकिन हर चीज़ का द एंड होता है। तो वैसे ही अब इस शो का भी टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन अगेन लेकिन कल फिर मैं मिलूंगी आपसे 12:30 से 2:30 बजे तक। और तब तक आप इंतजार करें, अपना ख्याल रखें। और ये जो शो था ना, आफ्टरनून अड्डा, दिस वाज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन US। अगर आपको फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए और चाहिए कि कोई आपके अनटैप्ड पोटेंशियल को डिलीवर करे, उसको बाहर निकाले, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे या फिर फॉर बिजनेसेस, तो आपको को जरूर कांटेक्ट करना चाहिए। ये काफी ट्रस्टेड हैं और इनके पास काफी एक्सपीरियंस है, आपको फ्यूचर के लिए बिल्कुल रेडी कर देंगे। आप कॉल कर सकते हैं एट 4699429888, या फिर आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज agfintax.com। और जैसा कि मैंने बताया, मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन आरजे किरण के आने का भी वक्त हो गया है। मैं थी आरजे सिमी, अब आपसे अलविदा कहती हूँ, टाटा बाय बाय कहती हूँ, कल फिर मिलूंगी जैसा कि मैंने बताया 12:30 से 2:30 बजे तक। बाय।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर। विजिट श्रीकृष्णा.com।
4: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
5: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
6: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
5: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
3: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
7: भूख लगी
8: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
9: स्ट्रीट स्टाइल शॉट्स, रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
3: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
10: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
11: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
10: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
14: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
15: मैं हीरो।
16: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
3: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
15: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
17: Pritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
18: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
17: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
18: वेट, व्हाट?
19: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
20: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद एनआरआई वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
19: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
21: Hi, I am Shah Rukh Khan. You are listening to Fun Asia.

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Thank you so much for connecting with me this afternoon. Afternoon Drive Time with Sunehri Kiran ke saath. Main Kiran maujood hoon. 2:30 baje se 5 baje tak aapke saath rehti hoon. Monday to Friday. Yani ki tamam weekdays aapke saath aapke driving time pe maujood rehti hoon. And some beautiful music which is always lined up for you. Today is Tuesday. Har roz leke aate hain aapke liye ek naya flavor. Aur aaj ka flavor hai, of course, Tuesdays ko leke aati hoon aapke liye Bollywood Spotlight. Spotlight dal हैं एक ऐसे स्टार पे जिन्होंने हमें कुछ बेहतरीन बॉलीवुड के गाने दिए, चाहे वो एक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, डायरेक्टर्स हों, सिंगर्स हों, लिरिसिस्ट, एनीवन एंड एवरीवन हु हैज प्लेड अ रोल इन गिविंग अस सम ब्यूटीफुल म्यूजिक इज हु वी सेलिब्रेट राइट हियर ऑन बॉलीवुड स्पॉटलाइट. और पिछले हफ्ते जिन पे हमने स्पॉटलाइट डाली थी उनके गाने अभी कंप्लीट नहीं हुए थे, बहुत सारी आपकी भी रिकमेंडेशंस लाइंड अप थी, वो सब आज हम एपिसोड 2 में करने वाले हैं. बिकॉज टुडे द स्पॉटलाइट इज ऑन नन अदर देन Johar, part 2.

जी हाँ, ड्रामा क्वीन ये नाम दिया करण जौहर ने अपनी हीरोइन को, और वाकई द मूवी वाज आउटस्टैंडिंग और उसमें वो वाकई ड्रामा क्वीन सी ही थी। लेकिन गाना हुआ जी बहुत पॉपुलर, आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड स्पॉटलाइट में। करण जौहर पे डाली है हमने स्पॉटलाइट, लेकिन फिलहाल स्पॉटलाइट का एंगल थोड़ा सा चेंज करती हूँ, क्योंकि एक ऐसी बात आपको बताने वाली हूँ जो कि आप बहुत करने वाले हैं एंजॉय, और वो है एक इवेंट जो डालस में आ रहा है। और अगर आप बॉलीवुड के फैन हैं, इस जोड़ी के फैन हैं जो म्यूजिक कंपोज करती है, या किसी एक शख्स के इनमें से फैन हैं, तो आपके लिए ये मौका है टू वॉच देम लाइव। जी हाँ, विशाल और शेखर द डुओ बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड्स बिगेस्ट सुपर हिट्स आपके लिए आ रहे हैं द सुपर हिट टूर लेकर इन डालस। संडे जुलाई 12th को ये इवेंट कर्टिस कलवल सेंटर में होगा आपके लिए। सो आपने अगर सोच रहे हैं कुछ करने का तो टिकट्स अभी खरीद लीजिए। राइट नाउ इज द बेस्ट टाइम टू बाय योर टिकट्स। लॉग ऑन टू cashpatelproductions.com, which is KASH, Cash, PATEL, Patel, Productions.com. And while you are checking out, do not forget to use the promo code FUNASIA, FUNASIA, aur aapko milega 30% off your tickets. Yani ke discount milega aapko 30% tak ka. So, once again, that is cashpatelproductions.com. Zarur log on kijiye, apna ticket lijiye. Sunday, July 12th ko aa rahe hain. Vishal Shekhar ki outstanding super hit jodi. I absolutely love them. On इन कर्टिस कलवल सेंटर गार्लैंड। अच्छा, ये जो गाना मैं अगला आपके लिए प्ले करूंगी, करण जौहर पे स्पॉटलाइट डाली है, तो मूवी तो प्रोड्यूस्ड बाय करण जौहर थी, लेकिन गाना जो है वो इस फिल्म के दिए थे विशाल शेखर ने। और ये जो गाना आप खास सुनेंगे, ये तो है भी विशाल ददलानी की आवाज में। दिस इज जाने क्यों।

बॉर्न विद द नेम राहुल कुमार जौहर, ये नाम रखा गया था जी जब करण जौहर पैदा हुए, फिर करण कुमार जौहर उनका नाम पड़ा. 25 मई 1972 इज व्हेन ही वाज बॉर्न. केजो के नाम से मशहूर फिल्म मेकर, बहुत प्रोमिनेंट प्रोड्यूसर, टेलीविजन पर्सनालिटी, होस्ट, एंकर, मतलब यू नेम इट एंड दिस गाय हैज डन दैट. दिस इज द पावर ऑफ कोर्स करण जौहर. और पहले धर्मा प्रोडक्शंस करते थे, उसके बाद कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई कि धर्मा प्रोडक्शन का नाम बदल के धर्मैटिक प्रोडक्शंस शायद रख लिया, समथिंग लाइक दैट. तो अब वो धर्मैटिक प्रोडक्शंस के अंडर फिल्में बनाते हैं. करियर का आगाज तो डेफिनेटली उन्होंने एज अ डायरेक्टर ही किया था, डायरेक्टर एंड अ राइटर. और उसके बाद अब जो है वो प्रीडोमिनेंटली ही इज एक्चुअली अ प्रोड्यूसर एंड ही प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ फिल्म्स. द लास्ट मूवी दैट करण जौहर एक्चुअली डायरेक्टेड वॉज रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि 2023 में करण जौहर ने डायरेक्ट की थी. गानों का सिलसिला आपके साथ जारी है. आई हैव सम ब्यूटिफुल म्यूजिक लाइंड अप फ्रॉम द मूवीज ऑफ करण जौहर. या तो उन्होंने वो प्रोड्यूस की हैं, या उन्होंने वो डायरेक्ट की हैं, या उन्होंने वो लिखी हैं. दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म्स ऑफ दैट ईयर, टू स्टेट्स.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
2: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
3: मेंशन फनएशिया एंड गेट 50% ऑफ ऑन ट्रायआउट सेशन।
0: सुनो, कल बहुत काम है, पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
0: कहाँ?
2: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर।
5: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, वन वाइब।
6: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
7: इट्स लॉसन।
6: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
7: इट्स लॉसन।
6: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
8: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458, द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
9: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
10: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
9: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
10: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 945-527-0897 और विजिट astrologerishwar.com.
0: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
11: Excuse me. It's called being loyal.
0: It's called being predictable.
11: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
0: And what's so special at Neon Cactus?
11: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, zabiya halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
0: Not bad.
11: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
0: Okay, this I didn't expect from you.
11: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
12: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
13: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
14: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia, 104.9 FM.

जी हाँ, हर पल यहाँ जी भर जी लीजिए, क्या पता कल होना हो। एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत गाना आपके लिए प्ले कर रहे थे। करण जौहर पे स्पॉटलाइट डाली है आज हमने बॉलीवुड स्पॉटलाइट में, और उन्हीं की बनाई हुई फिल्में, चाहे उन्होंने एज ए प्रोड्यूसर बनाई हो, एज ए डायरेक्टर या एज ए राइटर, उन्हीं के गाने आपके लिए प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं हूँ किरण, दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि इफ यू आर लुकिंग एज एन इंडिविजुअल और एज अ फैमिली, यू आर लुकिंग टू बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज, देन माई टाइम इक्विटी लेड बाय CPA सुधीर पाई is here to help you. They will help you through portfolio management, real estate opportunities, as well as alternative investments. So, jo bhi aapka goal hai, long-term wealth, retirement planning, growing your investment, anything and everything jo aapke goal mein shamil hai, My Time Equity aapke liye personalized solutions design karti hai, keeping your ideas, your goals, your portfolio goals in mind. Agar ye sunke aapke zehen mein koi bhi sawal aaya hai, to My Time Equity ko call kijiye. That number is 469-702-1272 469-702-1272 is that number, or you can visit their website, which is mytimeequity.com. And the views and opinions expressed in these live announcements, as well as the interviews that we do here on our shows, are paid advertisements and does not necessarily represent the official views of the radio station nor the RJ.

और जी, और अब टाइम है आपके लिए एक गिव अवे लेके आई हूँ, और गिव अवे आया है इंडिया बाजार की तरफ से, जो कि लोकेटेड है जी फोर्ट वर्थ में, 5152 क्वाड्रेंट वे इज द एड्रेस। अगर आप ये ग्रोसरी हैम्पर जो कि इंडिया बाजार आपके लिए लेकर आया है जीतेंगे, तो आपको फोर्ट वर्थ की लोकेशन पे जाना पड़ेगा टू पिक दिस ग्रोसरी हैम्पर। सो इफ यू लिव इन फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट, हैसलेट, तो फिर तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत कन्वीनियंट है। बट इफ यू आर विलिंग टू मेक दैट ट्रिप, प्लीज गिव अस अ कॉल एंड ट्राई टू विन दिस गिफ्ट हैम्पर ब्रॉट टू यू बाय इंडिया बाजार लोकेटेड इन फोर्ट वर्थ। तो जी, सबसे पहले तो ये कि हम करण जौहर को कवर कर रहे हैं, तो आपको मुझे ये बताना है कि वो कौन सी फिल्म थी, सबसे पहली फिल्म आप कह लीजिए जिसमें करण जौहर ने जीता था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। मुझे बताइए कॉल करके नाम और किस साल वो फिल्म रिलीज हुई थी। चलिए साल भी छोड़ दीजिए, बस नाम ही बता दीजिए। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। इंडिया बाजार की तरफ से ये स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर जीतने का आपके पास मौका है। विच नेम द फिल्म जिसके लिए करण जौहर ने जीता था अपना पहला नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो।

सबसे पहले तो आप सबकी फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया जी. आपको डेफिनेटली मूवीज के हम सब इतने शौकीन हैं, हमें सब पता होता है हर वक्त किसको क्या मिला. तो सबसे पहले तो शाहीना, लकी, धनंजय, मुरली, शनीला, नीलमा, कुनाल, रुबीना, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फोन कॉल्स का एंड फॉर गिविंग अस द राइट आंसर. और आंसर है जी, उसी का गाना मैंने लगा दिया था आपके लिए, बहुत आसान कर दिया था इस मामले को. दिस वॉज कुछ कुछ होता है, जिसके लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिला. करण जौहर ने जीता फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म. एक्चुअली फिल्म उन्हीं की थी तो जाहिर सी बात है कि उनको मिला, और एज अ डायरेक्टर उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था और लिखा भी था. तो आंसर हुआ कुछ कुछ होता है. इंडिया बाजार की तरफ से ये ग्रोसरी हैम्पर आपके लिए स्पेशल आया था, और जिस सीक्वेंस में आपकी कॉल आती है मैं उसी नंबर को एक मैथ के फॉर्मूले में डाल के विनर निकालती हूँ जी. और आज की हमारी लकी विनर है नीलिमा मनालवी. नीलमा, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. दो दिन का टाइम दीजिए इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ में आपका नाम और नंबर पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट टू फाइव डेज आफ्टर टू डेज टू गो टू इंडिया बाजार, फाइव टू सिक्स डेज टू गो टू इंडिया बाजार एंड अवेल योर स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर. और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया. अपने जी इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है. एक गिव अवे और मेरे पास आपके लिए मौजूद है, बट वो मैं करूंगी 3:30 की ब्रेक के बाद. बने रहिए मेरे साथ.

An absolutely beautiful song. और ये जो है वो मेरे ख्याल राहत साहब ने इस को सबसे पहले गाया था, एंड दिस वॉज अ न्यू रेंडिशन ऑफ दैट सॉन्ग जो कि मेरे ख्याल बद्री की दुल्हनिया में या शायद हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में किसी एक में इस गाने को पिक्चराइज किया गया था. अच्छा जी, अब आगे बढ़ रहे हैं. आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊँ कि पिछले 13 साल से टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक proudly serve kar raha hai apni community ko, and now they are growing with a brand new name as well as a second Frisco location. Introducing Lenoxy Medical, Lunoxy. Lenoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya, brings primary care, urgent care, in-house lab testing hai, x-rays hai, CT scan, cardiac diagnostic, aur specially Himalayan Med Spa services, everything under one roof. And the best part, no appointments necessary, walk in anytime. And another best part, open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. to saaton din aapke liye operate kar raha hai, koi aapko appointment nahi leni, walk ins are welcome, so sab kuch in house lab testing hai, jo kuch aapne karna hai wo aapko under one roof mil jane wala hai. This is Lenoxy Medical for you, so do give them a chance, be passionate about your health and take care of yourself, or Lenoxy Medical ko yaad rakhiye.

अगर आज आपका खाना पकाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, या यू नो यू वांट टू टेक आउट, या जाके खाना है आपने लेकिन घर जैसा खाना खाना चाहते हैं, तो इसका सलूशन है तंदूरी फ्लेम. तमाम आपकी नॉर्थ इंडियन फेवरेट डिशेस जैसे कि सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स, या फिर रिच करीज, या फिर यू नो फ्रेश हॉट नान्स, डिफरेंट तरीके का खाना हर तरह का आपको मिलेगा तंदूरी फ्लेम पे. एंड द बेस्ट पार्ट, बिल्कुल घर जैसा. गार्लिन में लोकेटेड है तंदूरी फ्लेम, जरूर चेकआउट कीजिए, बैठ के खाइए या घर लेके आइए और एंजॉय कीजिए. दिस इज तंदूरी फ्लेम फॉर यू. और मैं आपके साथ कनेक्टेड हूँ जी. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और हमने स्पॉटलाइट डाली है, आज ट्यूजडे है, ट्यूजडेज को डालते हैं हम स्पॉटलाइट किसी ऐसे सितारे पे जिन्होंने हमें कुछ खूबसूरत गाने दिए हैं बॉलीवुड पे. और आज जिस सितारे पे हमने स्पॉटलाइट डाली है, ये दूसरा हफ्ता है उन पे स्पॉटलाइट डालने का, क्योंकि गाने इतने हैं उनके कि एक एपिसोड नहीं कर पाएगी उनके कमाल को जस्टिफाई. अच्छा.

All right, जी, that was a beautiful number. एक और ऐसी मूवी जो कि करण जौहर ने प्रोड्यूस की, और इस गाने के साथ लेके जा रही हूँ आपको ब्रेक की तरफ. अगले एक घंटे आपके साथ मौजूद रहेंगी रिमिता और करेंगी आपको एंटरटेन. फन एशिया रखता है आपको एंटरटेन्ड एज वेल एज इन्फॉर्म्ड 24/7 365 डेज अ ईयर हम रहते हैं आपके साथ. मैं आपसे मिलूंगी एक बार फिर कल 2:30 से 5 बजे तक, राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

0: You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio, where we bring the community together. Stay tuned. We'll be right back after this break.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
9: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform. Real-time rates compare karta hai, taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit myfamilyhomeloan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. Myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: Zindagi ek safar hai suhana. Yahan कल क्या हो किसने जाना
1: लाइफ हो या हेल्थ कब क्या हो जाए पता नहीं 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर अर्जेंट केयर एक्सरे सीटी स्कैन हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा सब कुछ एक ही रूफ के नीचे लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक 8 AM टू 8 PM वॉक इन एनी टाइम 9191 काइजरवे Suite 205, Frisco.
11: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से स्ट्रेस
12: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
11: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
12: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
11: ये क्या होता
12: सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
13: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन Available.
14: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
15: लिया.
14: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
15: नहीं आया.
14: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
13: Visit www.sanadainc.com today.
16: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी सीता की रसोई जहां मां सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी और अब वही पवित्र स्वाद वही भाव श्री अयोध्या भवन में ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को
15: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक
16: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग ओपन डेली फ्रॉम 7 AM लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो श्री अयोध्या भवन वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी
17: समझ नहीं आ रही टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ
18: इट्स लॉसन
17: किससे बात करूँ सारी जानकारी कौन देगा
18: इट्स लॉसन
17: डैडी व्हाट इज द लॉ
19: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458 The Travel Experts Lawson Travel
20: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
21: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
22: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.

सीखने सिखाने का काम मेरा नहीं है, वो आप खुद ही सीख लोगे, और अगर आप खुद नहीं सीख पा रहे हो तो जिंदगी ऐसी सिखा देगी। 10:04, you're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio. मैं हूं रमिता, एंड दिस आफ्टरनून ड्राइव टाइम अगले एक घंटे मैं रहूंगी आपके साथ। और यू नो, मुझे लगता है कि 4 बजे के बाद हर इंसान दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं। एक वो जो जेन्युइनली घर जल्दी पहुंचना चाहते, और दूसरे वो जो बस ऑफिस से निकलना चाहते हैं। वैसे घर पहुंचते ही सबसे पहले काम, मतलब सबसे पहला आप कौन सा काम करते हो? यू नो, शूज निकालते ही सीधे सोफे पे लेट जाना, या पहले चाय की चुस्की, या अपने बच्चे को हग करना, या फोन चार्ज पे लगा देना क्योंकि आपके फोन की बैटरी आप ही की तरह थक चुकी है। कुछ भी हो, थिंक ऑफ दिस, अगर माइन्यूटली कभी सोचा नहीं है कि पहला कौन सा काम आप करते हो घर जाते वक्त और जाने के इमीडिएट बैक, सोचते रहो और साथ ही सुनते रहो बैक टू बैक दो सुपर हिट गाने ओनली ऑन 104.9 FM फनीशर रेडियो, विच ब्रिंग्स द कम्युनिटी टुगेदर।

15 minutes past 4 o'clock, you're listening to 104.9 FM Funisha Radio. Main hoon Rumita, and this afternoon drive time till 5 o'clock, I'll be here with you. And chalti rahegi hamari aapki baate. Just a realization, mujhe lagta hai Dallas ke sarkon par na har type ke character milte is waqt. एक जो ट्रैफिक में है इंडिकेटर दे के लेन चेंज करता है और एक वो है जो इंडिकेटर लेन चेंज करने के बाद देता है. आप कौन से कैटेगरी में हो? बट इसके ऊपर भी एक लेजेंड है जो एग्जिट मिस कर देगा भाई, लेकिन गलत लेन से कभी नहीं निकलेगा यार. रूल्स और प्रिंसिपल्स नाम की कोई चीज होती है, ऐसे ही ऐसे ही बन जाते हैं क्या आप? और ट्रैफिक में सबका असली पर्सनालिटी टेस्ट होता है, पता है? कोई गाना गाता है, कोई पॉडकास्ट या हमें सुनता है, कोई स्टीयरिंग व्हील पे कॉन्सर्ट करता है, और कोई जीपीएस से भाई साहब आर्ग्यू करने लगते हैं कि यार बाप को मत सिखा, मुझे पता है इसका असली शॉर्टकट. आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज योर पर्सनालिटी ड्यूरिंग योर डैलस का ट्रैफिक ड्यूरिंग दिस ड्राइव टाइम. स्टूडियो का नंबर इज 9722355555. कॉल मी एंड लेट मी नो योर वाओ आंसर टू इट.

0: Wow.
1: That was indeed a wow है जवानी तो इश्क होना यार मैंने कब मैं किया है कुछ भी करो जवानी है आपकी responsibility आप जानो you're listening to 104.9 FM Phoenicia Radio 20 minutes past 4 o'clock और अगर आप गाड़ी में सुन रहे हो मुझे तो एक झटपट prepared हो जाओ क्योंकि अगला जो गाना है उसी के साथ जुड़ा हुआ है एक giveaway का सवाल the giveaway is from Red Hot Chili Pepper one of my favorites because they are giving in और giving out dry chili chicken या फिर chili baby corn या फिर Dallas का best butter chicken which is called RHCPs यानी कि Red Hot Chili Peppers chicken makhan wala you can pick up the giveaway from these locations which are Richardson, McKinney और Allen please note उनकी जो Frisco वाली location है अगर आप जीतने के बाद वहां पहुंच जाओगे तो आपको ये नहीं मिलेगा so थोड़ा ध्यान लगा के मुझे सुनना गाने भी सुन सकते हो बिकॉज गाने से ही जुड़ा हुआ है ये अगला सवाल ऑल यू नीड टू डू इज टू टेल मी द नेम ऑफ द सिंगर इट्स अ मतलब आज तो आप अगर कॉल लगा लिए ना सही टाइम पे और मैंने उठा लिया और अगर आपने सही जवाब दे लिया आई मीन इससे ईजी सवाल और कुछ नहीं हो सकता स्टूडियो का नंबर इज 972-235-5555 ऑलरेडी कॉल्स आ रहे हैं यार इतना भी स्मार्ट मत बनो तौबा तौबा आप लोग ना हद कर देते हो

0: मान गए, एक और बार मान गए कि आप लोग इतना मतलब इतने इतने जल्दी आप लोग कॉल कर लेते हो ना कि एक बार मुझे सही आंसर मिल गया होता है तो बाकी सारे फोन्स मैं उठा नहीं सकती. तो अभी भी अगर आप कॉल कर रहे हो प्लीज मत कीजिए, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव द गिव अवे विनर एंड द नेम ऑफ द विनर इज ध्रुव. ध्रुव कंग्रेचुलेशंस, यू हैव वन दिस रेड हॉट चिली पेपर का कोई भी आप डिश ले लो, चाहे वो ड्राई चिली चिकन हो या फिर चिली बेबी कॉर्न या फिर उनका स्पेशल चिकन माखन वाला, एवरीथिंग इज गुड देयर. बट इसके साथ साथ आई गॉट अ रिक्वेस्ट. भाई साहब इतनी भी क्या जल्दी थी कि फ़ोन आपने बिना आपका नाम बताए रख दिया. चलिए आप ही के पसंदीदा गाना मैं चला देती हूँ, बजा देती हूँ, आप भी क्या याद रखोगे. वैसे वो दो चक्कर ज़्यादा एक्स्ट्रा ले लेना क्योंकि आप ही के लिए ये है अगला गाना. स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू 104.9 FM. दिस इज रमिता विथ यू टुडे इन द आफ्टरनून ड्राइव टाइम.
1: What?

You're listening to 104.9 FM Funisha Radio. यार इतनी जल्दी होती है मुझे आपसे बातें करने की कि मैं असली बात बताना भूल गई कि उस गाने के सिंगर का नाम है करण औजला. अभी भी मुझे कॉल्स आ रहे हैं, यार प्लीज स्टॉप कॉलिंग. आई ऑलरेडी हैव द विनर एंड द नेम ऑफ द विनर इज ध्रुव. बाय द वे, कीप लिसनिंग एंड ग्रूविंग.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
3: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
4: Tarikh par tarikh.
5: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
3: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
6: Documents ya parcel bhejni hai?
7: हाँ.
6: घर रिलोकेट करनी है?
7: हाँ.
6: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
7: हाँ भाई हाँ.
6: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
8: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
9: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
16: Excuse me, it's called being loyal.
15: It's called being predictable.
16: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
15: And what's so special at Neon Cactus?
16: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
15: Not bad.
16: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
15: Okay, this I didn't expect from you.
16: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
15: Mamu, देखो क्या हो गया.
17: ओ, क्या हो गया?
15: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया. और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
17: ओए, जर्मन का कमाल है.
15: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
17: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
18: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
19: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
20: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
19: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
20: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
5: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
21: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
22: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
21: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
22: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
21: सच में? सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।

listening to 104.9 FM Funisha Radio. Main hu Ramita and this is the afternoon drive time jo jispe na I know aap ki aadat ho chuki hai hamari suneri krinji ko sunte hai aap log, but aaj is ghante main hu aapke saath. Aur drive time mein, you know, there's one common thing hamare sabke saath zarur hota hai, you know, har sham ek phone call almost हर देसियों के पास आता है, कितने देर में आ रहे हो, और जवाब वही है, बस 10 मिनट. जबकि एक्चुअली में जीपीएस आपको बोल रहा है इट इज 31 मिनट्स, बट नहीं, घर पे बताना है कि 10 मिनट ही लगेंगे. और घर पहुंचते ही पहला सवाल जनरली जो आता है, इतनी देर क्यों लगा दी. वैसे घर जाते वक्त आज किसी का तो फोन आ ही रहा होगा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर आ रहा है तो उसे बहुत ही कामली और अच्छे से रिसीव करके अच्छे से आंसर दो यार, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल कॉल्स होते हैं. ऐसे इसे ऐरा गैरा नट्ठू गैरा नहीं समझना है. या आप किसी को वो लेजेंडरी डायलॉग तो घर जाके बोलते हो ना, मतलब घर जाने से पहले बोलते ही हो, बस पहुंच ही गया. आई वॉन्ट टू नो कि कॉल आया कि नहीं आया. अगर नहीं आया तो मुझे कॉल करके बता दो कि आज वो कॉल नहीं आया है. सुन रहे हैं आप पर द आफ्टरनून ड्राइव टाइम, जैसे कि सुनहरी जी कहती है, योर सुनहरी किरण. आज आपके साथ हूं मैं रमिता, ओनली ऑन 104.9 FM फनीशिया रेडियो. वैसे द अगला गाना इज अ वेरी मिलेनियल, इट विल ब्रिंग बैक ऑल द मेमोरीज दैट यू हैड इन द अर्ली 2000s.

ओनली दीज गाइज वुड नो कि एक गजल को कैसे ऐसे एक गाने में दे कैन ट्रांसफॉर्म. येस आई एम टॉकिंग अबाउट विशाल एंड शेखर. दैट डुओ इज कमिंग लाइव इन डैलस ऑन द जुलाई 12th. संडे है तो प्लान्स अभी से बना लो, बिकॉज अगर आप बॉलीवुड फैन हो तो आपकी वो जो प्लेलिस्ट है ना, जो पिछले 25 साल से ऑलमोस्ट दे आर प्रिपेयरिंग विद ऑल द हिट सॉन्ग्स, दैट विशाल एंड शेखर डुओ वुड बी देयर इन डैलस, आई रादर विल बी हियर विद देयर सुपर हिट टूर एट द कर्टिस कर्नवल सेंटर ऑन जुलाई 12th. कर्टिस कर्नवल सेंटर विच इज लोकेटेड इन गार्लैंड. टिकट्स आर लाइव नाउ एट द कैश पटेल Productions.com. That's CashPatelProductions.com. Mein jaiye. Or and if you mention the code Phanisha, you will get a 30% discount. And Dallas, there is a super surprise coming up from tomorrow where you can win live showcase concerts ke tickets at our Fun Asia shows. Yes, stay tuned and keep listening to this Vishal and Shekhar hits, which will be playing throughout the day. From tomorrow, not throughout the day, in shows. And you'll be able to win the tickets of this live concert. Waise Vishal and Shekhar ki hi baat ho rahi hai. Let's groove on to some of their beautiful tracks. Only on Fun Asia Radio. This is Ramita with your afternoon drive time.

यू नो, ऑफिस से निकलते वक्त एक क्वेश्चन किसी ना किसी कुलीग ने आपको कभी ना कभी पूछा जरूर है कि यार किस साइड जा रहे हो आज. और ये क्वेश्चन कभी डायरेक्शन के लिए नहीं होता है. इसका मतलब होता है यार लिफ्ट मिल सकती है क्या आज. और लिफ्ट देने वाले भी यू नो दो हिस्सों में बटे हुए. एक जेन्युइनली खुश होता है, हाँ यार छोड़ देता हूँ चलो कोई बात नहीं. और एक जो पूरे रास्ते यही सोचते रहता है कि यार आज तो सीधा घर जाना था. वैसे आप लिफ्ट देने वाले इंसान हैं या एक्सक्यूजेस बनाने वाले, सोचिए थोड़ा. और थोड़ा टाइम है आपके ड्राइव में. तब तक दिस इज रमीदा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज शो. आप स्टीयरिंग पे ध्यान रखिए, ट्रैफिक को थोड़ा सा पेशेंस दीजिए और बाकी सफर के साथ हमारे म्यूजिक को दीजिए ना. This is Rumita again signing off from today's. Tab tak, drive safe, smile karte rahiye, funny shiya sunte rahiye, and let the music play.

0: That is the anthem for World Cup. It's the Die Die. Shakira and Burna Boy in that track. Let's see who do we have this afternoon with us. Good evening to you, Fanesia. Who's this?
1: Yeah, this is Rosina.
0: Hi, Rosina. Kaisi hain aap?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे?
0: ऊपर वाला मेहरबान, खुली है हमारी दुकान, शाम के 7 बजे तक खोल के रखता हूँ जी इसको, 2 घंटे की होती है।
1: पर अच्छा, आपने खुली है दुकान बोला, मैं समझी ऊपर वाला मेहरबान गदब।
0: देखो, गदा पहलवान जो है ना, किसी ने मेरे को बोला था ऐसा, मैं बोल चुका हूँ कई बारी कि खुदा मेहरबान गदा पहलवान। अब किसी ने मुझे बोला, मारवेन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप अपने आप को गदा क्यों कह रहे हैं? पहली बात तो ये मोहतरमा कि अगर हम उस ऊपर वाले के गधे भी बन जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है। इफ वी कैन स्टैंड अप टू हिम इन एनी वे। तो ये कहावतें जो है ये पुरानी है, नई सोच के साथ इसको मिक्स करो, मसाला सोडा बनाओ और पी जाओ। आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ आज की शाम?
1: हाँ, अगर आपने अभी नया फुटबॉल के लिए ये प्ले किया ही है तो फिर शकीरा का भी प्ले कर दीजिए।
0: शकीरा का भी प्ले करता हूँ एज आई प्रोग्रेस इन माई शो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल, रोजीना। फॉर नाउ इट इज द नेक्स्ट ट्रैक राइट हियर ऑन फनेजिया। एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू थैंक द ऑलमाइटी, उस सुपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दिन, एक और मौका टू बी हियर फॉर यू ऑल, ऑल द वे टिल 7। यू नो, व्हेन यू फोकस ऑन द गुड गेट्स बेटर। तो अगर आपकी ख्वाहिशें अभी पूरी नहीं हो रही हैं, इट्स ओके, देयर आर टाइम्स टू गेट दैट डन। लाइफ इज अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस को ड्यू टाइम दे दो ना यार।

0: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है, ये वाला बहुत हैवी है। और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
1: तो पहनती क्यों नहीं हो?
0: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेशन टाइप।
1: तो रोज वाला ले लो।
2: India's most loved everyday jewelry brand, CaratLane is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. CaratLane now open next to Tanishq in Frisco.
3: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
4: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
2: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
4: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
5: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
6: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
5: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग। अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स। जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
7: आर यू टायर्ड ऑफ द सेम arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention FunAsia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
2: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. FunAsia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
8: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
9: Shaadi Biyah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 6

हमारे पूर्वज तो थे ना बाई गॉड वाकई में बड़े स्मार्ट और अच्छे लोग थे, मतलब वो जो थे पूर्वज हमारे कमाल के थे, क्योंकि वो महान ही थे एक्चुअली, वेरी डिफरेंट पीपल, बिकॉज वो अंग्रेजों से लड़ाई करी थी उन्होंने, लड़े थे अंग्रेजों से। हमें देख लो, जहां अंग्रेजन दिखती है वहां फोटो खिंचवाने लग पड़ते हैं। बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। Those were the true heroes, man. They fought the Gora people. आपने क्या किया? कुछ नहीं किया आपने, आप बस अपना अंग्रेजी में फंस गए। ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। बंदा ये बिंदास है जनाब, 5:25 इन द स्टूडियो क्लॉक, 5:25 हो चुके हैं, एंड मैं आपके साथ ऑल द वे टिल 7 o'clock हर शाम की तरह। कुछ आपके पास अगर अच्छे अच्छे गानों की रिक्वेस्ट है तो मैं जरूर लगाऊंगा, क्योंकि आई लाइक टू प्ले सम लवली म्यूजिक। एंड अगर कोई खास बात है आपके मन में, इफ समथिंग इज सताइंग यू, समथिंग इज तंग करिंग यू, देन आप हमें फ़ोन करके बता सकते हो। कोशिश करेंगे कि हम आपको कोई ना कोई दवाई, कोई ना कोई टोटका बाबा जी के यहाँ से मिली जाए। फॉर नाउ एक टोटका छोड़ रहा हूँ जी, जो आपको बड़ा पसंद आएगा, चेक कीजिए।

0: अब रिश्तेदार आते हैं ना, आजकल पहले रिश्तेदार आते थे, बड़ा अच्छा लगता था मुझे। आजकल वैसे तो रिश्तेदार आने कम हो गए, और कम इसलिए हो गए क्योंकि वो फोन कर लेते हैं कि हम आ रहे हैं, और हम कह देते हैं ओहो हम तो घर पे ही नहीं है, होते हम घर पे ही हैं, पर हमने बस आजकल सिस्टम ऐसा चल पड़ा है ना कि वो कहते हैं मैं 5 मिनट के लिए आ रहा हूँ, नहीं, हम घर पे ही नहीं है, आप कब पहुंचेंगे, मैं तो कल पहुंचूंगा। तो ये सिस्टम है, पर पहले रिश्तेदार अच्छे थे यार, वो जब आते थे कुछ ना कुछ 5, 10, 15, 20, 100 दे के जाते थे। आजकल अगर आते भी हैं तो बस जलेबी भर के या खाना जो बचा है वो भर के वापस ले जाते हैं, पर देखे कुछ नहीं जाते हैं। खैर, एक कंपनी है जो आपके मतलब फुल वैल्यू फॉर मनी देगी, और वो आपके इन्हीं रिश्तेदारों को जो सड़े भी रहते हैं आपसे फिर भी आपको उनको गिफ्ट भेजने होते हैं, उनके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, और वो है जी SFLWorldwide.com। लेट्स टॉक टू राहुल हेयर फ्रॉम SFLWorldwide। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू राहुल, गुड इवनिंग टू यू, हाउ आर यू?
1: आई एम डूइंग ग्रेट मार्विन, हाउ आर यू डूइंग?
0: बस सर जबरदस्त। आप बताइए कि SFL Worldwide, आई नो यू हैव बीन गिविंग सॉल्यूशंस टू पीपल बाय शिपिंग देयर स्टफ वर्ल्ड वाइड, चाहे एक सुई हो, एक चिट्ठी हो, कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन हो, या फिर पूरा घर, यानी कि घर की हर एक चीज, इवन कार्स। सो व्हाई डोंट यू टेल अस के SFL क्या क्या करता है, एंड व्हाई आर यू बेटर देन सम ऑफ द अदर कंपनीज?
1: देखो, SFL Worldwide जो है, दैट इज योर वन स्टॉप फॉर लॉजिस्टिकल नीड्स, फॉर ऑल योर लॉजिस्टिकल नीड्स। तो हम शिपिंग से लेके, मूविंग से लेके, रिलोकेशन से लेके, वी डू एवरीथिंग, एंड बेस्ड ऑन आवर यू नो कॉम्पिटिटर्स, आप कोई भी चीज़, एनी थिंग विच यू आर प्लानिंग टू मूव, और फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ यू आर शिपिंग समथिंग टू मे बी सम ऑफ योर फैमिली, तो जो चीज़ आपको बाकी लोग प्रोवाइड करेंगे वो चीज़ आपको हम 40% लेस में प्रोवाइड करेंगे।
0: Wonderful. So basically, if I am, for example, using USPS, FedEx, yeah, any other company, your prices are lower, and that's because of the longevity in the business. आप बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं, and you've built some relationships that are able to give you this offering, which in turn you offer to your clients here in DFW. बहुत बढ़िया. And I can personally tell you, Rahul, कि मैं SFL को company को जानता हूँ पिछले 19 years से, and I have used SFL many times. And I have seen that difference myself. तो मैं पब्लिक को ये कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं ना बिड़ू पब्लिक को सीख सीख बोलो, सीधा सीधा बोलो बिड़ू, तो पब्लिक एक बात आराम से कान में सुन लो, डाल लो, SFL जैसा डिस्काउंटेड रेट आपको दुनिया कहीं नहीं मिलेगा बिड़ू, चाहे आपको बॉम्बे का वड़ा पाव यहाँ मिल जाएगा बिड़ू, पर आपको SFL वाला जो रेट है वो किधर ही नहीं मिलेगा बाबा, ऐसा ही?
1: Absolutely, Marvin, बिल्कुल सही बोला।
0: ये बताइए कि वेबसाइट जो आपकी है, does that allow people to calculate क्या estimated rates calculate कर सकते हैं? Do you have a rate calculator there?
1: जी बिल्कुल, you can go to sflworldwide.com, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सब चीज के बारे में।
0: Wonderful, sflworldwide.com is that website, जहां आप जाएंगे और आपको मिल जाएगी सारी इंफॉर्मेशन दैट यू नीड, एंड रिमेंबर कि ये आपकी हर चीज़ को शिप कर सकते हैं, स्पेशली वो जो भाभी को टेबल बहुत पसंद है ना, जो वो कह रही हैं कि घर मूविंग में टूटना नहीं चाहिए, दे विल मेक श्योर दैट दे डू दैट। नाउ आई हर्ड कि आप प्रो हैं पैकेजिंग करने में भी, टू मेक श्योर कि सामान जो घर का मूव हो उसमें आप की यू नो स्मार्टनेस है और आपका एक एक्सपीरियंस है टू पैक द गुड्स द राइट वे।
1: हाँ जी बिल्कुल। So basically, if you are moving, if you are relocating to some other place, SFL Worldwide will send people at your place. सारे चीज़ों को काफ़ी systematically, काफ़ी properly way में हम disassemble करेंगे and pack करेंगे और move करेंगे. And also, the most important thing is कि इसमें आपका अगर package, if your package is maybe like 2 or 3 boxes, so you don't have to worry about anything because we have operators who have empty spaces in their truck. तो वो बाकी सामानों के साथ में आपका सामान भी include कर लेंगे।
0: Wonderful. They have multiple options for you. कुछ भी भेजना हो, मंगवाना हो, from any other country. And if you are a business owner, now business owners के लिए goods जो हैं, वो काफी California से यहाँ आती हैं, Dallas में, and Dallas से likewise they send them out. New York से भी आती हैं. Do you provide that service to business owners who are moving truckloads on a daily basis?
1: Absolutely. We do provide that service as well. And not only just in US, we do this internationally as well. So अगर आप business owner हैं और आप कुछ इंडिया से या मे बी कोई और कंट्री से मंगा रहे हैं या भेज रहे हैं, तो वो चीज में भी आपकी सारी हेल्प करेंगे, एंड ऑल्सो ऑल द पेपर वर्क, वी हैंडल ऑल द पेपर वर्क फॉर यू।
0: Do you handle stuff from China too?
1: Exactly.
0: Very nice. That's so nice of you. I will see you later. Thank you for your time today, Mr. Rahul. What's your phone number?
1: So the phone number for SFL Worldwide is 800-691-2335. It's 800-691-2335.
0: All right. So, आपने अगर China से मंगाना हो या फिर आपको Africa से मंगाना है, everything is available with SFLWorldwide.com, man.

0: वंडरफुल ट्रैक देयर टेकन फ्रॉम द मूवी मैं वापस आऊंगा, जिसमें थे जी इम्तियाज अली की डायरेक्शन और दिलजीत दोसांझ पाजी, वंडरफुल एक्टिंग, नसीरुद्दीन शाह साहब की ज़बरदस्त एक्टिंग है। नसीरुद्दीन साहब को मैं कहीं सुना उनको कहते हुए कि यार जो चीज़ मैं 50 साल से फुल इन्जॉयमेंट से करता आ रहा हूँ वो आज ही मैं फुल इन्जॉयमेंट से ही करता हूँ। एंड ही वॉज जस्ट प्रेजिंग द पीपल दैट शोड हिम सो मच लव विद दैट रोल दैट ही डिड। आई पर्सनली फेल्ट कि स्टोरी लाइन थोड़ी सी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती थी, बिकॉज इट वॉज़ वेरी प्लेन एंड सिंपल कि हाँ एक दादाजी थे और उनकी एक गर्लफ्रेंड थी, मतलब अधूरा लव जो रह गया, एंड वहाँ पे उनकी फैमिली की और यू नो वट एवर लेडीज़ वर लेफ्ट देयर। आई एम नॉट गोना डू द होल स्पील फॉर यू, बट मेरे हिसाब से द स्टोरी कुड हैव गॉटन लिटल मोर इंटरेस्ट कुड हैव बीन डेवलप्ड विद दैट स्टोरी देयर। बट फिर भी इम्तियाज अली अगैन फैंटास्टिक वर्क, डायरेक्शन, एक्टिंग एंड स्टोरी लाइन आई थिंक कुड हैव बीन बेटर। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद मैं वापस आया, डोंट गो एनीवेयर, दिस इज फनेजिया रेडियो 104.9 FM।
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
2: अरे सारे तो सेम है।
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
2: ओ हाँ, ये तो अलग है।
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, but sometimes even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
5: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
6: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
6: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: वेट, व्हाट?
8: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
8: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
10: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं प्रेम और सेवा परोसती थी, और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेम्पल इन फ्रिस्को।
11: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
10: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
12: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
13: इट्स लॉसन।
12: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
13: इट्स लॉसन।
12: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
14: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458. The travel experts, Lawson Travel.
15: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
16: Calculating route, rerouting.
15: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
16: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
15: क्यों?
16: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
15: अच्छा तो सीधा वही ले चलो,
17: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
16: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
18: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी।
13: वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
18: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
15: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगा, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
19: इतना सब और प्राइस?
15: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
20: मैं ही दोनों।
21: सेम टेस्ट से बोर हो गए? ट्राई समथिंग डिफरेंट। मैक्सिकन फ्यूजन ग्लोबल फ्लेवर्स हैप्पी आवर्स। नियॉन कैक्टस फेयरव्यू, मैक्सिकन बट डिफरेंट। एग्जैक्टली।
22: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

Getting back to the FIFA World Cup update brought to you by attorney Omar Khwaja. The leading goal scorer, of course, is Lionel Messi with 6 goals from Argentina, Erling Haaland with 5 from Norway, and Kylian Mbappe. मैं तो इसको माँ बापे बोलता हूँ, हमारे पंजाब में होता है मापे, मापे का मतलब होता है मदर एंड प्योर टुगेदर. तो ये काइलियन मापे ही है क्योंकि बी साइलेंट होगा, तो है ये लड़का पर मापे है, समझ लो. 6 गोल्स टू लाइनल मेसी, अर्लिंग हैज 5 एंड कैलियन हैज 4. दीज आर द लीडिंग स्कोरर्स. ऑफ कोर्स द टॉप 3 टीम्स आर अर्जेंटीना, फ्रांस एंड स्पेन, एंड दे होल्ड द टॉप 3 स्पॉट्स इन द फीफा मेंस वर्ल्ड रैंकिंग. बट दिस कप इज गोना चेंज थिंग्स अप. And what's going to happen? Well, we'll all have to wait and see. But I can tell you, it is an exciting time for football, rather soccer, in the United States. 2 songs back to back, and I'll be seeing you on the other side of the commercial break. ब्रेक के उस पार बहुत सारी बातें करनी है, इंक्लूडिंग द पंज तारा छोले भटूरे या उनका आलू कुलचा, और द गिव अवे कमिंग अप फ्रॉम मिराज हुका लाउंज.

0: बोलो।
1: Absolutely, Bindaas Bolo Ji. Naam Arvindas Bolo. Welcome back to your evening drive time show. It is the Bindaas Show on Fun Asia Radio 104.9 FM. This part of the show is brought to you by AG FinTax. If you have not done your taxes yet, this is your opportunity to get in touch with the fastest growing tax firm in the United States. They not only do taxes, but also do tax planning. Agar aap high net worth individual hain, ya aapka business hai, you want to get some tax planning done to maximize your benefits and minimize your tax liabilities, then get in touch with AG FinTax on the website. agfintax.com is that place where you've got to go. Today is the 30th of June, Tuesday evening, and Mangalwar hai ji. To Mangalwar ko ek baat to pata hai aapko, man ki baat biwi se nahi karni, kyunki man di gal wife nal karan de nal ladai ho sakti hai, war ho sakti hai, isliye no Mangalwar. Michael Phelps is celebrating his birthday today. The swimmer who won 6 gold medals at the 2004 Olympics, 8 gold medals at the 2008 Olympics, and 4 gold medals at the 2012 Olympics across his career, became the most decorated Olympic athlete of all time with 28 total medals, including 23 golds. Born in Baltimore on today's date, which was the 30th of June, the year was 1985. Mere se ek saal chota hai, chota bhai. Maine bhi swimming ki hai. ट्रायथलॉन का मैं ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हूँ अपने टाइम पे, नेशनल खेला हूँ मैं स्विमिंग में अलॉन्ग विद क्रिकेट. तो माइकल छोटा है ना मेरे से, मैंने कहा चल मैं स्विमिंग छोड़ रहा हूँ, क्रिकेट की तरफ जा रहा हूँ, कुछ सिखा देता हूँ. तो बस वही बचपन का जो मैंने सिखाया कुछ, उसी की वजह से 28 गोल्ड एंड ऑल दैट, यू नो. आजकल बड़े आदमी हो गए, मिलते नहीं हैं. खैर मैं आपको मिलता रहूँगा, एंड उसके लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको सिर्फ मेरे स्टूडियो पर कॉल करना है और बोलना है क्या हाल है मार्विन, मैं यहीं आऊँगा. वो कहते हैं कि मुझे तो ये लगा कि मेरी शक्ल भगवान से मिलती है, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ कहीं तो लोग कहते हैं हे भगवान ये फिर आ गया.

मेरी भी लाख दुआएं पाए और पब्लिक की भी लाख दुआएं पाए, बिकॉज आई एम हेल्पिंग डेंटन काउंटी टू गेट अफोर्डेबल हाउसिंग कॉर्पोरेशन्स न्यूएस्ट परमानेंट सपोर्टिव हाउसिंग प्रोग्राम व्हिच इज डिजाइन टू प्रोवाइड 84 फुली फर्निश्ड वन बेडरूम अपार्टमेंट्स फॉर इंडिविजुअल्स एग्जिटिंग होमलेसनेस इन डेंटन काउंटी. ये डेंटन काउंटी का एक इनिशिएटिव है जहां पे 84 फुली फर्निश्ड वन बेडरूम अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं फॉर दोज पीपल हु आर अबाउट टू गेट समथिंग विच गिव्स देम अ होप, क्योंकि होमलेसनेस के बाद एक पाथ जो डेंटन काउंटी सपोर्ट करना chahti hai, and for that they are asking for fundraising, and I came across them and I thought it's a great idea to give back to the community. So main dhoond raha hu ji 30 log jo mujhe support karenge is initiative mein. You can donate any amount, but my asking is $100 agar aap donate kar sakte hain for housing for the homeless in Denton County. Aap mere number pe call kar sakte hain, studio ke number pe call kar sakte hain, 972-235-5555. I'll be turning on this drive for the next 7 minutes. Break pe jaane se pehle agar aap मेरे को इस इनिशिएटिव में सपोर्ट करना चाहते हैं, आई कैन सेंड यू अ लिंक, बट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे स्टूडियो लाइन पे कॉल कर लीजिए, देन आई कैन सेंड यू दैट लिंक विच गिव्स यू ऑल द इन्फॉर्मेशन वेयर द फंड्स आर गोइंग, हु इट्स गोइंग टू. एंड दिस इज वंस अगेन फ्रॉम मैकएडम्स हेवन इन डेंटन, अफोर्डेबल हाउसिंग कॉर्पोरेशन्स न्यूएस्ट परमानेंट सपोर्टिंग प्रोग्राम दैट गिव्स 84 न्यू होम्स टू पीपल हु आर एग्जिटिंग होमलेसनेस. आपको मुझे कॉल करना है स्टूडियो की लाइन पे 972-235-5555, एंड आई विल गेट यू द डिटेल्स ऑन हाउ यू कैन बी अ पार्ट of this supportive venture. 972-235-5555. It's time to give back to the community. Yaar thoda sa hum bhi sab milke kaam karenge to achhai to aage aayegi, but I think it's your bit which you can do by supporting Denton County in raising these funds, taaki ye jo homelessness hai hum isko mita sake. Here we go. Studio lines are open for you. 972-235-5555.

encouraging you all to then donate to the Denton County, which is doing a fundraising to raise money for permanent supportive housing development, which is PSH, designed to provide 84 fully furnished one-bedroom apartments for individuals exiting homelessness in Denton County. And I would love for you guys to support. Agar aap is cause pe donate karna chahte hain with a pledge of $100, please give me a call at the studio line 972-235-5555, and main aapko information de dunga ki kaise aap is cause ko donate kar sakte hain and become a part of this little effort that we are doing, I am doing, to get some people out of those roads, to give somebody that new opportunity that we all look for. तो भैया जी, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी कुछ अच्छा करें डेंटन काउंटी के लिए या इन जनरल किसी के लिए भी, आई मीन इफ वी कैन डू समथिंग वी ऑल शुड. आई एम डूइंग माई पार्ट एंड इफ यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस ड्राइव, गिव मी अ कॉल 972-235-5555. वन मोर ट्रैक इस गाने के बाद, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक. वंस अगेन, डोनेट टू द हाउसिंग कम्युनिटी दैट इज बींग बिल्ट फॉर होमलेस पीपल इन डेंटन.

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
5: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
4: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
3: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
6: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
7: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
6: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
8: मामू देखो क्या हो गया।
9: ओ क्या हो गया?
8: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
9: कोई जर्मन का कमाल है।
8: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
9: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, BMW, VW और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
3: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
10: प्लानिंग अ ग्रेजुएशन पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, फैमिली गैदरिंग और प्राइवेट इवेंट, मेक योर स्पेशल मोमेंट्स इवन मोर मेमोरेबल एट फन पिज्जा किचन कॉलोनी। रेंट प्राइवेट पार्टी स्पेस फॉर 3 hours एट जस्ट $200 विद कस्टमाइज्ड मेन्यू ऑप्शंस टू सूट योर प्रेफरेंसेस। सेलिब्रेट विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्रिएट लास्टिंग memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
3: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
11: Beta, 95% aaye?
12: Haan, mummy.
11: Good. Ab chaliye, papa. Aap apna report card dikhaiye.
13: Mera?
11: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals. Sare accounts updated.
13: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक, लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी।
14: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम July 3rd to 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस, एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
15: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ

0: जा रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
1: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
2: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.

कल रात को चित्रगुप्त मेरे सपने में आए। अब अगर आपको चित्रगुप्त का पता नहीं है तो बता देता हूँ। चित्रगुप्त वो हिंदू भगवान या डीटी माने जाते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग्स गुड एंड बैड डीड्स ऑन अर्थ। ठीक है जी, तो मेरे आपके सारे कर्म अच्छे बुरे उनके पास हिसाब है। उनका नाम है चंद्रगुप्त और ये जो है ये रिकॉर्ड कीपर माने जाते हैं। ही मेंटेन्स एन एक्सटेंसिव रजिस्टर नोन एज द अगस्त्यधनी एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑल ह्यूमन एक्शंस वर्च्यूज एंड सिंस। और ये जस्टिस के मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब ये मेरे सपने में आए कल, और कल इन्होंने सपने में आके मुझे बोला कि मार्विन तू चिंता बिल्कुल मत कर। मार्विन तूने चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। तेरी बातों को जो इग्नोर करते हैं ना और जो उन बातों पे नहीं हंसते उनके लिए कहते हैं मैं अलग से खाता बना रहा हूं।

मैंने भी कह दिया थैंक यू चंद्रगुप्त साहब, बस यही करो आप कि जो जो मेरी बात पे ना हंसे उसके लिए एक अलग खाता, समझ रहे हो ना आप लोग, हंसो।

0: अच्छा, अगर एक बात ये बताओ कि अगर बीवी को डांटते समय, मतलब माँ के सामने स्पेशली बीवी को डांटते हुए अगर बीवी को आंख मार दो तो बाद में समझाना नहीं पड़ता? मुझे ऐसा कोई कह रहा था कि ऐसे कर लिया करो। खैर, मेरे साथ कोई है, इनसे बात कर लेते हैं। गुड इवनिंग फनीश जी, हूज दिस?
1: गुड इवनिंग जी। लेकिन जो आपका खाता बना रहे हैं ना, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो खाता बना रहे हैं वो चंद्रगुप्त बना रहे हैं आपके हिसाब से। हाँ, और असली खाता रखते हैं चित्रगुप्त।
0: अरे सर, चित्रगुप्त ही है सर, चित्रगुप्त, चंद्रगुप्त नहीं, चित्रगुप्त। अब सर मैं अगर ये तो आप जैसे लोगों के लिए है ना, जो पकड़ सके बातों को, कोई पकड़ने के लिए भी तो रखना है कि नहीं? बहुत शुक्रिया। तलवार है चंपा चमेली। चित्रगुप्त आए थे, चित्रगुप्त। देखा, ये होती है लिसनिंग, इसको बोलते हैं कमाल, कमाल बामसाल। 6:27 in the studio clock, 6:27 हो चुके हैं जी। आज का दिन है मंगलवार का, ट्यूसडे इवनिंग, जून 30th की तारीख खत्म हो रहा है। जून भी आते आते बस फटाफट इधर उधर जाने वाला है। कोई और है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं। गुड इवनिंग फनीजिया, कौन बोल रहा है?
2: मैं दिलीप बोल रहा हूँ।
0: दिलीप साहब, कैसे हैं आप?
2: बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आपको जानना पड़ेगा, चंद्रगुप्त के लिए एक बंदा काम करता है जो ये मतलब अपने अर्थ पे वो सब बताता है, कौन क्या सीन करता है, कौन क्या नहीं। कौन, जानते हो कौन है?
0: मोदी? मोदी जी
2: नहीं, कौवा।
0: अच्छा, कौवा। अच्छा,
2: कौवा। जो इसलिए आप जब कोई भी मरता है तो कौवा देखता है कि इसके सीन क्या है, इसको मोक्ष देना है या नहीं।
0: एक्चुअली हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो चित्रगुप्त है वो ट्रम्प है, वो सबका हिसाब रख रहे हैं और अपने आप हिसाब निकाल भी रहे हैं। वो उनको सब आता है, वो जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। फॉर नाउ दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय श्री कृष्णा ज्वेलर्स। ये खुल चुके हैं जी आपके लिए, राइट इन द हार्ट ऑफ फ्रिस्को। इफ यू हैवंट बीन टू देयर न्यू स्टोर, आई वुड रेकमेंड कि आप उनके नए स्टोर पे जाइए, जाके देखिए उनकी कलेक्शन, एंड देन यू विल नो व्हाट स्पेशल्स दे आर ऑफरिंग यू। कुंदन हो, पोलकी हो, दे हैव इट ऑल। मेक श्योर यू लेडीज चेक आउट दिस न्यू एडिशन, श्री कृष्णा ज्वेलर्स, राइट इन द हार्ट ऑफ फ्रिस्को। इसके साथ साथ आई विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू विन समथिंग नाउ विच इज कमिंग फ्रॉम पंच तारा, एंड वो दे रहे हैं जी आपको टू विन देयर छोले भटूरे विच इज अमेजिंगली फैंटास्टिक, या फिर आप जीत सकते हैं उनका एक आलू वाला नान आता है जो कि एक कुलचे की तरह होता है, बट इट इज जबरदस्त फैंटास्टिक। मैं लगाने लगा हूँ जी एक गाना, एंड यू हैव टू टेल मी विच मूवी दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि ये जो गाना मैं लगाने लगा हूँ ये कौन सी फिल्म से लिया गया है? Here we go with that track. You tell me the name of the movie.

0: यार गाना मैंने लगाया है और इसका म्यूजिक सुनते ही आई हैव अ कॉलर लाइंड अप हियर ऑन फनेज योर रेडियो वॉल्यूम लेस योर वॉल्यूम अप हु इज दिस
1: हाय मार्विन भाई दिस इज पंकज
0: पंकज भाई कैसे हैं
1: बढ़िया आप बताओ
0: गॉड इज गुड लाइफ इज गुड नेम ऑफ द मूवी यू नो
1: धड़कन
0: धड़कन धड़कन धड़कन कहते हैं पंकज लेट्स सी इफ यू हैव द राइट आंसर और नॉट पंकज लेट्स यू बी हैव नेक्स्ट रेडियो वॉल्यूम लो योर वॉल्यूम अप इतनी बार दरखास्त करता हूं आपसे क्यों आप मेरे साथ ऐसा करते हैं रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए अपना बढ़ा लीजिए रेडियो का वॉल्यूम देवा उठा ले मुझे नहीं समझ रहे हो अच्छा गुड इवनिंग हाँ जी गुड इवनिंग कौन बोल रहा है
2: गुड इवनिंग रीमा
0: जी कैसी हैं
2: ठीक हो आप कैसे हो
0: ऊपर वाला मेहरबान बताइए फिल्म का नाम
2: फिजा जी
0: ऑल राइट फिजा इज द राइट आंसर एलन जा सकती हैं
2: जी बिल्कुल जा सकती हूँ
0: ऑल राइट देन होल्ड द लाइन फॉर मी आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर यस इट इज द मूवी फिजा जिसका ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था एंड दिस वॉज विद ऋतिक रोशन करिश्मा कपूर एंड सुष्मिता

देखो दर्द है अगर सीने में तो उसको वो स्विंग मशीन ला के दो ना बेचारी, अगर सुई धागा लग जाएगा तो दर्द तो होगा ना सीने में, मतलब सीते सीते एज वो सी रही है कपड़ा सुई लग गई तो दर्द तो होगा सीने में। खैर ये अलग दर्द है सीने में उन, छोड़ो यार ये बचपन की बातें हैं, चोटें लगी हुई हैं वो आ जाती हैं बाहर कई बारी। आप लोग सीरियस मत लिया करें किसी बात को। ऐसी सीरियस लेने वाली एक बात बताऊँ, मेरी ना नानी जो थी ना, नानी शी पास्ड अवे व्हेन शी वाज इन हर 90s। तो नानी जो थी, अब वो जैसे जैसे बूढ़ी हो रही थी तो उनको ना हेयरिंग एड लग गया कान में मशीन, और वो एज़ यूजुअल हर बूढ़े की तरह जो बच्चा बन जाता है एज दे ग्रोइंग ओल्ड, शी वुड फॉरगेट कि उसको मशीन लगानी है। एंड ऐसी बस मेरी मम्मा हमारे घर आई हुई थी विजिटिंग, एंड मम्मा और उनकी नोकझोंक बड़ी पुरानी थी, मतलब जब भी कोई ना कोई बात होती है तो मम्मी ने कुछ बोल देना है कि आपको एक तो सुनता नहीं बीबी, ऐसा है वैसा है। तो ऐसी एक दिन लड़ाई हो गई और मैडम ने, नानी ने मशीन कान में नहीं लगाई हुई थी, तो मैडम ने कुछ बोला मम्मी को, मम्मी को नहीं सुना, फिर मम्मी ने कुछ बोला मेरी नानी को, और मेरी नानी को बीबी कहती थी मेरी मम्मी, तो नानी फिर बोल रही क्या क्या बोली जा रही है, तो मेरी माँ कहती ये बोल रही हूँ मेरा सिर एक तमशीन नहीं लगाती कान में, सुनता नहीं है आपको। तो नानी चिढ़ गई मेरी, और चिढ़ के ना ऊपर देखती हैं आसमान की तरफ और बोलती हैं हाय रब्बा चुक ले मैनू, मतलब कि खुदा मुझे उठा ले, ऊपर वाले उठा ले मुझे, जोर से बुड़बुड़ करके ना चिल्लाती हुई बोली हे रब्बा चुक ले मैनू। मम्मी जैसी मेरी थोड़ी सी उधर गई ना, दूर हुई मेरी नानी से, तो नानी कहती है ऊपर देख के दोबारा मजाक कर रही थी, सीरियस ना लेना। तो आप भी लाइफ में ज्यादा चीजों को सीरियस मत लिया करो यार, चाय ले लू जो भी है मजे लो ना यार।

टोटा टोटा मामा सोटा, इसका मतलब यह है कि पंजाब में ना अच्छी लड़की को, सुंदर लड़की को टोटा बोलते हैं, ओके, पंजाब में, पंजाबी से टोटा है जी, टोटा है। तो टोटा टोटा मामा सोटा मतलब अगर आपने किसी सुंदर लड़की का पीछा किया या आपने कोई टोटा देखा तो मामा का सोटा सोटा सोटा सोटा।

0: आर डी बर्मन साहब के म्यूजिक में बना था ये वाला गाना, विच इज उषा उत्थप जी की आवाज, एंड द फिल्म वॉज शान, जिसमें शाकाल गंजे थे। याद है आपको शाकाल की एक्टिंग? मैं ये कुलभूषण खरबंदा ने किया था, और कुलभूषण खरबंदा ये बताना चाहते हैं, विशाल इन शेखर आपके लिए आ रहे हैं 12 जुलाई को कर्टिस कलवेल सेंटर में कॉन्सर्ट रखी है, आपने भूलना नहीं है और आपने टिकट फटाफट से ले लेनी है cashpatelproductions.com और मुझे प्राउड फील कराना है। कुलभूषण खरबंदा बोल रहा है टिकटें ले लो, कैश पटेल प्रोडक्शंस, विशाल एंड शिखर आ रहे हैं आपके शहर डेलस। एक ब्रेक के बाद मैं वापस आया, डोंट गो एनीवेयर।
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
4: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
3: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
4: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
5: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
6: Mera retirement plan ready hai.
7: Plan ya hope?
6: Matlab?
7: Matlab hai. Plan matlab strategy. Hope matlab dekhte hain kya hota hai.
6: Okay, to mera wala hope hai.
7: Tabhi to log wealth tactics se baat karte hain.
6: Kyun?
7: Because retirement ko hope pe nahi, strategy pe plan karna padta hai.
5: Wealth tactic. Retirement planning with clarity and strategy. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
8: यार बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
9: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
8: सच में एक्सपेंसेस से इनकम? कैसे?
9: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
8: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं वापस भी आएंगे।
9: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
8: नंबर बोल जल्दी।
9: कॉल James at 321-888-7345 or visit connectingamericafinancials.com.
10: Connecting America, जहां smart business owners turn costs into cash.
11: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
13: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
14: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
15: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
16: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
17: Hello, Texas Parivar. Where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
18: Hey, tumne kabhi insurance liya?
19: Liya.
18: Kabhi policy samajh bhi aaya?
19: Nahi aaya.
18: Mujhe bhi nahi aaya. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
14: Visit www.sanadainc.com today.
19: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
18: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
18: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
19: सच में सब संभालेंगे?
18: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
16: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

ये तो सात समुद्र पार आ गई, बट आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है. इफ यू लुकिंग फॉर योर नेक्स्ट फेवरेट हैंगआउट, इट इज टाइम टू एक्सपीरियंस मिराज लाउंज. प्रीमियम हुकर्स, डिलीशियस बाइट्स, हैंडक्राफ्टेड कॉकटेल्स, लाइव म्यूजिक एंड एक्साइटिंग डीजे नाइट्स ऑल अंडर वन रूफ. एंड द बेस्ट पार्ट, the happy hour runs Monday to Thursday from 11 a.m. to 6 p.m. featuring hookah starting at just $24.99 and shots for only $4.99. Don't miss the fun with ladies night and college night. Visit Mirage Lounge on McKinney Ranch Parkway, because miracles happen at Mirage. And aapke paas mauka hai ji to win a giveaway from them, which is $20 off your purchase of $50 or more. Jab aap wahan jayenge, agar aap ek hookah lete hain, kuch snacks lete hain, your bill will cross over $50. And you can save $20 right now by answering this next question for me. Main puchne laga hu ji aapse ek sawal, aur is sawal ka jawab aapne thoda sa out of the box, thoda sa hatke dena hai. Sawal ye hai ke wo kehte hain na, aatma ko shanti milni chahiye life ke span mein. Kai logon ko jeete ji shanti mil jati hai kyunki andar se aatma shant hoti hai, khush rehti hai. To aapko mere sawal ka jo jawab dena hai wo ye dena hai ke aatma ko shanti kaise mil sakti hai. Do you have an idea? Mere paas to idea hai, but main aapse janna chahta hu ki according to you aatma ko shanti कैसे मिल सकती है. 972-235-5555 नंबर टू द स्टूडियो. जो भी देगा मुझे बेस्ट क्रिएटिव जवाब उसको मिलेगा जी ये इनाम फ्रॉम मिराज लाउंज. $20 ऑफ देयर $50 बिल राइट हियर इन मिकिनी. याद रखिएगा कि ये मिकिनी में है. फिर ना कहिएगा मैं तो आर्लिंगटन में रहता हूँ, तो भैया मिकिनी जा सकते हैं जो फ्रिस्को में रहते हैं, पास रहते हैं मिकिनी के, वही जवाब दीजिएगा. सवाल क्या है कि आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है, ये आप मुझे बताएंगे. जो देगा क्रिएटिव जवाब उसको मिलेंगे $20 ऑफ देयर $50 बिल एट मिराज.

0: हम हैं जरा हटके, सवाल भी मेरे हटके होते हैं भैया, क्योंकि मैं बचपन में बड़े लटके झटके। गुड इवनिंग फनीजा, कौन बोल रहा है?
1: गुड इवनिंग, दीपक बोल रहा हूँ।
0: दीपक भैया जलते रहिए, क्या बताइए जवाब के आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है यार?
1: हाँ अरे कुछ नहीं, ये चाय समोसे बैठा दो, दोनों को परिवारों को मिला दो, आत्माराम और शांति देवी का परिवार, और
0: चाय,
1: बात कर लो,
0: चाय,
1: बात करने से वो
0: चाय और पकौड़े, वेरी गुड।
1: चाय और पकौड़े,
0: मेरी तो इनसे काफी हद तक शांति हो सकती है। आगे देखते हैं कौन है दीपक के बाद, कौन जल रहा है। गुड इवनिंग फनेजिया।
2: गुड इवनिंग, हाय।
0: हाय जी, कैसे हैं आप?
2: जी जी ठीक।
0: बताइए नाम सर आपका पहले।
2: हामिद।
0: खालिद। दे दे दे
2: हामिद, हामिद।
0: अच्छा हामिद, मैं का खालिद। दे दे दे दे दे दे मो। अच्छा हामिद भाई कैसे हैं?
2: जी ठीक हूँ मैं, आप कैसे हो?
0: ऊपर वाला मेहरबान है, खुली मेरी दुकान है, फटाफट बंद होने वाली है। बताइए नाम, ये जो सवाल है मेरा कि आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है, व्हाट डू यू थिंक हामिद?
2: या व्हाट आई एम थिंक इज लाइक डू गुड डीड्स ऑन देयर नेम।
0: गुड डीड ऑन देयर नेम, ओके ब्रो, स्टे ट्यून्ड फॉर माय आत्मा को शांति रिजल्ट। गुड इवनिंग फनीजा, हाउ इज दिस?
1: सागर नाम है मेरा।
0: क्या नाम है? क्या?
1: सागर
0: जैसी आंखों वाली। सागर भैया बताइए आत्मा को शांति क्या क्या करें, हाउ टू डू इट?
1: अगर आप शादीशुदा हो तो दीदी को खुश रखो, आत्मा को शांति मिली जाएगी।
0: आत्मा, क्या नाम बोले थे आप? सागर। बीवी को खुश रखो।
1: सागर
0: बीवी तो देखो आपका आपका तो नाम ही सागर है, डेप्थ ही आप में इतनी है। क्या डीप वाला थॉट मारा है यार, बाय गॉड, मतलब इतने डेप्थ वाले लोग हैं यहाँ। गुड इवनिंग फनीजा, हू इज दिस?
3: हाय, गुड इवनिंग मामा जी, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड। पहले मतलब फर्स्ट करने फॉर दिस सेगमेंट, आपका नाम?
3: शाहीना।
0: शाहीना, शाहीना अब बताना मुझे कि आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, टिक टिक टिक टिक टिक टिक। क्या मैं स्पीकर पे हूं?
3: ओके सॉरी सॉरी, I have 3 points.
0: No, अभी भी टिक टिक टिक लगी हुई है, आपको दोबारा वापस कॉल करना पड़ेगा। फनीजा गुड इवनिंग, कौन बोल रहा है?
4: गुड इवनिंग, मरविंद दास।
0: यस सर, यस सर, फटाफट नाम अपना बताइए। हाँ जी, हाँ जी, आपका नाम?
4: जय है।
0: जय हो।
4: अपना पर्सपेक्टिव है। जय हो, जय हो,
0: जय जय।
4: अपना पर्सपेक्टिव है आपके आंसर का।
0: हाँ, क्योंकि पर्स जो होता है ना,
4: खुश रहो,
0: पर्स पर्स जो होता है ना, पर्स एक, अरे सुनो सही, आप कह रहे हो अपना अपना पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल अपना अपना पर्स है, अपनी जेब में रखना चाहिए और पेक्टिव तो बाद में देना चाहिए। अब बताओ आप क्या कह रहे थे?
4: खुद को खुश रखो, बस
0: खुद को खुश रखो, हैप्पी कहते हैं। जय भाई हैप्पी। एक और कॉल लेता हूँ, फिर चलता हूँ आगे की तरफ, फिर जाएंगे। यहाँ पे कौन है? गुड इवनिंग फनीजा, हू इज दिस?
5: हाँ जी नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, मरुति कार जी?
5: नहीं, इलेक्ट्रिक कार।
0: सेठी जी की हाल है? इलेक्ट्रिक कार जी, टेस्ला कार। सेठी जी दसो जी के।
5: हाँ जी, आई जस्ट वांट टू टेल यू, किसी गरीब नो फूड खिलाया जाए, पानी पिला दिया जाए, उसके बाद के किसी की हेल्प करके जो अंदर आत्मा नु शांति मिलती है और कुछ नहीं है।
0: क्या बात है, क्या बात है सेठी जी। कोई रेडियो का वॉल्यूम, रेडियो का वॉल्यूम कम, मेरी तरफ थोड़ा सा, मेरी तरफ भी सोचो यार, सब लॉजिकल डीप थॉट्स, थोड़ा बाहर आओ, थोड़ा मतलब गरी नुक्कड़ में आओ, थोड़ा पाप चाड़ी खाओ। अब बताओ कि आत्मा को शांति कैसे मिल सकती है?
6: आत्मा को शांति, एक आंसर तो दे दिया किसी ने, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरा शांति मतलब मोबाइल घूम जाए और व्हाट्सएप भी यूज ना कर पाऊँ
0: तो फिर
6: तब
0: जब तक वो
6: मिलेगी,
0: तब कहाँ मिलेगी? हाँ। तब तो आप मछली की तरह तड़ पड़े होगे जब ये चीजें ना हो आपके पास, ऐसा तो होगा नहीं। गुड इवनिंग फनीजा, चलो फिर उसके बाद मैं बताता हूँ।
7: सईदा बोल रही हूँ।
0: सईदा जी, रेडियो का वॉल्यूम कम
7: कर, तो यही है कि
0: रेडियो का वॉल्यूम कम करना पड़ता है सईदा जी, नहीं तो आवाज नहीं आती है। गुड इवनिंग फनीजा, हू इज दिस?
8: हेलो,
0: हेलो जी, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी मालिक?
8: देखिए, एक बंदा है आत्माराम और बंदी है शांति देवी।
0: हाँ तो बस यही तो बात है, यही बात है कि भैया आत्मा को शांति तब मिलेगी जब आप आत्मा नाम के बंदे की शादी शांति से करा दोगे, तो मिल गई आत्मा को शांति। सिंपल सा काम है, इतना सा नाम है। क्या नाम है बड़े भैया आपका?
8: मेरा नाम आशुतोष है।
0: आशुतोष, आप तो गवारीकर बन गए, जा सकते हो मकीनी? होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। तो भाई लोगों टेंशन नहीं यार, आत्मा को शांति दिलानी है, आत्मा की शादी करा दीजिए शांति से।

क्यों चोरी क्यों ड्रामा क्वीन है, छोरा ड्रामा क्वीन ना, मतलब ड्रामा किंग नहीं हो सकता। अभी देखो हमने करके दिखाया आपको, तो ज्यादा टेंशन लाइफ में लेनी नहीं है, है ना। इट्स ऑल गुड। जैसे मैंने कहा कि आत्मा को शांति तब मिलेगी जब आत्मा राम की शांति से शादी करवा दोगे, तो आत्मा को शांति मिल जाएगी और आपकी टेंशनें सब हो जाएंगी दूर। हाँ, आपको खाने को ज़रूर मिलेगा, वो आप खुद इंजॉय करना। एक गाना और है जी, इस गाने के साथ साथ मैं ले रहा हूँ आपसे आज के लिए इजाज़त। आफ्टर मी इज इप्पी द हिप्पी एंटरटेनिंग यू ऑल द वे टिल 10 o'clock दिस इवनिंग। याद रखिए PMJ ज्वेलर्स नाउ ओपन इन DFW राइट हियर इन द हार्ट ऑफ फ्रिस्को। जाइए और वहाँ की कलेक्शन ज़रूर चेक कीजिए बिकॉज दैट इज़ अ फैंटास्टिक स्टोर। लेडीज़, cash in the value of gold, it's never going to go down, and you're going to make some of the best decisions by doing this, and that is going to PMJ. With that, it is good night, adios, bye bye.

0: Yeah, Deepak, if you're listening to me, I think your answer deserved the giveaway as well. Do give me a call. This is for Deepak. Agar aap mujhe sun rahe hain, call kijiyega. And with that, it is a wrap from my side. Kal shaam ko 5 se 7 phir hunga hazir with the Bindaas Show.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है. ये वाला बहुत हैवी है. और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
5: तो पहनती क्यों नहीं हो?
4: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेशन टाइप.
5: तो रोज वाला ले लो.
6: India's most loved everyday jewelry brand, CaratLane, is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. CaratLane now open next to Tanishq in Frisco.
7: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
8: Excuse me. It's called being loyal.
7: It's called being predictable.
8: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
7: And what's so special at Neon Cactus?
8: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
7: Not bad.
8: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
7: Okay, this I didn't expect from you.
8: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
9: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
10: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट. और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
11: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
12: Calculating route. Rerouting.
11: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
12: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
11: क्यों?
12: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
11: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
12: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
13: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
11: हाँ.
13: घर रिलोकेट करनी है?
11: हाँ.
13: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
11: हाँ भाई हाँ.
13: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
14: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
15: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
16: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
15: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
16: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
17: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
18: इट्स लॉसन.
17: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
18: इट्स लॉसन.
17: डैडी व्हाट इज द लॉ?
19: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे 214